सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 19वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 अगस्त वर्ष 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को है। आइए श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता

0: कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई यह ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी, साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज डमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत माँ की जय पुकारे, हर मन में हो मान, वीरों की गाथा गूंज उठे, बढ़े देश की शान, तिरंगे की छाया में हम करें सदा सम्मान, सत्य सेवा प्रेम से महके अपना हिंदुस्तान, मिलजुल कर आगे बढ़े यही रहे अरमान, भारत माँ का नाम जपे हर सुबह हर प्राण।

भोलेनाथ की महिमा न्यारी है, जग में सबसे महान। डमरू की धुन सुनकर मिटे मन का हर अज्ञान। गंगा जटा में विराजे चंद्र करे सम्मान। भक्ति से भर दो जीवन मेरा, दे दो ऐसा दान। हर हर महादेव गूंजे, हो पावन हर प्राण। शिव चरणों में शीश झुकाऊं, यही मेरा अभिमान।

मुरली की मधुर तान सुनकर मन को दिया आराम, राधे श्याम के प्रेम से जग होता निष्काम। गीता का संदेश सुनाकर दिया धर्म का ज्ञान, तेरे चरणों में मिल जाए जीवन को।

रूप न कोई रंग न कोई फिर भी तू आधार, कण कण में तेरा ही वास तुझसे सारा संसार, तेरी भक्ति से मिलता है जीवन का सत्कार, तेरा नाम सुमिरन करके हो जाए भव पार।

ना तेरा कोई रूप दिखाई ना कोई पहचान, फिर भी तेरी शक्ति से चलता सारा यह संसार। शब्दों से परे है महिमा अगम तेरा ज्ञान, हर श्वास में तेरा ही सुमिरन हर धड़कन में नाम। तेरी कृपा से मिट जाए मन का सारा अभिमान, निर्गुण प्रभु चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम।

0: अभी सुना आपने भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं आज का चिंतन। आलेख है आदित्य सोनी का और वाचक स्वर है मनीष कुमार सोनी के।
1: मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव भरा होता है। कभी सफलता कदम चूमती है तो कभी परिस्थितियां मनोबल को तोड़ देती है। ऐसे समय में सही मार्गदर्शन, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक चिंतन व्यक्ति को फिर से खड़ा कर देते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक युवक की है जिसने निराशा के अंधेरे से निकलकर आशा का दीप जलाया। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का युवक रहता था।

0: वो पढ़ाई में बहुत तेज था और उसका सपना था कि वो बड़ा अधिकारी बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें। पिता किसान थे और माँ सिलाई करके घर का खर्च चलाने में सहायता करती थी। आर्थिक स्थिति साधारण थी लेकिन परिवार में प्रेम और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। आदित्य ने शहर जाकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। शुरुआत में सब ठीक चला लेकिन कुछ महीनों के बाद उसे लगातार असफलताएं मिलने लगी। मित्र आगे निकलते गए और वो पीछे रह गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। वो सोचने लगा कि शायद वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन बहुत निराश होकर वो अपने गांव लौट आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पिता से कहा, मैं हार गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। पिता ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, जीवन में हार वही मानता है जो प्रयास छोड़ देता है। संत कबीर ने भी तो कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। पिता ने समझाया, जैसे पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही सफलता भी धैर्य मांगती है। आदित्य कुछ शांत हुआ पर उसके मन में अभी भी संदेह था। उसी गांव में एक वृद्ध शिक्षक रहते थे जिन्हें लोग गुरुजी कहते थे। आदित्य उनके पास पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या से रूबरू करवाया। गुरुजी ने उसे उपनिषदों का एक श्लोक सुनाया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। फिर बोले, उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त होने तक मत रुको। ये श्लोक केवल शब्द नहीं जीवन का संदेश है। गुरुजी ने आदित्य को प्रतिदिन सुबह ध्यान करने, नियमित अध्ययन करने और अपने विचारों को सकारात्मक रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जब मन हार मान लेता है तब शरीर भी कमजोर पड़ जाता है, पहले मन को मजबूत करो। अगले दिन से आदित्य ने नई शुरुआत की। वह सुबह जल्दी उठता, योग और ध्यान करता, फिर पूरे मन से पढ़ाई करता। उसने मोबाइल और व्यर्थ की चिंताओं से दूरी सी बना ली। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर परत निशान। ये दोहा उसके जीवन का मंत्र बन गया। वो समझ गया कि निरंतर अभ्यास से असंभव भी संभव हो सकता है। महीनों की मेहनत के बाद फिर परीक्षा का समय आया। इस बार आदित्य ने पहले जैसा घबराहट को महसूस नहीं किया। उसने पूरी निष्ठा से परीक्षा दी। परिणाम आया तो वो चयनित हो चुका था। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। सफलता मिलने के बाद आदित्य गुरुजी के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुक गया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, याद रखो, सफलता का अर्थ केवल पद पाना नहीं है। सच्ची सफलता तब है जब तुम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बांटो। आदित्य ने गांव के बच्चों को निशुल्क पढ़ाना शुरू किया। उसने गरीब विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय भी बनवाया। अब उसका जीवन केवल अपनी उन्नति तक सीमित नहीं था, वो समाज के लिए भी उपयोगी बन गया था। एक दिन बच्चों को पढ़ाते हुए आदित्य ने उपनिषद का प्रसिद्ध मंत्र सुनाया, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। उसने समझाया, ये मंत्र हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और भय से अमरता की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। जब मनुष्य ज्ञान, परिश्रम और सदाचार का मार्ग अपनाता है तब उसका जीवन प्रकाशित हो उठता है। आदित्य की ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती। धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। गुरुजनों का मार्गदर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा के संदेश जीवन को नई दिशा देते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, साहस जिसके साथ हो उसकी कठिनाई भी मीत। यही जीवन का सच्चा प्रेरक संदेश है।
1: अभी सुना आपने आज का चिंतन। आलेख था आदित्य सोनी का और वाचक स्वर थे मनीष कुमार सोनी के। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें। आज सुनिए सोयाबीन में मौसमी सलाह के विषय में। आलेख है स्मिता दुबे का।
2: खेती की बात कार्यक्रम में स्वीकार करो स्मिता की, राम राम। भाई बहनों, अभी हमारी जो सोयाबीन की फसल ना खेतना में खड़ी है, उका में नरी सारी परेशानी ना को सामनो

0: टन प्रति हेक्टेयर की दर से फसल अवशेष जो है उनके बिछई के और मल्चिंग कर देनी है, जिका से कि कम पानी में भी सिंचाई हुई जाए और बखत बखत पे कई कदी अपनी जो जमीन है उका में दरार पड़े, उका पेलाज हमारे थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकलर से है नी, या फिर टपक सिंचाई ऐसी या फिर परंपरागत सिंचाई हमारे कर तो रहना है। बेपेणो इसका एका साथ है जो रोग प्रबंधन का सारू भी हमारा पास नरा हमारा वैज्ञानिक ना हमारा किसान बेपेणो और के सलाह दी रिया है। उका अनुसार अभी कॉलर रॉट जी के बोले गर्दनी सड़न वह सोयाबीन में देखना में आ रही है। राइजोक्टोनिया जड़ सड़न नामक रोग को जो संक्रमण है वो देखो जा रही है। ईका नियंत्रण का सारू कार्बन डाइजिम 50% 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर का हिसाब से हमारे फसल पे छिड़काव करना है। और पीला मोजेक रोग जो है उका लक्षण भी कदी दिखे तो उका में भी हमारे प्रारंभिक अवस्था में रोगग्रस्त पौधा ना के खेत से उखाड़ी ने फेंकी देना है। और इना रोग के फैलाने वाली जो सफेद मक्खी आए तना मक्खी होए उनकी रोकथाम का सारू भी हमारे उपाय करना रहेगा। जिका में हम तना मक्खी की रोकथाम का सारू थायोमिथोक्सम लेमडा साय हेलोथ्रिन 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या बीटा साय फ्लूथ्रिन अण इमिडा क्लोरोप्रिट 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या एसीटेमिप्रिड 25% 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर को छिड़काव करना से हम तना मक्खी को तो नियंत्रण कर ही सकांगा। और जिका बादे अब बात आए सफेद मक्खी की तो उकसे बचना का सारू भी किसान अपना खेत ना में जगह जगह पीलो स्टिकी टेप लगाई सके है और लगाई देनो है उनके। किसान ना के सोयाबीन का सारू या भी सलाह है कि वे खरपतवार नियंत्रण को भी उपाय करते रहे वे जो भी संभव होए हाथ से निंदई गुड़ाई करनो कुलपा चलानो जो भी चाहे भी इके करी सके है। इका साथ है खेती की बात में मैं दुआ मारी वाणी के विराम राम राम।
1: अभी सुन रहे थे आप खेती की बातें जिसमें आज हमने जाना सोयाबीन में मौसमी सलाह के विषय में जानकारी दे रही थी स्मिता दुबे। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ दो ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा किसान
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग शोभा जोशी के गायन स्वर में।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान पूजा भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देखाने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

शोभा जोशी के गायन स्वर में अभी सुन रहे थे आप श्री रामचरित मानस कान का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, आज सुबह 7:20 से सुनिएगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर। आज इस कार्यक्रम का विषय होगा नशे से दूरी है जरूरी 2.0। इस कार्यक्रम में सुनिए इंदौर शहर में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाया

गया नशा मुक्ति अभियान, इस विषय पर बातचीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 से और सुबह 9 होगा मराठी कार्यक्रम। सुबह 9:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। आज सुनिए कल्याणी कानड़े का गायन, राग होगा खमाश ठुमरी, खमाश टप्पा और भैरवी दादरा। सुबह 10 सुनेंगे आप जिले की चिट्ठी और सुबह 10:05 से सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। एक अन्य फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने आप सुनेंगे सुबह 11 से। 12:02 का समय होगा फिल्म संगीत का और 12:30 दोपहर में सुनिएगा कार्यक्रम संग्रहालय से। स्वास्थ्य दर्पण में आपके अच्छे स्वास्थ्य की बात होगी दोपहर 1 से। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत हमारी दोपहर की सभा में सुनेंगे आप 1:30 से और 1:45 से होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, दोपहर की सभा में फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 2 से और चित्रपट संगीत सुनेंगे आप 2:30 से। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी होगा रोज की तरह शाम 5 और फिल्म संगीत 5:45 से। साथ ही NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनाना भूलेगा शाम 6 से। सुगम संगीत में मन्ना डे के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत प्रसारित किए जाएंगे शाम 6:30। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:20 से। आज सुनिए सावन की तीज त्योहार, इस विषय पर चंद्रमणि दफ्तरी इंदौर का कविता पाठ। रात 8:30 फिल्म संगीत और चित्र गीत का आनंद लीजिएगा 9:15 से। पत्रों पर आधारित आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन हमारी सांध्यकालीन सभा में सुनेंगे आप 10:00 और 10:30 शास्त्रीय संगीत में सुने विनायक तोरवी का गायन, राग होगा छाया नट।

0: श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्वनिवासे 20-26 इत्यस्य राष्ट्रमंडल क्रीडायाः पदक विजेतृभिः सह मेलनं कृतवान्। संवाद समये पदक विजेतारः प्रधानमंत्रिणा सह क्रीडायाः स्वानुभवान् निवेदितवन्तः। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदी अवदत् यत् तेषाम् एकैकः अपि असाधारण प्रदर्शनेन राष्ट्रं गौरवान्वितवान् तथा तेषां सफलता बहून् यूनः प्रेरयिष्यति। श्रीमोदी एकं दृश्य श्रव्य संदेशम् अपि प्रकाशितवान् अथ अवदत् यत् ये क्रीडकाः भविष्ये क्रीडासु भागं

0: वर्धिष्यन्ति ते प्रगतिं करिष्यन्ति। असौ नागरिकान् भारतस्य सदैव उत्साहवर्धनं कर्तुं आहूतवान्।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: अवसरेस्मिन् युवकार्याणां क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया तथा युवकार्य खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से च उपस्थिते आस्ताम्। देशस्य सर्वेषु भागेषु हर घर तिरंगा इत्यभियानं देशभक्तेः राष्ट्रैकतायाः भारतस्य च समृद्ध सांस्कृतिक परम्परायाः प्रोत्साहनाय आयोज्यते।

0: अभियानमिदं द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे प्रारब्धस्य हर घर तिरंगा इत्युपक्रमस्य पञ्चवर्षम् अस्ति। अनेन अभियानेन नागरिकाः राष्ट्रध्वजं प्रस्थापयितुं तथा देशभक्तेः राष्ट्रैकतायाश्च भावनां प्रकटयिष्यन्तीषु विविधासु गतिविधिषु भागं ग्रहीतुं प्रोत्साह्यन्ते। अस्मिन् वर्षे अभियानं विशेषत्वेन महत्वपूर्णमस्ति, यतः इदं भारतस्य राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशततम वर्षपूर्त्या सह आयोज्यते। अनेन राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रगीतस्य च विशिष्टः समागमः भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् अभियाने सक्रियतया भागं ग्रहीतुम् अथ विकसित भारतस्य निर्माणे स्वप्रतिबद्धतां पुनर्नवीकर्तुं च आहूतवान्। दिल्ली मेट्रो रेल निगमेन स्वातन्त्र्य भावनायाः उत्सवस्य भागरूपेण पीतवर्ण मार्गे हर घर तिरंगा इति विषयवस्तुना सुसज्जिता विशेषा मेट्रो रेल यान सेवा समारब्धा। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डीएमआरसी इत्यनेन कथितं यत् भारतस्य अशीतितमे स्वातन्त्र्य दिवसोपलक्ष्ये आयोज्यमानानां सप्ताहव्यापिनां कार्यक्रमाणां भागरूपेण एषा विशेषा मेट्रो रेल सेवा प्रारब्धा। ओडिशा राज्ये पुनः प्रचंड वृष्टेः अनन्तरं राज्यस्य अनेकेषु भागेषु नदीनां वर्धमानः स्तरः नूतनः जलाप्लावन प्रकोपः जनयति। बैतरणी नदी अस्य प्रावृट्कालस्य तृतीये जलाप्लावन प्रकोपे प्रविष्टवती अस्ति। एकया नूतन न्यूनचाप व्यवस्थया सम्पूर्णे राज्ये अतिवृष्टिः अभवत्। अधिकारिणः जलाप्लावन प्रवण क्षेत्रेषु नदीस्तरस्य निरीक्षणं निकटतया कुर्वन्तः सन्ति, आवश्यकान् समाह्वानान् निवारकोपायान् च कुर्वन्तः सन्ति। भारतीयः भारोत्तोलकः महाराजन अरुमुगा पाण्डियन उज्बेकिस्तान ताश्कंद नगरे एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इत्यस्यां स्पर्धायां पुरुषाणां 65 किलोग्राम मिते भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेता खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच अंतर संचालन बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। अरे दीदी धीरे धीरे।
2: यह आकाशवाणी इंदौर है, कुछ ही देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से।
3: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान में देशवासियों से उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर की प्रसिद्ध संस्कार कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। प्रदेश में चार नई सीधी

0: हवाई सेवाएं शुरू, भोपाल रीवा और भोपाल पटना समेत चार शहरों को मिला हवाई संपर्क और प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय, आज पांच जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है और हमें हमेशा देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का सामूहिक संकल्प दोहराने का आग्रह किया। इस साल इस अभियान को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत देश भर में तिरंगा यात्राएं, रैलियां, संगीत कार्यक्रम और सामूहिक गायन होंगे। दुनिया भर में 200 से ज्यादा भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास भी इस अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं प्रदेश में भी 9 से 17 अगस्त तक राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हर घर तिरंगा अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश के सतना, झाबुआ, छतरपुर, ग्वालियर समेत सभी जिलों में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन एवं प्रतियोगिताओं समेत कई आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ खेलों के अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता युवाओं को प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील भी प्रधानमंत्री ने की। इस मौके पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खट्टर भी मौजूद रहीं। ग्लासगो में आयोजित खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर में प्रसिद्ध संस्कार कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। सावन माह में निकाली जाने वाली ये यात्रा माँ नर्मदा के पावन तट ग्वारी घाट से शुरू होकर कैलाश धाम तक जाती है। करीब 35 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मुख्यमंत्री इसके बाद भोपाल लौटकर आगरमालवा की कलश यात्रा कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में कल चार नई सीधी हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से इन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। नई उड़ानों से भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता के बीच सीधा हवाई संपर्क शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 महीने में भोपाल से शारजाह के लिए भी सीधी उड़ान शुरू होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल्द 5 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और इनमें सबसे पहले सिंगरौली का एयरपोर्ट तैयार किया जाएगा।
1: लगभग 3 साल में 3 एयरपोर्ट मिल गए, हमारा दतिया, सतना, रीवा और 2 की नई मंजूरी मिल गई। ये काम करने का मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के, जिनके कारण से अब हमारे राज्य के अंदर 5 एयरपोर्ट खजुराहो तक के, मान ले 78 तक के पाइपलाइन में 3 चालू हो गए, उज्जैन और शिवपुरी मंजूर हो गए और फिर नई सौगात मिल गई। 5 नए एयरपोर्ट की फिर मंजूरी दी है, आज अपने बीच में जोरदार अभिनंदन करें।
0: इस अवसर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नायडू ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के शहरों को कोलकाता और पटना से जोड़ने की दिशा में ये जो कदम उठाया गया है, यह एयर कनेक्टिविटी के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
2: मैं भोपाल, जबलपुर और रीवा के सभी भाइयों बहनों को दिल से बधाई देता हूं। एक समय होता था देश में जब ऐसे नगरों में, शहरों में रेल की कनेक्टिविटी बढ़ती थी तो बहुत खुशी का माहौल होता था, पर आज देश बदल गया। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच विचार के साथ चलने वाला देश है। इस देश में किस तरह से संभावनाएं बढ़े हैं, जिस तरह से हवाई कनेक्टिविटी का प्रभाव आज देश में देखने को मिल रहा है, उसका एक नतीजा हम यहाँ पे भोपाल में भी देख रहे हैं। 50 दिन में एक नया एयरपोर्ट खोलने का काम हमारे भारत देश ने किया है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अंतिम मौका दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग आज से 14 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग यानी CLC चरण का आयोजन करेगा, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की खाली सीटों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश मिलेगा। नए पंजीकृत विद्यार्थी इस चरण में केवल एक कॉलेज का विकल्प ही चुन सकेंगे। इंदौर ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की है। रेवती रेंज में अब 13,10,012 पेड़ होने

0: की पुष्टि हुई है। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसे एक ही जगह पर लाखों पौधे लगाकर 2 साल तक उनका संरक्षण करने का विश्व रिकॉर्ड माना है। साल 2024 में रेवती रेंज पर एक दिन में 12,41,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। इसके बाद 2 साल तक पौधों की देखरेख की गई और उनकी गिनती का सत्यापन किया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर को क्लीन के साथ अब ग्रीन सिटी बनाने का लक्ष्य है और इस साल 21,00,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। अब रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अनेक नवाचार और अभिनव पहल की जा रही हैं। इसी उद्देश्य गुना जिले में रूरल मार्ट एंड लिवलीहुड हब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट परियोजना से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे गुना संवाददाता रोहित गोस्वामी।
1: सशक्त महिला समृद्ध भारत की दिशा में गुना के उमरी गांव में एक अनुकरणीय पहल हुई है। शक्तिशाली महिला संगठन समिति एवं CMS फाउंडेशन के CSR सहयोग से 200 दीदियों को गोबर उत्पाद, जूट हस्तशिल्प और लोक कला का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार की नई राह दिखाई गई है। जिला प्रबंधक कौशल उन्नयन एवं रोजगार मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत गुना DP कमठा ने बताया,
2: इस पहल के पहले चरण में अभी तक लगभग 300 स्वसहायता समूह दीदियों को जूट क्राफ्ट, लोक कला, गोबर उत्पाद, बांस शिल्प, टेराकोटा, ब्लॉक प्रिंट, कढ़ाई एवं ज्वेलरी निर्माण जैसे पारंपरिक, पर्यावरण अनुकूल जो कि इको फ्रेंडली हैं और भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को केवल प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केट लिंकेज, सरकारी योजनाओं से जुड़ाव और जिज्जी की पंचायत तथा रूरल मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध कराने का भी कार्य किया जा रहा है।
3: आकाशवाणी समाचार के लिए गुना से मैं रोहित गोस्वामी।
0: सावन माह के दूसरे सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। तड़के 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए और भस्म आरती की गई। इसके बाद पंचामृत से भगवान महाकाल का अभिषेक किया गया और भांग, चंदन, आभूषण और फूलों से श्रृंगार किया गया। भगवान को फल और मिष्ठान का भोग भी लगाया गया। ये दर्शन का सिलसिला रात 10 बजे होने वाली शयन आरती तक जारी रहेगा। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर और शहर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय हो गया है। मानसून ट्रफ और निम्न दबाव के क्षेत्र के असर से आज भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, खंडवा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर और जबलपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में रातभर से तेज बारिश हो रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ की कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव एवं कृषि दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित किया। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 10 दिवसीय नागद्वारी मेले के पहले दिन कल लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। डिंडौरी जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए कलेक्टर रंजू पवन भदौरिया ने आज नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में गतिविधि संभावना के तहत जितेंद्र कुमार शर्मा और साथियों द्वारा बीनवादन नृत्य और श्री रामचंद्र सिंह के निर्देशन में शिवलीला नाटक की प्रस्तुति दी गई। और खंडवा में जनजाति विभाग के मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने वीरांगना रानी दुर्गावती उत्कृष्ट छात्रावास, सीनियर कन्या छात्रावास और महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास की छात्राओं से संवाद किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: और चाय की प्याली, ये दो बातें अगर एक साथ हो जाएं तो हमारा दिन बन जाए, है ना? चाय तो आप पी चुके हैं और प्यारी सी मुस्कुराहट मैं आपको दे रही हूँ। हो जाइए मेरे साथ ये कहते हुए गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग।
0: सुबह की शुरुआत होती है जब अपनों से कोई प्यारी सी बात होती है, खुशियां खुद ब खुद चली आती हैं पास जब शुरुआत आपके साथ होती है। मैं संयोगिता जोशी आपके साथ हूँ गुड मॉर्निंग इंदौर में। अगस्त माह हमारे लिए सामाजिक, राष्ट्रीय और पर्यावरण तीनों को एक सूत्र में पिरोकर उत्सव मनाने का अवसर दे रहा है। कितनी अच्छी बात है ना। बात अगर राष्ट्रीय पर्व की हो ना श्रोताओं, तो हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारी सेना मुस्तैदी से रक्षा का भार अपने ऊपर लेकर हमें आश्वस्त कर रही है कि हम सुरक्षित हैं।

0: मॉर्निंग इंदौर में आज सेना का जिक्र इसलिए, पूरे इंदौर शहर ने नम आंखों से विदाई दी मेजर हमजा को। हम सबके दिलों में अपनी यादों को छोड़कर मेजर हमजा सड़क हादसे में शहीद हुए। हम याद रखें कि ऐसे वीर सपूतों को, ऐसे होनहार जाबाजों को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। और कहते हैं ना कि शहीद कभी मरते नहीं, वो हमेशा अमर होते हैं। उनके परिवार के प्रति श्रोताओं, हम सबकी संवेदनाएं उन तक पहुंच रही हैं और पूरा इंदौर परिवार के साथ है। देखिए, जिंदगी का यही उसूल है कि कहीं गम है तो कहीं खुशियां भी हैं। हमारे नौजवान साथियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया और हमें खुश होने का मौका भी दिया। श्रोताओं, हमारे समाज में कुछ ऐसे घटक हैं जो लगातार युवाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं और नैतिक पतन की ओर घसीट रहे हैं। बात होती है नशे की। किसी भी तरह का नशा खतरनाक तो है, फिर भी क्या वजह है कि लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं? नशे की वजह से आपसी संबंधों में कलह, आर्थिक तंगी, स्वयं का अपमान और लगातार गिरता हुआ स्वास्थ्य, सब कुछ सहकर भी क्यों करते हैं लोग नशा? हमारी सामाजिक संस्थाएं और सरकारी संस्थाएं प्रयासरत हैं कि इन परिस्थितियों से लोगों को बचाया जाए, नशे से खास तौर पर युवाओं को दूर रखा जाए। आपको बता दें, इंदौर शहर स्वच्छता के साथ साथ व्यक्तित्व सुधार की पहल में भी अव्वल रहा है। आप जानते हैं, पिछले दिनों लगातार चलाया गया नशा मुक्ति अभियान इंदौर में, नशे से दूरी है जरूरी 2.0, जी हां, कार्यक्रम आयोजित किया गया बड़े शान से और इसका समापन भी बड़े शान से हुआ। आइए जानते हैं, समझते हैं गुड मॉर्निंग इंदौर में। गुड मॉर्निंग इंदौर में जुड़ रहे हैं इंदौर शहर के CIO, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट और NCIB से भव्य राय जी।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर। मैं पुलिस कमिश्नरेट इंदौर एवं NCIB की तरफ से भव्य राय। जैसा कि अभी आपने सुना, नशे से दूरी है जरूरी 2.0 प्रोग्राम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी एवं पुलिस अधिकारी हमारे DGP सर श्री कैलाश मकवाना जी एवं पुलिस इंदौर कमिश्नरेट के कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह जी के सहयोग से नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जो हमारा प्रोग्राम है, वो 15 जुलाई 2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने लगभग 15 दिनों की गतिविधियों में अलग अलग दिनों पर हमारा वुमेन्स वॉकेथॉन, मैराथन, साइक्लोथॉन प्रतियोगिताएं, इन्फ्लुएंसर मीट्स, पुलिस प्रशासन मीट्स, अलग अलग जगह लोगों को समझाइश देना, दबिश करना एवं ऐसे करते करते जन भागीदारी के साथ मिलकर हम लोगों ने हमारा इस प्रोग्राम को पूरा करा। आंकड़ों की बात करें तो दिनांक 30 जुलाई तक हम लोगों ने इसमें 90 लाख लोगों को ऑनलाइन एवं 13 करोड़ लोगों तक हमने इस प्रोग्राम को समस्त तौर से पहुंचा दिया था। इन अभियानों का क्या महत्व है या इन चीजों को करने से हमें क्या आगे लाभ मिलता है, तो उस चीज के कड़ी में यही कहना चाहूंगा कि हम अभियानों के अंतर्गत लोगों को जागरूक करते हैं, एकजुट करते हैं, ताकि हम उन्हें समाज के हित में आगे बढ़ा सकें और उन लोगों को सुधार के थोड़ा सा हम लोग चीजों के लिए आगे बढ़ सकें। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं DGP महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमें इस अभियान में जोड़ के उनने इंदौर एवं मध्य प्रदेश को सशक्त एवं सफल बनाने के लिए अग्रसर होते हुए कार्य किया। गुड मॉर्निंग इंदौर में मैं चाहूंगा कि मैं आप सभी लोगों के साथ एक अच्छा सा गाना सुनूं, जो है तेरी मिट्टी में मिल जावा, और आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग नशे से दूरी बना के रखिए, सारे नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि ये सब आप ही की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए है। आप इन सब का पालन करके अपना कल बेहतर करते हैं और भविष्य को साकार करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
0: तो गुड मॉर्निंग इंदौर में देशभक्ति से ओतप्रोत ये गीत आप सबके लिए।

गुड मॉर्निंग इंदौर, मैं नमिता जगताप, साइबर एजुकेटर, इन्फ्लुएंसर और एनसीआईबी मध्य प्रदेश ऑफिसर। आज हम सभी यहाँ पे नशा मुक्ति 2.0 अभियान की सफलता के बारे में और उसके जो मेन पर्पस है उसको लिए हम बात करने आए हैं। सबसे पहले तो मैं हमारी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इंदौर प्रशासन और मध्य प्रदेश प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने युवा वर्ग को स्पेशली ध्यान में रखते हुए इस तरह का अभियान आयोजित किया। नशे से दूरी है जरूरी, मैं उसमें एक लाइन और जोड़ूंगी, नशे से दूरी क्यों जरूरी, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्यों नहीं करना है नशा। हमें ये पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बट जब तक हमें क्यों नहीं पता होता है ना, तो हम कहीं ना कहीं उस चीज को हम आत्मसात नहीं कर पाते। तो क्यों ना हम अपने युवाओं को क्यों के बारे में भी बताएं कि इसके कितने नुकसान है। ये थोड़ी देर का मजा जरूर है, थोड़ी देर पल भर का सुकून जरूर ले सकते हैं, पर क्या ये आने वाले समय में, आने वाले आपके भविष्य के लिए सही है? बिल्कुल नहीं। अगर ये इतनी अच्छी चीजें होती, नशा इतना सुकून देता, तो क्यों ना डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते। बट कभी किसी डॉक्टर ने नशा करने का आपको सजेशन नहीं दिया, ना किसी गुरुओं ने, ना किसी वाणी में हमें कहा गया। क्यों? क्योंकि ये नशा हमें कहीं ना कहीं गर्त में ही ले जाता है, कहीं हमारे भविष्य में अंधकार को, हमारे परिवार को, क्योंकि हम सामाजिक लोग हैं और हमारा हर स्टेप हमारे देश का भविष्य निश्चित करता है। तो क्यों ना हम इस नशे से दूरी अभियान में, जो प्रशासन ने हम सभी के लिए चलाई है, अभियान तो खत्म हो गया, पर क्या ये नशा खत्म हुआ? नहीं, इसको हमें और आगे प्रयास करना है, अपने और अपनों को इससे दूर रहने का, और उस फायदे नुकसान को समझाते हुए उन्हें सपोर्ट करना है कि नहीं भाई, ये सब चीजें आपके लिए सही नहीं है। नागरिक जब सुरक्षित स्वस्थ होगा तो उसका देश अपने आप सुरक्षित और स्वस्थ बनेगा। तो हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, स्वस्थ भारत का निर्माण करें, सभी से खुद को और देश को सुरक्षित रखें। आज मैं बहुत खुश हूं कि मुझे इंदौर आकाशवाणी के गुड मॉर्निंग इंदौर प्रोग्राम में आने का मौका मिला, और उससे ज्यादा खुशी की बात है, और उसमें आके मैं खुद अपने पसंद का गाना बजवा पा रही हूं। संयोगिता जी से एक गुजारिश करती हूं कि आप कृपया करके मेरी पसंद का गाना, जो पूरा पश्चिम फिल्म का है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना, तो मुझे बहुत पसंद है, और ये गाना कहीं ना कहीं हमारी पूरी कंट्री, हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो प्लीज आप मेरी पसंद का ये गाना बजाएं। थैंक यू।

0: गुड मॉर्निंग इंदौर में अब हमारे साथ हैं सुहानी सिंह जी।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर, मैं आपके शहर की प्यारी सी बेटी सुहानी सिंह। स्वच्छता से है इंदौर की यारी, अब की बार है नशे से दूरी की बारी। तो आए हम सब मिलके नशे से दूरी करें, और क्यों करें ये आप जानिए। एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ मैं। 5,000 महिलाओं ने हमने साथ में मिलकर इस दौड़ का हिस्सा बनी। इस दौड़ के अंतर्गत हम लोगों ने ये चीजें की है कि महिलाएं बेटियां जो होती हैं वही घर का सबसे बड़ा अहम पहलू होती हैं। वही हमारे घर के लोगों को, बच्चों को, बड़ों को या घर के पुरुषों को वही ये सीख दे पाती हैं कि आपको नशे से कैसे दूरी रखनी है। तो हमारे घर में नशा ना हो या हमारे शहर में नशा ना हो, इस दौड़ में हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नशे से दूरी के लिए अलग अलग तरीके के हमने कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, सारी चीजें बनाई कि इसके नुकसान क्या हैं, इसके नुकसान होने से हमारे घरों में क्या नुकसान होते हैं, हमारे समाज में क्या नुकसान होते हैं और हमारे शहर में क्या नुकसान हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा हम अपने शरीर को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, ये जानने के लिए हम लोगों ने लोगों को बहुत सी जगह जाके जानकारियां दी। अपना नशे से दूरी से नो टू ड्रग्स के बारे में हम बता पाए। तो आइए हम सब इस जागरूकता का हिस्सा बने और आगे भी बनते ही रहें। नशे से दूरी हमारे शहर के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारा इंदौर शहर जिस तरीके से स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी तरह से नशे से दूरी में भी नंबर 1 रहे। धन्यवाद।

गुड मॉर्निंग इंदौर। सो मेरा नाम है जिया हाडव, मैं 21 वर्ष की छात्रा हूँ। नशे से दूरी है जरूरी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 15 दिन में हमने क्या क्या किया और सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट उसमें क्या रहा है। सेवरल कॉम्पिटिशन्स करवाए और हमने वॉकथॉन करवाई, मैराथन करवाई एंड सबसे मेन थिंग, हमने देश के युवाओं से कनेक्ट रहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय खोजे, जिसमें हमने अलग अलग स्कूल्स में जाकर एक इवेंट करा था जो कि बहुत यादगार है, बहुत खास रहा मेरे लिए। 4 टाइप के सेशन लिए, 4 टॉपिक्स के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर लिए हमने, ट्रैफिक के ऊपर लिए हमने, नशे के ऊपर लिए, और मेन फोकस तो जैसा हमारा रहा नशे पे। वॉकथॉन, ये इतना अवेयरनेस क्यों जरूरी है? मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या नशा करना छोड़ देंगे क्या, स्कूल्स में जाके जब हम सेशंस देंगे नशा छूट जाएगा लोगों का या लोग नशा करना बंद कर देंगे, क्योंकि ये हमें जब गलत कार्य होता है उसके पहले से जागरूक करता है, तो गलत कार्य होने ही नहीं देता है। और जो सबसे बड़ी देश की सत्ता युवा, हमने उनसे कनेक्ट करा, ये नहीं पता चला कि ये चीज गलत भी होती है। लेकिन हमारी टीम जब सेशंस लेती हैं और इन्हें बताती है कि नशा करना कितना गलत है, तो तब उन्हें पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना। हमने बच्चों से पूछा कि नजरिए में नशा क्या है, उनको नशा कितना ब्रॉडर कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं नहीं पता था। लेकिन जब हमने अवेयरनेस सेशंस लिए, उनको भी पता चला कि कितना अवेयर होना कितना कितना कितना जरूरी है आज के युवाओं के लिए, गलत आदतों में ना पड़े वो। हमने और भी कॉम्पिटिशन करवाया, जिसमें हमने पेंटिंग कॉम्पिटिशन करवाया, ओपन माइक करवाया। वो मैराथन में जा रही थी जब, तो मेरी फ्रेंड को मैंने बोला चलते हैं आज अपन वॉकेथॉन में, तो मुझसे पूछती यार ये वॉकेथॉन में जाने से क्या होगा, ये प्रोग्राम का नाम तो है नशे से दूरी है जरूरी, क्या आप लोग भागेंगे तो क्या लोग नशा करना छोड़ देंगे? फिर मैं वही बात कहती हूँ कि हाँ, एक ये अवेयरनेस कैंपेन, इससे लोगों की जागरूकता बनेगी। और तो धन्यवाद, आप जुड़े रहिए, नशे से दूरी है जरूरी। सो गुड मॉर्निंग इंदौर, मैं एक बहुत ही प्यारा सा मेरा मन पसंदीदा गीत सुनना चाहती हूँ कि किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर भी एक बार, मैं हूं ना। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, नशे से दूरी आप सब बना के रखिए और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दीजिए।

0: गुड मॉर्निंग इंदौर। इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब तो हम सबको मिलकर ये निर्णय लेना पड़ेगा, नशा किसी भी तरह का हो हम उससे दूरी बनाकर रखें। आने वाले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं यही कहना चाहूंगी कि हो जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से यही हिमालय गंगो जमन मिले, होकर शहीद इसमें हमारे शरीर को फिर तीन रंग वाला ध्वज का कफन मिले। गुड मॉर्निंग श्रोताओं, आपको बता दें गुड मॉर्निंग इंदौर ये कार्यक्रम आप दोबारा सुन सकते हैं विविध भारती पर सुबह 10 बजे मेरे साथ। गुड मॉर्निंग आपको बता दें कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का। चलते चलते कार्यक्रम में एक बार हम मिलकर कहें गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: मॉर्निंग इंदौर।
0: दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार।
1: मॉर्निंग।

0: अभी सुन रहे थे आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
2: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में सुनिए समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
10: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का

0: प्रस्ताव रखा और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
2: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित ये यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंह गाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
3: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगा

0: वॉट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीटीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुस जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित 2 रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले 2 दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
4: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश

0: प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
1: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, जेपीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केन्द्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मॉनसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आज आएंगे 4 विधेयक, मेजा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के 2 सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिन्दुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस पीपल टू जॉइन हर घर तिरंगा मूवमेंट एंड होइस्ट द ट्राइकलर एट होम्स। इंडिया क्रॉसेस 300 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Mann Ki Baat program on Akashwani last month, Mr. Modi urged people to hoist the tricolour at homes.
4: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा

श्रोताओं, अभी ये गाना सुना आपने आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल, लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और आर डी बर्मन का संगीत था। इसे आप सुन रहे थे आकाशवाणी इंदौर से, जहां चल रहा है फिल्म संगीत। श्रोताओं, अगर वर्ल्ड लायन डे पर हम बात करें आंकड़ों की, तो आज दुनिया में अफ्रीकी शेरों की संख्या ऐतिहासिक स्तरों की तुलना में बहुत कम हो चुकी है। अलग अलग आंकलनों में जंगली शेरों की संख्या लगभग 20 से 25 हजार के आसपास मानी जाती है। एक समय शेर अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बड़े हिस्सों में पाए जाते थे, लेकिन आज उनका प्राकृतिक क्षेत्र बहुत सीमित रह गया है। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि एशियाई शेरों की संख्या बढ़ रही है। 2015 में गिर क्षेत्र में इनकी संख्या 523, 2020 में 674 और 2025 की गणना में

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा है गाना अभी सुन रहे थे आप मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम था ज्वेल थीफ। संगीत था एस डी बर्मन का। श्रोताओं, आज विश्व जैव ईंधन दिवस

भी है। ये अवसर हमें ऊर्जा के ऐसे वैकल्पिक स्रोतों का पर विचार करने का अवसर देता है जो न केवल हमारी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के में सहायक होंगे बल्कि पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आखिर जैव ईंधन है क्या? सरल शब्दों में कहें तो पौधों, कृषि अवशेषों, पशु अपशिष्ट और अन्य जैविक पदार्थों से प्राप्त होने वाला ईंधन जैव ईंधन कहलाता है। एथेनॉल, बायोडीजल और बायोगैस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। विमानन क्षेत्र के लिए विकसित किया जा रहा टिकाऊ विमानन ईंधन यानी ESAF भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए जैव ईंधन की संभावनाएं काफी व्यापक है। फसल कटाई के बाद बचने वाले कृषि अवशेष जिनका कई बार उचित उपयोग न होने के कारण निपटान एक चुनौती बन जाता है, उनका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में भी किया जा सकता है। इससे एक और कृषि अवशेषों का बेहतर उपयोग संभव है तो दूसरी ओर किसानों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर भी पैदा हो सकते हैं। जैव ईंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा है। पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात पर हमारी निर्भरता कम करने और देश में उपलब्ध संसाधनों को बेहतर उपयोग करने की दिशा में जैव ईंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी क्रम में भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण यानी कि E20 का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल भी किया है। ये स्वच्छ और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर देश के बढ़ते प्रयासों को दर्शाता है। हालांकि जैव ईंधन के उपयोग के साथ कुछ सावधानियां भी आवश्यक है, जैसे जैव ईंधन का उत्पादन ऐसा हो जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित ना हो, प्राकृतिक संसाधनों पर अनावश्यक दबाव ना पड़े और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इसलिए आज आवश्यकता केवल अधिक जैव ईंधन के उत्पादन की नहीं बल्कि टिकाऊ और वैज्ञानिक तरीके से इसके विकास की है। विश्व जैव ईंधन दिवस पर आवश्यकता है कि हम ऊर्जा के इन वैकल्पिक स्रोतों को केवल एक विकल्प के रूप में ना देखें बल्कि एक ऐसे स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की दिशा में कदम के रूप में देखें जिससे विकास और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बना रहे।

0: हम किसी से कम नहीं, इस फिल्म का ये गाना सुन रहे थे अभी आप। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था, आर.डी. बर्मन का संगीत था।
1: तीन महीने में पैसे डबल,
2: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी,
1: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
3: और कल होगा भी नहीं।
1: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
4: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
1: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे।
3: और फास्ट रिटर्न से बच के
1: और फास्ट बॉलिंग से भी।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म संगीत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरे देश में जोरों पर है और इसी के साथ शुरू हो चुका है हर घर तिरंगा अभियान। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत जो है वो 9 अगस्त से हुई है और ये अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। आपको बता दें कि इस अभियान की शुरुआत पहली बार 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता दिवस के उत्सव से जोड़ना और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, गर्व और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। इस अभियान के तहत देशभर के विभिन्न समूहों, संगठनों और सामाजिक संस्थानों और शिक्षण संस्थानों की भागीदारी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस दौरान तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तिरंगा प्रतिज्ञा और कई अन्य जन भागीदारी गतिविधियां भी आयोजित की जाएगी। यानी यह सिर्फ घर पर तिरंगा फहराने का अभियान नहीं बल्कि पूरे देश को एक भावना और एक रंग से जोड़ने का उत्सव है। तो आइए हम भी स्वतंत्रता सप्ताह का हिस्सा बने, अपने घर पर तिरंगा फहराए, उसकी आन बान शान का सम्मान करें और उन वीरों को याद करें जिनके बलिदान की वजह से आज हम आजाद हुए।

परदेस फिल्म से ये गाना अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति, आदित्य नारायण, शंकर महादेवन और हरिहरन के स्वर में। गाने को लिखा था आनंद बख्शी ने, नदीम शिवन का संगीत था। दोस्तों, फिल्म संगीत में आज हमने बात की वर्ल्ड लायन डे, पर्यावरण के लिए जरूरी जैव ईंधन की और हर घर तिरंगा अभियान की। तीनों विषय अलग थे लेकिन संदेश एक ही, अपनी धरती और अपने देश के प्रति जिम्मेदारी समझना। इसी संदेश के साथ अब तृप्ति को दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है मराठी कार्यक्रम।

खमाज ठुमरी का गायन अभी सुन रहे थे आप कल्याणी कानड़ी के स्वर में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कल्याणी कानड़ी का गायन। लीजिए प्रस्तुत है इन्हीं के स्वर में खमाज ठप्पा, माफ़ कीजिएगा खमाज टप्पा।

खमाज टप्पा सुन रहे थे अभी आप कल्याणी कानड़े के स्वर में। इन्हीं के स्वर में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत के कुछ राग। आइए अब सुनते हैं भैरवी दादरा कल्याणी कानड़े के ही स्वर में।

रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत 11 अगस्त को जिले के रामपुर नैकिन, 12 अगस्त को सिहावल और 13 अगस्त को मझौली और सेमरिया में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। वहीं 14 अगस्त को जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा और 16 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 17 अगस्त को रंगोली प्रतियोगिता के साथ अभियान का समापन होगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 में जिले ने 98.17 का कंपोजिट स्कोर हासिल किया है। इसकी बदौलत सीधी जिला कृषि क्षेत्र में देशभर में दूसरे स्थान पर रहा है। इस योजना की वजह से जिले में फसलों की उत्पादकता और दलहन तिलहन की खेती का रकबा भी बढ़ा है। किसानों को फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती और श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिले में किसानों को फसल बीमा योजना की जानकारी देने के लिए जागरूकता रथ गांव-गांव पहुंच रहे हैं। किसानों से खरीफ फसलों का समय पर बीमा कराने की अपील की जा रही है। खरीफ 2026 वर्ष के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि 17 अगस्त रखी गई है। योजना में धान, सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द और मूंग जैसी फसलें शामिल हैं। सभी किसान बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति और कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए बीमा करा सकते हैं। सीधी जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने हर शुक्रवार के लिए विभागवार रूट चार्ट तैयार किया है। इसके तहत अधिकारी गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका निराकरण कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना और लंबित समस्याओं का जल्द समाधान करना है। सीधी जिले में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बीते दिनों खनिज विभाग और निर्माण कार्यों सहित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति की जानकारी अधिकारियों से ली। सांसद ने कहा कि विकास कार्य समय सीमा में पूरे किए जाएं और उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों को भी प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। सीधी जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा शुरू की गई है। जिन सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी मशीन या विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, वहां निजी पंजीकृत सेंटरों से जांच कराई जाएगी। इसके लिए सरकार अधिकतम 500 रुपए प्रति सोनोग्राफी का भुगतान करेगी। सोनोग्राफी की जरूरत होने पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की अनुशंसा जरूरी होगी। वहीं जिले में बारिश के मौसम में मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चौफाल कोठार और चौफाल पवई गांव में ग्रामीणों को मच्छरदानियां वितरित की गई। प्रशासन ने लोगों से साफ सफाई रखने और बारिश से होने वाली बीमारियों से

सावधान रहने की अपील की है। विश्व आदिवासी दिवस पर सीधी के टमसार स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती के बारे में भी जानकारी दी गई। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण को लेकर 10 दिन का जागरूकता अभियान बीते दिनों चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर शुरू हुए इस अभियान के जरिए 11,000 से ज्यादा लोगों तक वन्यजीव संरक्षण का संदेश पहुंचाया गया। स्कूलों में पौधरोपण, चित्रकला, रंगोली और मूर्ति निर्माण जैसी गतिविधियां आयोजित की गयी। सीधी जिले में मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। प्रदेश और जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को इस समारोह में सम्मानित किया गया। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। जिले के दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने के लिए 2 महीने का निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन और SRLM सीधी के सहयोग से भोपाल स्थित केंद्र में आयोजित होगा, जिसमें करियर परामर्श, सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल के साथ रोजगार की तैयारी से जुड़ी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रतिभागियों की योग्यता और रुचि के अनुसार उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। और आखिर में बात करते हैं मौसम की। सीधी जिले के लिए मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अतिवृष्टि, नदी नालों के उफान और जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए जनपद पंचायत सीधी ने 24 घंटे संचालित होने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। सीधी जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे सीधी जिले की चिट्ठी, आलेख सचिंद्र मिश्र का था, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मेरे वीर 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों के सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन के सभी सुनने वालों को आपकी रेडियो साथी तृप्ति लटपटे का प्यार भरा नमस्कार। साथियों ले आए हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपने फरमाइशी गीत। हमारा नंबर है 2710223 और 2710224। नंबर के पहले इंदौर का एसटीडी कोड यानी 0731 जरूर लगाइएगा। और आइए देखते हैं अभी कौन जुड़ रहा है हमसे। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना शुभ नाम बताइए प्लीज।
1: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: लोकेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आकाशवाणी से जुड़े हुए रहते हैं और रेडियो की दुनिया में रहते हैं।
0: जी जी,
1: और रेडियो तो हमारा सबसे पसंदीदा, मतलब समझ लो एक परिवार का हिस्सा है मैडम।
0: बिल्कुल, और रेडियो परिवार का हिस्सा आप भी हैं क्योंकि आप हमारे नियमित श्रोता हैं और आपसे बात होती रहती है, आप कॉल करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। बताइए गीत कौन सा सुनवाए आज आपको?
1: ये मैडम आज गीत हमें सुनना है मंजिल फिल्म का रिमझिम गिरे सावन, वो गीत है
0: जी।
1: और आज उज्जैन में रात 3 बजे से अच्छी हल्की बारिश हो रही है
0: जी, बिल्कुल,
1: और अभी लगातार जारी है और ये अच्छा लग रहा है। और आज महाकालेश्वर जी की सवारी भी निकाली जाएगी उज्जैन में।
0: बिल्कुल, आज शाही सवारी का भी दिन है और भीगते हुए निकलेंगे महाकाल, क्योंकि आज सावन भी शाम से यहाँ पर भी इंदौर में भी रात से जो है वो रिमझिम बारिश का दौर जारी है। और हम तो चाहते हैं कि ये चलता रहे क्योंकि सभी को इंतजार था कि सावन अच्छी तरह से आ जाए। तो
1: बिल्कुल मैडम,
0: बिल्कुल ये मौका है।
1: और काफी दिनों से मतलब जो ये बारिश में किसान भाई भी हमारे इंतजार कर रहे थे कि अच्छी बारिश हो
0: जी,
1: की फसल उज्जवल हो और अच्छी फसल हो
0: जी। सही कहा।
1: उज्जैन में आज जो मतलब जो पिछले सोमवार को जो सवारी निकली थी ना
0: जी,
1: उसमें करीब 4 से 5 लाख तीर्थ यात्री बाहर के दर्शन करने के लिए आए थे और आज भी इसी उम्मीद है कि बहुत दर्शनार्थी आएंगे।
0: क्या बात है, देश भर से लोग आते हैं वैसे महाकाल के दर्शन करने के लिए।

0: तो हमने देखा है। और स्पेशली सावन का महीना तो बहुत ही खास होता है, पावन होता है, तो इस दौरान तो बहुत और भी जो भक्तजन है वो बढ़ जाते होंगे।
1: बढ़ जाते हैं, और मैडम खास करके सवारी देखने के लिए भी आते हैं, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर जी खुद साक्षात भ्रमण कर लोगों को दर्शन देते हैं अपने, ऐसा सौभाग्य मतलब बहुत ही अच्छे लोगों को प्राप्त होता
0: जी,
1: है।
0: जी, बिल्कुल सही
1: भगवान की आस्था रहती है, सभी आते हैं दर्शन करने के लिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा। चलिए रिमझिम सावन के बीच ही आपका पसंद का जो गीत है वो आपको सुनवा देते हैं, एंजॉय कीजिए ये गीत, और हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद लोकिन जी।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: शहर में रिमझिम सावन का दौर जारी है और इसके बीच इतने प्यारे गीतों का दौर भी जारी है हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में और जारी है हमारे लिसनर्स के कॉल. आइए देखते हैं साथ कौन जुड़ रहा है. हेलो एमएच हॉटलाइन.
1: गुड मॉर्निंग मैडम.
0: गुड मॉर्निंग. किससे बात हो रही है?
1: मैं रानू बात कर रही हूँ देहात से.
0: जी देखिए वैसे तो आप लोग भी हमारी आवाज पहचानने लग गए, वैसे हम भी अपने श्रोताओं की आवाज पहचानने लग गए हैं.
1: मैंने पता है 9:30 पे सुन लिया था कि आप ही हो.
0: क्या बात है. अच्छा कैसी है रानू जी आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करती हूँ तो बहुत अच्छी हो जाती हूँ.
0: मुझे भी आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगता है. बताइए क्या चल रहा है?
1: जैसे कि मैं आकाशवाणी भोपाल सुनती हूँ या फिर इंदौर सुनती हूँ, जो पसंदीदा अनाउंसर है ना उनसे अगर बात होती है तो बिल्कुल मजा आता है मुझे.
0: और बारिश का दौर कैसा है वहाँ पर?
1: बारिश तो देखो सुबह ना आज मेरी लेट

0: नींद खुली 6:30 बजे, तो मैंने बारिश को बस आते ही देखा है, तो बस
1: तो दिल खुश हुआ बारिश देख के।
0: हाँ बिल्कुल खुश हुआ, क्योंकि यार जरूरत थी बारिश की तो सभी को।
1: और इस खुशी में आप क्या बना रही है आज नाश्ते में, पकौड़े और चाय?
0: नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं बनाया, बट आज मैं भुट्टे का किस बनाने वाली हूँ।
1: क्या बात है, बिल्कुल कुछ तो स्पेशल बनना चाहिए, मौसम ही इतना स्पेशल है।
0: क्योंकि मतलब जैसे कि मेरे मायके तरफ तो भुट्टे के भजी या फिर भुट्टे का किस नहीं बनता हमारे इधर, लेकिन ना यहाँ बनता है तो मैं बनाना सीख गई हूँ।
1: जी जी, इंदौर में भी काफी भुट्टे का किस खाया जाता है वैसे, बट बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ में अगर अच्छे अच्छे गाने भी हो जाए तो और दुगना हो जाता है मजा।
0: अरे मैं तो आपको एक बात बोलूं, खाना बनाते बनाते भी गाने सुनती हूँ।
1: जी बिल्कुल, बहुत सारी गृहणियों का तो साथी है आकाशवाणी, और बहुत सारे घरों में जो है वो किचन में मैंने देखा है कि रेडियो सेट लगा होता है, और वहाँ पे सारे काम के साथ में तो काम भी हल्का लगता है।
0: मुझे एक बात बोलनी है कि एक हमारे श्रोता है केसरी सिंह जी,
1: जी
0: जो कि भोपाल से, उनका कॉल नहीं आ रहा तो वो कॉल करें। और गाना मैं बता देती हूँ, मूवी का नाम है सोल्जर्स, और गाने के बोल हैं मेरे दिल जिगर से गुजरी है, डेडिकेशन आपको रहेगा स्पेशली तौर पर।
1: क्या बात है।
0: और मेरी बहन नंदिनी है, योगेश है
1: जी,
0: पूरन वर्मा जी है, शिवा लोहट है,
1: हाँ
0: बस वो सबके लिए, बस आज मेरा दिल बोला कि आज मैं सबके नाम ले देती हूँ जो जो मुझे मतलब अच्छे लगते हैं कलर उनका।
1: ये जी चलिए, आपके सभी श्रोता साथियों के लिए
0: जी है जी, उज्जैन से।
1: जी जी आपके जी। सभी श्रोता साथियों और आपकी बहन के लिए ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी।
0: धन्यवाद।

0: हेलो एम एच हॉटलाइन। हेलो एम एच हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है मेरी?
1: हाँ दुबे के बगीचे से महेश रायकवार बोल रही हूँ मैडम।
0: महेश जी, एम एच हॉटलाइन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद मैडम आपको।
0: जी बताइए।
1: अभी सावन मेला का दूसरा सोमवार है मैडम ये,
0: बिल्कुल सही काम।
1: और अपने इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर अच्छी थोड़ी बहुत बारिश, भोलेनाथ जी जरा प्रसन्न हो गए जरा।
0: जी, सबकी प्रार्थनाएं सुन लिए भगवान ने, और कल रात से थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई, उम्मीद
1: जी
0: है कि चलती
1: जी
0: रहेगी।
1: जी
0: जी
1: जी जी तो इस बात के ऊपर भोलेनाथ का भजन सुना दीजिए मैडम एक।
0: चलिए, आपकी फरमाइश पर। जी बताइए।
1: मेरा फिल्म का गाना है वो, शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे।
0: चलिए, आपकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं ये गीत। धन्यवाद। कौन?
1: जी।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, हमें कॉल करके सुन सकते हैं अपने फरमाइशी गीत और कर सकते हैं हमसे बातचीत। हमारे नंबर है 2710223 और 2710224। नंबर के पहले इंदौर का STD कोड यानी 0731 जरूर लगाइएगा। और आइए, एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, देखते हैं किससे बात हो रही है। हेलो MH हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, आपका नाम बताइए।
1: मैं नंदनी बोल रही हूँ, सागर से।
0: नंदनी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, पहली बार बात हो रही है हमारी।
1: जी थैंक यू, हम कॉल नहीं करते ना, हमें मतलब रानू दीदी का आज कॉल आया था, बोला कॉल कर लो मैडम है, तो मैंने कहा ओके कर लेती हूँ।
0: क्या बात है, एक ही दिन में मतलब दोनों बहनों के कॉल लग गए, और वो जब भी कॉल करती है वो आपका नाम जरूर लेती है।
1: जी हाँ, हम मतलब सुनते नहीं है ना, वो बता देती हैं, तो कभी मतलब ऐसा आप आती हैं तो कॉल कर लेते हैं, वरना हम नहीं करते कॉल।
0: क्या बात है, पर कोई ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका नाम भी आ जाता है और आपकी फरमाइश भी चल जाती है।

0: जी
1: तो सागर का मौसम कैसा है अभी?
0: बस बारिश बारिश हो रही है अभी तो,
1: दो दिन से लगातार हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ बारिश अच्छी तरह से हो रही है।
0: आ जाएगी आज आपके यहाँ भी?
1: हाँ आ गई है, कल रात से तो बारिश आ गई और अब हमें उम्मीद है कि और चलती रहेगी तो यहाँ का जो कोटा है बारिश का पानी का वो पूरा हो जाए बस।
0: जी मैम।
1: बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
0: गीत मूवी का नाम है केदारनाथ और सॉन्ग है नमोना बोधी संग्रह, क्योंकि आज सावन सोमवार है और मेरा फर्स्ट भी है।
1: क्या बात है, आप केदारनाथ गई हैं?
0: नहीं अभी तक तो नहीं है।
1: चलिए हमारी शुभकामना है कि केदारनाथ के दर्शन आपको जरूर हो पाए। और
0: जी, और मेरी रानू दीदी का कॉल लगा था
1: जी जी
0: लेकिन उन्हीं ने बताया मेरे को।
1: जी चलिए आप आपकी पसंद का गाना आपको सुनवा देते हैं, हमें ऐसे ही कॉल करते रहिए नंदिनी जी, कॉल करने के लिए
0: बिल्कुल
1: धन्यवाद।
0: मैम,
1: धन्यवाद।
0: ओके ओके नमस्ते।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में, और यहाँ हमसे जुड़ रहे हैं हमारे एक और कॉलर। हेलो एमएच हॉटलाइन। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहा है?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ।
0: हाँ भगवान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? जी
1: आप? और मुझे एक गीत सुनना है पना फिल्म का।
0: जी जी,
1: गाने के बोले।
0: हेलो,
1: हाँ दीदी, गाने के बोले तेरी पनाह में हमें रखना।
0: जी चलिए, आपकी पसंद पे ये गीत सुना देते हैं।
1: मेरी बिटिया के पसंद का गीत है दीदी, वो आपसे बात करना चाह रही थी लेकिन दिशा रही है अभी।
0: हाँ जी जी, कितनी बड़ी है आपकी बेटी, क्या उम्र है उसकी?
1: 7 साल की है दीदी।
0: अच्छा 7 साल की है, तो स्कूल नहीं गई आज वो?
1: आज दीदी बारिश हो रही है हमारे इधर बहुत ज्यादा, तो इसलिए आज स्कूल नहीं गई।
0: अच्छा, तो आप सुनते हैं तो साथ में वो भी सुनती है, आपकी बिटिया भी सुनती है?
1: बिल्कुल दीदी, मैं मोबाइल पे हम दोनों सुनते हैं और वो आकाशवाणी पे कभी कभी बात भी करती है।
0: क्या बात है, वो तो अभी बात करना चाहती है वो?
1: जी दीदी, अभी तो थोड़ी रिसा रही है, नहीं कर पाएगी।
0: चलिए कोई बात नहीं, उन्हें कहिएगा कि आपकी पसंद का गाना ही हम चला रहे हैं, तो ऐसे ही सुनते रहिएगा, और आकाशवाणी से सुनना भी है और सीखना भी है।
1: जी जी धन्यवाद।
0: चलिए धन्यवाद।

0: से सुन रहे हैं आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे 2710223 और 2710224 इस नंबर पे बात कर सकते हैं और अपने फरमाइशी गीत भी सुन सकते हैं। हमसे एक कॉलर जुड़ रहे हैं, देखते हैं कौन है। हेलो MH हॉटलाइन।
1: जय माता दी।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, बताइए किससे बात हो रही है।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला।
0: जयपुर से बात कर रहे हैं, राजस्थान से। आप ही सुन रहे हैं, आपके और भी साथी लोग सुन रहे हैं अभी आपके साथ।
1: जी मैडम, अभी तो मैं ही सुन रहा हूँ और तो घर वाले हैं, वो खेतों में गया हुए हैं मैडम।
0: अच्छा, और किस चीज की खेती होती है आपके घर से।
1: जी मैडम, अभी यहाँ बाजरा की फसल लगी है मैडम।
0: अरे वाह, बाजरा की फसल लगी, और फिर बारिश का क्या हाल है वहाँ पर।
1: बारिश मैडम परसों के दिन आई थी और अभी 2 दिन से तो धूप है मैडम।
0: अच्छा,
1: कमी आई पर बारिश।
0: तो बाजरा के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, कितना पानी लगता है। बहुत सारा ज्यादा पानी लगता है या थोड़ा पानी भी हो जाता है तो बाजरा की फसल हो जाती है।
1: जी मैडम, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार बारिश आ जाए, जमकर बारिश पड़ जाए तो 8-10 दिन तक भी नहीं आए ना तो भी चल जाता है मैडम।
0: अच्छा, तो अभी आपको बारिश का इंतजार तो होगा।
1: हाँ बारिश का इंतजार है मैडम, क्योंकि बारिश ही धूप ज्यादा हो रही है। बारिश होती है तो कम होती है और धूप ज्यादा होती है ना तो फिर
0: जी जी फसल खराब होती है। बिल्कुल, चलिए आपका पसंद का गीत बता दीजिए।
1: जी मैडम, आपको और तमाम सुनने वालों को सावन का दूसरा सोमवार है तो उसकी हार्दिक शुभकामना। उसी
0: आपको भी शुभकामनाएं।
1: और उसी पर एक फिल्म का नाम है अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, और इसमें एक गाना है शिव जी सत्य, ये गाना सुनना चाहता
0: हूँ जी। और कब से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी।
1: जी मैडम, मैं आकाशवाणी 3-4 महीने से सुन रहा हूँ। कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, सोता है भगवान सिंह परवान जी है, उन्हीं ने बताया था कि आप यहाँ भी सुना करो, बहुत अच्छा कार्यक्रम आता है।
0: जी जी, तो अभी 3-4 महीने ही हुए हैं, तो आप कोई पत्र वाला कार्यक्रम भी सुनते हैं।
1: जी मैडम, अभी तो क्योंकि पत्र वाला तो मैं सुनता रहता हूँ पर मैं हम पत्र नहीं भेज सकता हूँ, इसलिए तो कार्यक्रम में सुनता तो रहता हूँ। जो श्रोताओं की बात होती है वो बेहतर रहते हैं, उनकी बातें सुनने को मिलती है।
0: जी जी, चलिए आपका पसंद का गीत अब आपको सुनवा देते हैं, हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर, जहां चल रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 2710223 और 2710224। नंबर के पहले इंदौर का एसटीडी कोड यानी 0731 जरूर लगाइएगा। एक श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो एमएच हॉटलाइन। हेलो
1: जी, नमस्कार। जी
0: नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका नाम बताइए।
1: जी मेरा नाम नईम मलिक है, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ, सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है।
0: मलिक जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कश्मीर के हाल बताइए। कश्मीर मतलब जन्नत कहा जाता है जिसे, अभी तक मेरा आना तो नहीं हुआ, पर बताइए उसकी खूबसूरती के बारे में कुछ।
1: सर से पाँव तक सिर्फ खूबसूरती खूबसूरती, अगर मैं नाम लूंगा तो ये प्रोग्राम का टाइम ही खत्म।
0: जी सही कहा आपने। तो आप क्या करते हैं मलिक जी?
1: मैं बिजनेस करता हूँ, टेल मार्बल सीमेंट पेंट सीपी के जो आइटम होते हैं ऑल आइटम में बेचता हूँ। जी 5 शॉप है हमारे पास। तो
0: जी जी जी, और फिर आप आपकी शॉप पर बैठ के ही सुनते हैं?
1: बिल्कुल, मैं मोबाइल ऐप के जरिए आपके प्रोग्राम सुनता हूँ।
0: जी, और आप अकेले सुनते हैं या फिर परिवार के और भी लोग सुनते हैं आपके साथ?
1: एक्चुअली जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, जब मैं कॉल कर रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं अपनी बीबी को वो रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ, और हमारा एक ग्रुप चलता है, रेडियो एसोसिएशन ग्रुप चलता है, तो उसमें हम सेंड करते हैं, सभी इसमें पर सुनते हैं।
0: अच्छा, और वो ग्रुप कहाँ कहाँ से है?
1: वो तो हमें ऑल इंडिया से है।
0: अच्छा, ऑल इंडिया से है, और वो सब जुड़े हुए हैं। और आप लोग कब से जुड़े हुए हैं?
1: मैं तो पिछले 18 साल से।
0: अच्छा, 18 सालों से सुन रहे हैं आप?
1: जी जी, 18 सालों से।
0: क्या बात है। और मतलब आपने शुरुआत कैसे की थी?
1: मैं एक्चुअली जो पहले जो आकाशवाणी श्रीनगर में हमारे यहाँ एक लोकल रेडियो है,
0: जी जी,
1: सबसे पहले मैंने उस पे कॉल किया। उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे तो उसके बाद मैंने बाहर के कुल आकाशवाणी में, जैसे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, आकाशवाणी नजीबाबाद, आकाशवाणी रामपुर, आकाशवाणी लखनऊ, उसके बाद मैंने मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर पर, एक मोबाइल प्ले स्टोर पर एक मोबाइल है डाउनलोड किया, इसमें जो ऑल आकाशवाणी
0: जी
1: मिलने सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल, न्यूज ऑन AIR ऐप पे सुनते होंगे आप?
1: बिल्कुल।
0: क्या बात है, मतलब आपने तो पूरे सारे देश के आकाशवाणी रेडियो सुन लिए, सारे केंद्र सुन लिए।
1: रेडियो को सुनने में अलग मजा होता है, क्योंकि आकाशवाणी के 90 साल भी हो चुके हैं। रेडियो सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रेडियो के जरिए पहले सोशल मीडिया नहीं होते, तो फिर रेडियो हर घर की आवाज होती है, और मुझे लग रहा है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर रेडियो के अभी भी बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है इस 21वीं सदी में भी, क्योंकि मैं एक नौजवान हूँ तो मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात है, मतलब ये नई सदी में भी आप सुन रहे हो, जो जबकि लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा शिफ्ट हो चुके हैं।
1: मैं सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ क्या ध्यान रेडियो पर ध्यान देता हूँ, क्योंकि रेडियो अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब प्रोग्राम देते हैं हमें।
0: जी बिल्कुल सही कहा।
1: कि जो हमारा ये एक लोकल आकाशवाणी श्रीनगर में जो प्रोग्राम मिलते हैं, तो अलग अलग प्रोग्राम मिलते हैं।
0: आप जैसे लोगों ने ही जो है वो रेडियो को जिंदा रख रखा है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
1: हम। बिल्कुल बिल्कुल
0: जी जी जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी फिल्म का नाम है परदेसी बाबू, गाने के बोले जावे सजना मैंने करना तेरा एतबार।
0: धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए मलिक जी, हम कोशिश करते हैं जल्दी आपका गाना आपको सुनवाते हैं, हमें ऐसे ही कॉल करते रहिएगा।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। लेकिन आपको बता दें कि सावन का इंतजार हम सभी को है, सभी को था, सावन शुरू भी हो गया है, पर सावन में बहुत सारी चीजों का और भी ख्याल रखने की जरूरत है। हमें कुछ चटपटा खाने का मन भी करता है, पर ऐसे समय में बीमारियों को अभी न्योता हम दे देते हैं उस खाने के साथ ही। तो अपना ख्याल जरूर रखिए, उन बीमारियों के संक्रमण से बचने का ख्याल रखिए, बाहर के खाने को जितना हो सके अवॉइड करें। साथ ही इस समय पर बारिश का पानी जो है वो जमा होने के कारण मच्छर जो है वो आ जाते हैं, तो

मच्छरों से थोड़ा सा ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें और सुनते रहिए हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ संपन्न होता है हमारा फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन-इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। आप ये सुन रहे थे मेरे यानी तृप्ति के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ मैं छाया पाठक। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको हमारे फोन नंबर एक बार पुनः बता दें हमारे नए श्रोताओं के लिए 2660902। भोपाल से बाहर के श्रोताओं के लिए एसटीडी कोड 0755। हमारा आपसे निवेदन है कि कार्यक्रम में गीत सुनने के लिए पहले से ही आप फिल्मी गानों का चयन कर लें, कम से कम दो फिल्म, ताकि आसानी हो आपसे बातचीत करने में, आपका गाना ढूंढने में और आपको गीत सुनवाने में। तो आइए बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: फोन करें गीत सुने मैडम।
1: जी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फोन करें गीत सुने कार्यक्रम हो रहा है, बताएं कौन बोल रहे हैं। बोले बताएं।
2: मेरा गांव ग्वालियर के पास। गांव मेरा
1: ग्वालियर के पास।
2: मेरे गांव में पानी की खेती होती है।
1: जी
2: हेलो। हेलो
1: जी। जी
2: कौन बोल रही मैडम?
1: मैं छाया पाठक बोल रही हूँ, बताएं क्या सुनना चाहेंगे आज?
2: आप उसका गाना सुनवा देना, चंबली कसम का गाना, मैं चंदार मेरी भैया से कहना पहले याद करे।
1: जी बिल्कुल, एक बार नाम पुनः बताएं।
2: खाली चरण यादव।
1: चलिए
2: जी जी,
1: फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
2: आपको भी धन्यवाद मैडम।
1: जी।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: हेलो,
0: हेलो
1: नमस्कार मैम
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी। मैं आवाज आ रही है आपको?
0: बिल्कुल आ रही है आवाज आपको। अपना नाम बताने में इतना सोचना पड़ रहा है?
1: रवीन बोल रहा हूँ।
0: प्रवीण, कहाँ से?
1: जी मैं विदिशा से बोल रहा हूँ।
0: विदिशा से। क्या
1: मैं
0: क्या करते हैं प्रवीण आप?
1: बस खेती किसान करता हूँ मैडम। खेती
0: क्या करते हैं?
1: किसान जी,
0: खेती किसानी। क्या उम्र है आपकी?
1: हमारी 13+ है जी।
0: 13+ है तो पढ़ाई लिखाई
1: ली
0: कर रही? इतनी
1: जी
0: कम
1: मैडम
0: उम्र में पढ़ाई लिखाई हो गई आपकी पूरी? क्या पढ़ा आपने?
1: जी मैडम
0: क्या पढ़ा है?
1: जी, मैंने पढ़ाई तो मैंने बीच में ही छोड़ दी थी।
0: किस क्लास तक पढ़े हैं?
1: मैंने फाइनल की थी जी,
0: फाइनल।
1: फाइनल BA। यस
0: 30+ हैं आप?
1: जी
0: अच्छा, आपकी आवाज तो लग रहा है। आपने कहा 13+, मतलब 13। बताएं क्या सुनेंगे आज?
1: फिल्म का नाम है हंगामा और सॉन्ग है तेरा दिल मेरे पास रहने दे।
0: जी, फोन करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है। नाम बताएं अपना।
1: मेरा नाम भावना यादव है, सिवनी से बोल रही, मथुरा सिवनी से। जी,
0: अच्छा, आपके आसपास बड़ी आवाजें आ रही हैं।
1: FM चल रहा है तो सुनते हैं हम
0: FM
1: लोग।
0: सुन रहे हैं और आकाशवाणी मध्य प्रदेश में फोन लगा रहे हैं। अच्छा, तो आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कौन से कार्यक्रम सुनती हैं? तो सिर्फ यही
1: नहीं, पूरे कार्यक्रम सुनते हैं, जो सुबह 6-7 बजे से आते हैं,
0: क्या? क्या
1: 12:30 तक, और शाम को सुनते हैं उमंग, खेती किसानी वाला आता है जो सुनते हैं, और आपकी फरमाइश सुनते हैं, और बात हमारी गीत आपके सुनते हैं।
0: बताएं, आज आपको क्या सुनवा दिया जाए?
1: मुझे एक दूजे की फिल्म का गाना सुनवा दिया जाए, हम
0: कौन सा?
1: तुम दोनों जब मिल जाएंगे, एक नया गीत हो रहेंगे।
0: इस गीत को सुनने की कुछ खास वजह?
1: जी नहीं मैडम, मुझे पसंद नहीं ये गाना।
0: बहुत पसंद है।
1: जी
0: अच्छा, चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: हेलो, आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। नाम बताएं अपना।
1: जी नमस्कार,
0: नमस्कार, आप अपना परिचय भी दे दें।
1: मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दीदी जी बात कर रहा हूँ और दीदी जी को राम की तपोभूमि से सत सत राम राम भेज रहा हूँ।
0: नाम तो बताएं अपना।
1: मैं दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से। काफी दिनों के बाद छाया जी आपसे बात हुई है
0: जी
1: और
0: जी
1: एक बार आपको फिर धन्यवाद और नमस्कार, आपने मेरी कॉल को रिसीव किया।
0: चलिए, ये तो हमारा काम ही है, हमारा कर्तव्य है ये कि हम श्रोताओं के कॉल लेने के लिए ही यहाँ बैठे हुए। आज बताएं क्या सुनेंगे।
1: आज मुझे हीना फिल्म का कोई भी गीत सुना दीजिए,
0: कोई सा
1: फिल्म
0: भी।
1: हीना कोई भी गीत सुना दीजिए, सभी गीत उसके सुपरहिट है, कोई भी गीत हमको हीना फिल्म का सुनना है।
0: जी, तो
1: और मेरे
0: वहाँ
1: पास प्रेमदास बाबा जी बैठे हैं, उनके साथ ये गीत सुनूंगा और फूलचंद पाल जी भी बैठे हैं।
0: जी सुनवाएंगे आपको ये गीत। करिए इंतजार। नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य
1: हेलो,
0: प्रदेश
1: और कुछ
0: से
1: काम है?
0: कार्यक्रम
1: फोन
0: फोन करें गीत सुने। जी
1: करेंगे सुने। हाँ, भूपेंद्र कुमार गुप्ता कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ मैडम।
0: भूपेंद्र गुप्ता।
1: हेलो,
0: हाँ जी, सुनाई दे रही है आपकी आवाज, अपनी पसंद बताएं।
1: आ रही है?
0: हाँ, आवाज आ रही है।
1: गाना बता दूं मैं आपको, दिल
0: बिल्कुल बताएं।
1: तेरा दीवाना। इसका गाना है मासूम चेहरा,
0: कोटा में इस
1: दिल
0: समय क्या हाल
1: दिल
0: है
1: तेरा।
0: बारिश के मौसम के?
1: बारिश बारिश नहीं हो रही है, हल्की
0: बारिश नहीं हो रही?
1: फुल्की फुहार आती है, बस
0: अच्छा, तो
1: आपके भोपाल में भी नहीं है पानी आनी।
0: जी है, अब आज तो पानी है वैसे। कुल और बताएं कुछ अपने बारे में।
1: बस बढ़िया है मैडम, सब कुछ।
0: सब बढ़िया है, चलें,
1: आप लोग कैसे? बढ़िया,
0: सब अच्छे हैं। आप लोगों की दुआ है। फोन करने के
1: ठीक है,
0: लिए
1: मैं सुना
0: धन्यवाद
1: देना।
0: जी। नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, हमारे किससे बात हो रही है मैं जानना चाहती हूँ।
1: नीरज उपाध्याय।
0: नीरज उपाध्याय कहाँ से? अनूपपुर से।
1: जी जी
0: जी, क्या करते हैं वहाँ? खेती बाड़ी करते हैं
1: और कोल भाई इसके क्षेत्र है तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी।
0: अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड के। चलिए, दो दो काम करते हैं आप, बहुत मेहनत करते हैं फिर तो। आप रात की ड्यूटी करते हैं?
1: जी मैम।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो घर में कौन कौन है आपके?
1: मेरे घर में है मेरी फैमिली है, मेरी मम्मी है। जी,
0: आज बताएं कुछ खास सुनना चाहेंगे मौसम के अनुरूप?
1: मौसम
0: जी
1: ठीक है मैम, बारिश काफी हो रही है अपने अनूपपुर जिले में और बारिश का काम अंतिम चरण में चल रही है। चारों तरफ हरियाली है, प्राकृतिक की कितनी सुंदरता देख के कितने अच्छे नजारे अच्छे लगते हैं मैम।
0: अच्छे लगते हैं बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बताएं उसी से संबंधित कोई गीत है या कुछ और सुनना चाहेंगे?
1: सावन का महीना है मैम तो संबंधित गाना सुना दीजिए, वही सुना दीजिए सावन का छाए वाले गीत।
0: कौन सा?
1: आया बादल छाए

0: कार्यक्रम फोन करें। गीत सुने
1: हेलो
0: जी, स्वागत है
1: मैडम जी,
0: कार्यक्रम में।
1: नमस्कार। बिल्कुल
0: नमस्कार।
1: मैम, मैं बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरा पहली बार भोपाल में प्रोग्राम फोन लगा है।
0: अच्छा,
1: जोधपुर राजस्थान से मनोहर सितारा बोल रहा हूँ।
0: मनोहर
1: सितारा
0: चितारा
1: जी
0: जी,
1: मैम।
0: राजस्थान से अभी एक फोन और लगा था भूपेन गुप्ता जी का।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, उन्होंने भी वहाँ के हालचाल बताए, बारिश के
1: जी
0: बारे में
1: जी
0: कहा, भाई वहाँ तो बिल्कुल रिमझिम बौछार हो रही है, बारिश हो नहीं रही
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल। अभी दो बारिश जोधपुर में हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी। इस सीजन की सबसे बेस्ट दो बारिश वही हुई थी। और
0: बस
1: अभी भी जोधपुर का मौसम बहुत ही सुहाना है
0: अच्छा।
1: और अच्छा, मतलब हमारी पिंक सिटी से नाम से मशहूर है हमारा जोधपुर।

0: जाकर उनके साथ कुछ बगाना करे, कुछ अगर हो भी जाता है तो उनको घर तक पहुंचाने की हम व्यवस्था गारंटी
1: बताइए, कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है। वही कहते हैं ना, अतिथि देव भव।
0: अभी तो क्या है कि हमारे रुणुचा रामदेवरा का बाबा रामदेव जी का मेला चल रहा है और दूर दूर से यात्री, पैदल यात्री आते हैं।
1: अच्छा,
0: उनके लिए भी हमारा जोधपुर पलक पावड़ा बिछा के मतलब उनके स्वागत में
1: स्वागत
0: रहते
1: में रहते हैं। तो आप प्रॉपर जोधपुर में ही रहते हैं?
0: मैं जोधपुर में रहता हूँ मैम। जी।
1: अच्छा, तो आपने पूरा राजस्थान घूमा हुआ है कि नहीं?
0: हाँ बिल्कुल, राजस्थान का रहने वाला हूँ। अपने जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया
1: जी,
0: बीकानेर हो गया।
1: चलिए भाई, आप अपनी अब बातचीत को अपन थोड़ा विराम दें और बताएं आपकी पसंद आज क्या है, क्या सुनेंगे?
0: मैम मेरा पसंद का गाना है और पहली बार कॉल लगा है तो सभी के लिए गाना, बहुत ही पुराना गाना मैं चॉइस किया है और गाना, पिक्चर का नाम है नवरंग और गाने के बोल है, तू छुपी है कहाँ मैं तड़पता यहाँ। ये वाला गाना सुनना था मैम।
1: बिल्कुल सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
0: थैंक यू।

में करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया।

0: हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
1: हाँ, मैं हीरो बाग से बोल रही हूँ, बाग जिला धार।
0: धार जिले से बोल रही हैं, धार से।
1: हाँ मैम।
0: जी कौन,
1: हाँ,
0: नाम तो बताएं।
1: हीरो हीरो हीरो पड़ियार।
0: हीरो पड़िया परिहार
1: हाँ, पड़ियार
0: जी।
1: पड़ियार। हाँ,
0: अच्छा, क्या करते हैं वहां पर आप?
1: हम क्या छोटी सी दुकान लगाते हैं चप्पल पे। हाँ,
0: वहां दुकान लगाते हैं काय की?
1: ये मतलब बिस्कुट चॉकलेट बच्चे उनके, ये
0: अच्छा,
1: छोटी सी दुकान लेके बैठते हैं मैम, क्या करें।
0: तो दिन भर बैठे रहते हैं वहीं,
1: हाँ, वहीं बैठते थाने सामने, चला
0: तो हो जाती बिक्री आपकी अच्छी।
1: करता मैम। तो अभी तो धंधा ही बहुत डाउन है, अभी तो धंधा ही नहीं चल रहा है ढंग से,
0: बारिश के कारण।
1: बारिश के कारण अभी सब लोगों सब गुजरा चल गया, सब काम धंधे पे चल गया, तो अभी कोई धंधा ही नहीं है अभी।
0: गुजरात
1: हाँ
0: के,
1: मैम।
0: गुजरात चलेगा सब
1: हाँ, ये सब जाते हैं तो गुजरात धंधे करने के
0: काम के
1: लिए, तो
0: लिए।
1: कोई पब्लिक
0: अच्छा।
1: ज्यादा, कोई खेती बाड़ी में लग जाती है, तो पब्लिक बहुत कम रहती है, तो इसका वो नहीं होता ऐसा।
0: अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, जितना है उसी में संतोष करिए।
1: हम तो जितने मिलते जितने में हम तो पेट गुजारा कर लेते मैम,
0: बस
1: को
0: बस,
1: ज्यादा जिंदगी तो कमाना,
0: हाँ
1: जिंदगी तो खाना है क्या, आज
0: जल
1: थोड़ी
0: और
1: कमाना अपन
0: बस,
1: को,
0: और
1: जब
0: अपनी
1: तक जी
0: इच्छाएं
1: जब तक
0: अपनी कम
1: चलेगा।
0: रहेंगी तो अपना उतने में ही गुजारा चल जाता है। इच्छाएं अनंत रहती हैं तो गुजारा कभी खत्म ही नहीं होता
1: वो
0: है कि
1: तो
0: नहीं?
1: सही है ना मैम,
0: चलिए
1: उसके पीछे
0: जी।
1: तो अपन है और क्या।
0: बिल्कुल, बताएं क्या सुनेंगे आज?
1: क्रांति फिल्म है,
0: कौन सा,
1: क्रांति
0: नहीं गाना कौन सा सुनेंगे?
1: गाना, वो क्रांति फिल्म है का है।
0: अच्छा, कोई सा भी गाना
1: हाँ,
0: ठीक है, बिल्कुल
1: वही का है।
0: सुनवाएंगे। फोन करने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप।
1: जी मैडम, अशोक परमार बोल रहे हैं।
0: अशोक परमार जी? हाँ, बोल तो आप अशोक परमार रहे हैं, पर बड़े खुश नजर आए।
1: जी मैडम, फोन लग गया तो खुशी तो होती है।
0: अच्छा, फोन लग गया इसलिए। हाँ, वो खुशी आपकी, जो आपके चेहरे पे जो खुशी आई है वो हमें दिखाई दे गई। देखिए
1: जी मैडम, आप कैसे हैं?
0: बस बढ़िया है, आप बताएं अपनी जगह का।
1: जयपुर, राजस्थान।
0: जयपुर से? ये क्या
1: जी,
0: बात जी। है, आज राजस्थान के बहुत फोन आ रहे हैं।
1: अब ये तो आप ही देखो मैडम, हम क्या कर सकते हैं।
0: अच्छा, हम ही देखें। चलिए, आज आप लोगों की किस्मत अच्छी है, जयपुर से, जोधपुर से और कोटा से, सब जगह के फोन आए आज तो।
1: जी जी,
0: चलिए आप
1: मैडम, मुझे एक गाना सुनना है। फिल्म का नाम है दो आंखें बारह हाथ। और उसी एक सॉन्ग है, जो भी देखे आपको वो देखता रह जाए।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम फोन करें गीत सुने यही समाप्त करने की छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, लेकिन इस वादे के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए गीतों, नए श्रोताओं और नए उद्घोषकों के साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से लीजिए अब पेश इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में भी है। लोकसभा की कार्यवाही में आज 4 विधेयक पेश किए जा रहे हैं, जिनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026, केरल विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक 2026 शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज जबलपुर में कांवड़ यात्रा में शामिल होने के बाद भोपाल लौटकर आगरमालवा की कलश यात्रा कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में श्रावण मास में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। आज श्रावण मास के दूसरे सोमवार को सुबह भस्म आरती में बाबा महाकाल का राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अंतिम मौका दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग आज से 14 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग यानी CLC चरण आयोजित करेगा। नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन द्वारा भारतीय हथकरघा एवं साड़ी की पारंपरिक विरासत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज साड़ी ड्रेपिंग एवं हैंडलूम डेमोंस्ट्रेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और राजधानी भोपाल में सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। लगातार बारिश को देखते हुए भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी ने आज के लिए सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुति कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं देशप्रेमी फिल्म का गीत। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को पसंद किया है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, जीत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी, ये हमारे श्रोता है थाना रोड बक्सर से। डबवली हरियाणा से जेके बोकोलता, श्रीमती सुनीता बोकोलिया, संजय अनिल, मीनू बकोलिया, राजावत कॉम्प्लेक्स शाजापुर से। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है MM राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार। और इसी गीत को पसंद किया है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने।
3: नफरत

पड़ोसन फिल्म का अगला गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, जिसे गाया है लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों ने। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत आरडी बर्मन का है। इस गीत को पसंद किया है ये हमारे श्रोता है अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से, दिशा रूही और लबी श्रीवास्तव। कालका हरियाणा से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा। साथ ही साथ बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से ये फरमाइश मिली है मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी और बड़की मामी की। और मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा है अभिजीत गवाड़कर, राही श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकाश बदलापुर मुंबई से, सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता अर्जुन गवाड़कर जिसे टुक टुक नाम से भी पुकारते हैं, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, कुमारी ध्वनि गवाड़कर और इन्हें प्यार से परी कहते हैं। और बेरड़ी से ये पत्र मिला है राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचन ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज संवासेरे किया।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में राजा और रंक फिल्म से। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपकी फरमाइश चल रहा है और ये आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है बनोरा श्रीनगर से बलराम दास अहिरवार, श्रीमती कस्तूरी आराधना सोनिका, उपमा और नीतिक वर्मा की। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा इसी गीत को पसंद किया है। वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, छत्रपति संभाजी नगर से ये हमारे श्रोता है। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और इसी गीत को पसंद किया है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, असमा सालिया, शोएब खान, साइमा खान, पोतरा मुस्ताबा खान, पोतरी अफिया खान, राउफ भाई, शहीद भाई और गांधी भाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इन सभी श्रोताओं की मिली जुली पसंद पर सुनते हैं राजा और रंक फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में पत्र भेजने के लिए हम उन सभी श्रोताओं का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आज मोबाइल के ज़माने में, फ़ोन के ज़माने में, सोशल मीडिया के माध्यम से फरमाइश के ज़माने में भी आज हमें, आप हमें आज भी पत्र लिखते हैं और पत्रों के द्वारा अपने फरमाइशी नाम लिखते हैं, अपने फरमाइशी गीत लिखते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फरमाइश हमें मिलती है और वो भी पत्रों के माध्यम से मिलती है। तो ये एक दिली रिश्ता सा आप हमारे साथ जोड़ते हैं और हम भी इस भावना में ऐसे बह जाते हैं कि आपकी फरमाइश के गीतों को सुनवाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो चलिए, इसी तरह पत्रों का लिखना आप जारी रखिएगा और अपनी फरमाइशें हमें भेजते रहिएगा। और अब सुनवाते हैं दो रास्ते फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। छत्तीसगढ़ के ये हमारे श्रोता है और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से अलग अलग

नाम हमें मिले हैं, लेकिन क्या तारीफ की बात है कि ये सारे नाम हमें एक ही पत्र में मिले हैं। ये है दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। घंटाघर चौक खंडवा के ये हमारे श्रोता है जिन्होंने पत्र लिखा है, और ये है संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। और इसी गीत को पसंद किया है मंडी हरजा राम मलोट से महेश गर्ग, सुषमा गर्ग और जश्न गर्ग ने, हमारे इन सभी श्रोता की पसंद पर ये खूबसूरत सा नगमा आपके रेडियो सेट पर।

0: दो रास्ते फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव,
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
8: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
9: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
8: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
10: आकाशवाणी इंदौर।
9: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
11: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
12: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
11: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
4: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। संग्रहालय से कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कामिनी काय कांतारे, इस रेडियो धारावाहिक की 26वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 26वां और अंतिम भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि पूर्ण रूप से विरक्त हो गए हैं। उन्हें न राजकाज से मोह है, न पिंगला, शची या चंपा से। उन्हें रह रहकर गुरु गोरखनाथ का स्मरण हो आता है। एक दिन वे महालय सदा के लिए छोड़ देते हैं। अब आगे

0: अब नितांत अकेले हैं भर्थरी। सामने दूर तक फैली हुई रेत, ब्रह्मनद की उत्ताल तरंगित जलधारा और उसके उस पार धरातल से व्योम की ओर उठता हुआ मेघों से आच्छादित धूसर पर्वत। दूर दूर तक दृष्टिपात करने पर भी पर्वत तक पहुंचने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। कामरूप के सीमांत पर पहुंच तो गए, किंतु गंतव्य अभी भी अलग अनिश्चित है। दिवस का तेज धीरे धीरे ढलान पर है और अब तक कहीं न मनुष्य मिला था और न उसकी कोई आहट। भर्तृहरि एक शिला की छांव में बैठ गए कि कोई आता जाता दिखाई दे तो आगे का मार्ग पूछें। कुछ ही देर में आकाश पर तारे टिमटिमाने लगेंगे। रात्रि में ये स्थान निरापद नहीं। वन्य पशुओं और विशेष रूप से घोंसलों में लौटते पखेरुओं की आवाजें तेज हो रही हैं। भर्तृहरि उठे और चल पड़े। एक बार फिर अकेले उस निर्जन और अज्ञात पथ पर। दूर धुआं उठता दिखाई दिया। वहां धुआं है तो आग भी होगी और आग है तो मनुष्य भी होगा। उनके पांवों की गति बढ़ गई।
1: भैरव बंधु, इस गहन दुर्गम वन में अकेले भटकते तुम कौन हो?
2: पथिक हूँ बंधु, किसी को खोजने निकला हूँ। अग्नि का आभास दिखा तो इधर चला आया। आश्रय चाहता हूँ रात भर के लिए।
1: इधर आ जाओ, निश्चिंत होकर अग्नि के पास बैठो। किंतु ईश्वर तो कहीं के लिए भी कोई मार्ग नहीं जाता।
2: मध्यान्ह से प्रतीक्षा कर रहा था, ना मार्ग दिखा और ना कोई मार्ग दिखाने वाला। अग्निदेव का संकेत मिला तो आपसे भेंट हुई और आपके इन श्वानों से भी।
1: आइए मेरे परिवार से भेंट कीजिए, ये रहे मेरे पिताजी।
3: पधारे देव, क्षमा करें, मैं पहचान नहीं पा रहा कि आप ब्रह्मचारी हैं, परिव्राजक अथवा सन्यासी। संकोच का एक कारण यह भी है

0: कि इस व्याध परिवार के पास आपके सत्कार के योग्य कुछ भी नहीं है।
1: चिंतित ना हो वृद्धवर, इससे बढ़कर सत्कार क्या होगा कि इस गहन जनशून्य क्षेत्र में रात बिताने के लिए संग सहायता मिल गई। नरभक्षी प्राणियों की तो कमी होगी नहीं यहाँ।
0: मैं ये पूछना तो भूल ही गया कि जहाँ पशु पक्षी और कीट पतंगों के अतिरिक्त कोई नहीं आता, आप वहाँ कैसे पहुँच गए महाराज?
1: मेरे गुरु कामदेश में कहीं हैं, जिसका पता केवल उधर एक विकट गिरी में साधना करने वाले सिद्ध ही बता सकते हैं। ये विकट महानत मेरे और उस पर्वत के मध्य फैला है, इसे पार करने की युक्ति अथवा कोई मार्ग मुझे बता दे महाशय, आपका बहुत अनुग्रह होगा।
0: स्यात देव, आपके अनुकूल है कि हमारी भेंट का संयोग बन सका। इस महावन के मार्गों को वन्य जीवों और व्याघ्र के अतिरिक्त कौन जान सकता है? आप हमारे अतिथि हैं, आपने मुझे अपने स्पर्श से पवित्र किया है, आभार आपका महाराज। हाँ, मैं कई बार उस गुफा में गया हूँ, सिंहराज मुझे सदा ध्यान में मिले, उनकी सेवा में वन्य फल और मधु वहां रखकर चला आया। मैंने वो गुफा देखी है और सिंह महाराज के दर्शन भी किए हैं।
1: गुफा के द्वार पर सिंह पहरुए की चर्चा भी सुनी है मैंने।
0: सत्य है, आप मधु ग्रहण करें महाराज, मैं गुफा का मार्ग, सिंह से बचाव इत्यादि सभी कुछ बताऊंगा आपको, किंतु उससे पहले आपको मेरी एक पहेली पूछना होगी, वो भी प्रातः से पहले। मैं जानना चाहता हूं कि आप सिंह महाराज के दर्शन के पात्र हैं भी या नहीं। हुआ यूं कि एक बार मैं अकेला वन में भटक गया, चलते चलते मैं एक साधु के आश्रम तक पहुंच गया। साधु ने जल और फल से मेरा सत्कार किया, वो तो इसके पश्चात ध्यान के लिए अपने आसन पर बैठ गए, और मैं यहां वहां मार की खोज में जुट गया। आप मधु ग्रहण करें ना महाराज?
1: हाँ, लेता हूं।
0: वहां मुझे एक कंदरा मिली जो भीतर से प्रकाशित थी, मैं उसमें प्रवेश कर गया। वहां एक सुंदर भवन था महाराज, साहस करके मैंने एक गवाक्ष से भवन को झांका। भीतर एक सुंदर स्त्री एक पुष्प चक्र घुमा रही थी, चक्र के चारों ओर भंवरे मंडरा रहे थे। स्त्री के निकट एक वृषभ और एक गधा खड़ा था, वृषभ के मुंह से दूध और गधे के मुंह से रक्त का फैन रिस रहा था। इस फैन से सफेद और काली मकड़ियां बन रही थीं। महाराज, वही कुंडलिया हमारे दो फलों के सर्प ने मकड़ियों को डसना शुरू किया और मकड़ियां चीत्कार करने लगीं।
1: अद्भुत रहा होगा ये रूपक, अद्भुत। फिर क्या देखा वृद्ध महाशय?
0: उनकी चीत्कार सुनकर पास में बैठे तपस्वी के भाल से अग्नि ज्वाला का एक पुंज प्रकट हुआ, जिससे भ्रमरों के जाल कट गए और वे उस ज्योति में विलीन हो गए। कुछ क्षण बाद वे स्त्री अपना चक्र उठाकर उस वृषभ और गधे को लेकर ना जाने किस तरफ चली गई। मैंने देखा साधु उसी भांति आसन पर बैठे ध्यान लीन है। इस मधुपात्र को रिक्त करें बैरागी महाशय, मैं भी एक झपकी लेता हूं, पहर भर मेरी नींद पूरी हो जाएगी, तब तक आप भी इस पहेली के पहर सुलझा लें। समझ में आने पर मुझे उठा ले महाराज।
1: उत्तर सुनकर सोए वृद्ध महाशय।
0: क्या अर्थ ज्ञान हो गया वैरागी महाराज?
1: हाँ वृद्धवर, आपकी कथा जागृति की हो या स्वप्न

0: मैंने तुम्हारी आंखों देखी कथा का रहस्य बता दिया है वृद्धवर। अब तुम्हें मुझे उस सिंह तापस तक ले जाना है, वचन दिया है तुमने।
1: अवश्य महाराज, अवश्य। भोर होते ही मैं आपको वहां ले जाऊंगा। अब आप भी किंचित नींद ले लें। हम सिंह गुफा के निकट आ पहुंचे वैरागी महाराज। अब हमें वहां रुककर सिंह के उतरने की प्रतीक्षा करनी होगी। उसके पहाड़ से उतरने का मार्ग यही है।
0: जब हम उसके मार्ग के इतने निकट हैं वृद्धवर, तो क्या वो हमारी गंध नहीं सूंघ लेगा?
1: नहीं महाराज, क्योंकि इस क्षेत्र में पुष्प गंध प्रबल है और वायु की दिशा विपरीत। हमें कोई ध्वनि या आहट न होने देने की सावधानी बरतनी होगी। देखो वो जा रहा है, अब हम भी आगे बढ़ें। चले आओ वैरागी, मेरे पीछे पीछे चले आओ। वो रहा गुफा का द्वार, वो रहा।
2: आओ व्याधराज, अवंती के राजा भर्तृहरि को साथ लाए हो?
0: राजा नहीं, महात्मन की कृपा का याचक भर्तृहरि आपको प्रणाम करता है।
2: वाणी का धनी है तू भर्तृहरि, गोरखनाथ को गुरु बनाने निकला है। ये कठिन संकल्प है, तूने राज्य का मोह छोड़ दिया, परिजन पुत्र कलत्र आदि से पीठ फेर ली, अस्थि का अहम भुला दिया। अब भी एक बड़ी बाधा है, काम और कामना। गुरु गोरखनाथ तेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि काम पर विजय पाकर ही कोई योग धारण करने की योग्यता प्राप्त करता है।
0: गुरु तक पहुंचने का मार्गदर्शन करें देव।
2: ध्यान से सुन, दक्षिण पूर्व की दिशा में कदली वन के उत्तर में वामा क्षेत्र है। वहां नारी शासक है और पुरुष उनका अनुचर। काम देश में शिव की शक्ति योनि रूपा होकर निवास करती है। ये समस्त सृष्टि चर और अचर योनिज ही तो है, शिव और शक्ति ही केवल अयोनिज है। तू सर्वप्रथम नत नेत्र होकर योनि रूपा मां कामाख्या से अनुमति लेकर उसके प्रदेश में प्रवेश करना। उनकी कृपा से तुझे न काम व्यापेगा और कामना पूरी होगी। और शायद गुरु भी मिल जाए। अब जा भर्तृहरि, सिंह के लौटने का समय हो गया है।
3: गुरु से मिलने की धुन में भूख प्यास को भूलकर भर्तृहरि चलते चलते कामाख्या की कृपा भूमि में पहुंच गए। देवी का विग्रह अप्रत्यक्ष अमूर्त है यहाँ। प्राकृतिक रूप से निर्मित शिला मंदिर के गर्भगृह में शक्ति विग्रह है देवी का। मंदिर की परिक्रमा कर पुरोधा के निर्देशानुसार उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया। मात्र अभ्यर्थना की और नेत्र मूंद कर वहीं बैठ।

0: रात में यहाँ देव, मनुज, किन्नर, गंधर्व आदि अपनी शक्तियों सहित देवी की अर्चना के लिए आते हैं। अर्धरात्रि में भूत, बेताल, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, योगिनी, भोगिनी, भैरवी का तंत्र जुटता है। मनुष्य यदि प्रवेश करे तो जीवित नहीं रहता। भर्तृहरि अभी समाधि की अवस्था में थे। पुरोधा ने उन्हें जगाने के लिए पुकारा,
1: जागो साधा, खड़े हो जाओ।
2: मुझे गुरु

0: गोरखनाथ से मिलना है।
1: मैं तुम्हें उनका पता बताऊंगा, मिल लेना उनसे जाकर। अब उठकर खड़े हो जाओ, हट मत करो।
0: हां पुरोहित, हट ही सही। अब तो गुरु गोरखनाथ के प्रबोधन पर ही ये आसन भंग होगा।
1: किंतु गुरु के आने तक तुम जीवित नहीं रह पाओगे। उनके कार्य में हस्तक्षेप से क्रुद्ध देव दजुज यही तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे। यदि संयोगवश उनसे बच भी गए तो भूत प्रेत पिशाच तुम्हें चबा लेंगे। मैं कहता हूं बंधु चलो। कोई उत्तर नहीं, पुनः समाधिस्थ हो गया। ये तो स्वयं काल को पुकार रहा है, तो मैं क्या करूं। मां नरबली चाहती है तो कोई क्या कर लेगा।
2: पुरोहित गर्भगृह में ध्यानस्थ भर्थरी को छोड़कर अपने आवास में लौट तो आए, लेकिन एक अवसाद उन्हें घेरे हुए था। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। एक मनुष्य अनावश्यक प्राण गंवा रहा था। ये दुख और इसका अपराध, फिर अनुताप, बेचैन हो उठे पुरोहित। नुपुर किंकणी पायल, नृत्य, अहलाद में डूबे नारी स्वर, मधुर स्वर, जैसे रंगोत्सव चल रहा हो।

0: पुरोहित अपने नित्य समय से पहले ही मंदिर पहुंच गए। प्रांगण में देव सुंदरियों के पंजों से छूटे आलक तक कुमकुम मणिराग से रक्तिम हो रहा था। देव पुष्पों की मालाएं, कर कंकण, टूटी हुई वेणियां भी सदा की भांति सिंदूर, मद्यभाण, मीन मांस के खंड भी यहां वहां बिखरे हुए थे। अर्थात रात्रि के सभी अर्चक आज भी देवी कामाख्या के आंगन में आए थे। पुरोहित ने गर्भगृह में प्रवेश किया और देखा अपने स्थान पर भर्तृहरि उसी मुद्रा में अविचल मौन समाधिस्थ बैठे थे, जैसा पुरोहित उन्हें छोड़कर गए थे। सामने रखा दीपक उसी भांति निष्कंप प्रज्वलित था। पुरोहित भर्तृहरि के चरणों में गिर पड़े।
1: आप निश्चय ही मां के वरद पुत्र हैं। मैं समझ ना पाया, इस ब्राह्मण का अपराध क्षमा करें।
2: क्या कर रहे हैं विप्रवर, मैं इस योग्य नहीं हूं।
1: मुझे क्षमा कर दे महात्मन, मैंने आपको व्रत से विरत करने का प्रयास किया था। मैं अब आपकी साधना में विघ्न न डालूंगा।
2: अलख अलख गोरख गोरख अलख अलख गोरख गोरख अलख अलख गोरख गोरख अलख।
0: भर्तृहरि 3 दिन तक वहीं बैठे रहे, न भूख की व्यापरी, न प्यास की, न क्लांति और न ऊब। फिर यकायक प्रांगण अलौकिक सुगंध से भर उठा। भर्तृहरि को लगा जैसे कोई हाथ उनके कंधे पर है।
3: आंखें खोलो भर्तृहरि, मैं आ गया। मन की वृत्ति को गुरु की ओर ले जाओ। तुम अब नाद और बिंदु दोनों को बजाने योग्य हो गए हो। परम शिव की आदि शक्ति से आज्ञा लेकर अब बाहर निकलो। अलख निरंजन।
0: आदिनाथ शिव के अंशावतार गुरु गोरखनाथ स्वयं महाकाल के दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। गुरु की शिष्य मंडली में आगे आगे भर्तृहरि, न छत्र न चंवर, न दंड न मुकुट,

0: हौले हौले चल रहे हैं योगी भर्तृहरि।
1: गुरु गोरखनाथ की
2: जय।
1: गुरु गोरखनाथ की
2: जय।
1: गुरु गोरखनाथ की
2: जय।
1: राजा भर्तृहरि की
2: जय।
1: राजा भर्तृहरि की
2: जय।
1: राजा भर्तृहरि की
2: जय।
0: योगी का वेश बना रखा है, मूंज की मेखला, कर्ण मुद्रा, नंगे पांव, एक हाथ में लकुट और दूसरे में कांसे का भिक्षा पात्र, काले भेड़ की ऊन से जनेऊ जिसमें श्रृंगी बंधी है और कंठ में रुद्राक्ष की माला। राजा ने योग ग्रहण कर लिया है। जनसमूह गुरु गोरखनाथ का उपदेश सुनने एकत्रित हो जाते हैं।
3: एकटि अर्थात इडा और विकुटी माने पिंगला का जब त्रिकुटी अर्थात सुषुम्ना से मेल होता है और सुषुम्ना में पवन का निरोध हो जाता है, तब साधक अमर हो जाता है। आज इस नगर का पुत्र भर्तृहरि अमृत पान करने निकल रहा है, इसलिए गीत गाओ, उत्सव मनाओ। जाओ जोगी भर्तृहरि, मन में जो भी राग द्वेष हो यहां महाकाल के चरणों में अर्पित कर दो। रानी पिंगला से भिक्षा पाए बिना तुम अमृत के अधिकारी नहीं हो सकते। जाओ, मैं तुम्हारी यही प्रतीक्षा कर रहा हूं।
0: भर्तृहरि गुरु के आदेश को पूरा करने चल पड़े। पीछे पीछे अथाह जन समूह, रोते बिलखते प्रजाजन। राजा अब नहीं लौटने वाले। उज्जैनी की यह विह्वल प्रजा इस क्षण की साक्षी बन रही है। रनिवास के द्वार पर एकत्र थे पुत्री को गोद में लिए शची, पुत्र की अंगुली पकड़े चंपा, अफसादा कुल रानी पिंगला, कुछ हटकर वयसिका, महामात्य पूर्णरथ और संख जाते हुए कुमार विक्रम।
4: मैंने कृत अकृत कथित वांछित द्वारा आप सबको जो भी कष्ट पहुंचाया हो उसके लिए क्षमा की भिक्षा मांगता हूं। शची, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। हर आपत्ति, कठिनाई, एकाकीपन में रक्षक बनी तुम, मेरे साथ रही, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे। ये शरीर उससे उऋण नहीं हो सकता। लो, ये लकुट तुम्हें लौटा रहा हूं। चंपा, चंपा तुम वो छाया थी जो सुख में शरीर के साथ चलती रहती है और दुख में काया का कवच बन जाती है। तुम्हारे जैसा आत्मविसर्जन योगी के लिए भी दुर्लभ है। और वयसी का तुम अवंती के महालय के लिए महाकाल की कृपा बनकर आई। भर्तृहरि तुम्हारा कृतज्ञ है। कुमार विक्रम, विगत को विस्मृत कर दो, तुम्हारे प्रति मुझे कोई रोष नहीं। महामात्य, मैंने आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे। आपने उज्जैनी की प्रजा, राजा और राज्य के अतिरिक्त कभी कुछ सोचा ही नहीं। आप ना होते तो ये राज्य भी नहीं होता और ना ये राज परिवार। आर्य, अब मुझे आज्ञा दीजिए।
5: नरेश, अब आपको रोकना व्यर्थ है। आप नहीं रुकेंगे, पर इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि संन्यास से संसार नहीं चलता।

0: योग धारण से प्रजा योगी नहीं हो जाएगी, वो रहेगी। सहस्त्रों वर्षों का अनुभव तो यही है कि शस्त्र के बिना प्रजा तो नष्ट होती ही है, धर्म का भी क्षय होता है। राजा के बिना प्रजा निरंकुश अनियंत्रित होकर अपने आप को नष्ट कर लेती है। राजन, आप अपनी प्रजा को अरक्षित छोड़कर जा रहे हैं। कुमार अभी शिशु है, उनके समर्थ होने तक राज्य और प्रजा के हित में आपको आज्ञा देनी होगी, अपनी अंतिम आज्ञा।
1: यही सही, आप क्या चाहते हैं?
0: वैसिका के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूं।
1: वैसिका क्या अब भी मेरी आज्ञा स्वीकार करेगी?
2: वैसिका का रोम रोम आपका और महादेवी पिंगला का ऋणी है देव। ये जीवन उपनिधि है आपकी।
1: आर्य, आप जो भी कहना चाहें मेरी ओर से वैसिका से कह दें।
0: प्रजा और राज परिवार के हित में वैसिका कुमार विक्रम का वरण करे।
3: वैसिका को अपने कानों पर विश्वास न हुआ। वैसिका ने महामाती पर आहत दृष्टि डाली, पास खड़े कुमार को सजल नेत्रों से देखा और भर्थरी द्वारा सामने बढ़ाए गए भिक्षा पात्र में आंसुओं से भीगे अपने दोनों हाथ रख दिए।
4: रानी पिंगला से भिक्षा पाए बिना तुम अमृत के अधिकारी नहीं हो सकते।
5: जोगी को भिक्षा दे माता पिंगला।

0: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 26वां और अंतिम भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार शीलू अस्थाना, भर्तृहरि अरविंद बिलगई।
1: संग्रहालय से, इसके अंतर्गत अभी आपने कामिनी काय कांतारे की 26वीं कड़ी का प्रसारण सुना। इस वक्त आप जुड़े हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के संग। 12:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। कथित अनियमितताओं के पारदर्शिता और स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर छात्र विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हुए। यहां से मुख्यमंत्री भोपाल लौटकर आगर मालवा की कलश यात्रा कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मिलित होंगे। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में श्रावण मास में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। आज श्रावण मास के दूसरे सोमवार को सुबह भस्म आरती में बाबा महाकाल का राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों को एक और अंतिम मौका दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग आज से 14 अगस्त तक अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग यानी सीएलसी चरण आयोजित करेगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा डिजाइनर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन की महत्वपूर्ण

भूमिका है और भारतीय बुनकर अपने उत्पादों के डिजाइन में सुधार कर बिक्री बढ़ा सकते हैं। और मौसम विभाग ने राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उज्जैन, आगरमालवा, सागर और जबलपुर समेत कई जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। भोपाल में रात भर से तेज बारिश हो रही है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

स्वास्थ्य दर्पण सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त श्वेता सोहनी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हर व्यक्ति की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। श्रोताओं, हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में कई छोटी बड़ी बीमारियों का सामना करते हैं और इन बीमारियों के लिए बिना डॉक्टर की सलाह या अन्य किसी व्यक्ति की सलाह या सोशल मीडिया के माध्यम से बीमारी का इलाज स्वयं ही कर लेते हैं, जो कि कई बार गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि हम बीमारी की सही पहचान नहीं कर पाते हैं। स्वचिकित्सा के कारण गलत दवा या दवा की गलत मात्रा लेने से बीमारी बढ़ सकती है और कई बार तो शरीर के दूसरे अंगों पर भी इसका दुष्प्रभाव देखा जा सकता है। कई बार कुछ लोग सर्दी, बुखार या दर्द जैसी सामान्य समस्याओं में भी बार बार दवाइयां बिना डॉक्टर के परामर्श के ले लेते हैं, जिससे बीमारी का असली कारण पता नहीं लग पाता है और सही उपचार मिलने में देर हो सकती है। इसलिए स्वचिकित्सा खतरनाक हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि दवा तभी ले जब डॉक्टर उसकी सलाह दें। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, स्वच्छता और समय समय पर चिकित्सकीय परामर्श सबसे सुरक्षित उपाय हैं। अपने परिवार तथा समाज को भी स्वचिकित्सा के खतरों के प्रति हमें जागरूक रखना होगा। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है गीत संगीत का, तो आइए आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो गया है भेंट वार्ता का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं घुटनों का दर्द और ऑस्टियो आर्थराइटिस कारण, बचाव और उपचार विषय पर डॉक्टर प्रदीप जैन से मनीष गजभिये की बातचीत।
1: स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में स्वागत है आपका, मैं हूं मनीष गजभिये। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में घुटनों के दर्द की समस्या तेजी से बढ़ रही है। चलने फिरने में दर्द, सूजन, अकड़न जैसी समस्या लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। घुटनों के दर्द के मुख्य कारण क्या है, क्या समय रहते इससे बचाव संभव है और आधुनिक चिकित्सा में इसके कौन कौन से प्रभावी उपचार उपलब्ध है, इन्हीं विषयों पर जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रदीप जैन को। आप वरिष्ठ ऑर्थोपेडिशियन हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि घुटनों के दर्द के मुख्य कारण क्या है और यह किन वजह से होता है।
2: देखिए, घुटनों के दर्द के एक तो बहुत सारे कारण हैं
1: जी।
2: उनमें से यदि चोट लगी है
1: जी,
2: तो अपन ये देखेंगे कि घुटने की कौन सी हड्डी में चोट है, फ्रैक्चर है, या उसके अंदर में बहुत सारे लिगामेंट्स रहते हैं, कैप्सूल्स रहते हैं, मेनिस्कस रहता है, तो क्या कहीं उसमें इंजुरी है, इंजुरी के कारण चोट है तो वो बात अलग है। या इसके अलावा ओवर वेट है, इंसान का वेट ज्यादा है, डायबिटीज है, या उसको थायराइड है, या यूरिक एसिड का बहुत ज्यादा हाई है, या कई और दूसरे रोग हैं, इन्फेक्शन अगर है, फीवर है, चिकनगुनिया है, उसके भी कारण से घुटनों में दर्द पॉसिबल है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आजकल ऑस्टियो

0: ऑस्टियोआर्थराइटिस है वह काफी ज्यादा बढ़ गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है और यह किस कारण से होता है।
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही कॉमन है आजकल और एज के साथ का ताल्लुक है। घुटने के अंदर का जो ज्वाइंट रहता है उसमें बोन के ऊपर में कार्टिलेज नाम की एक चीज रहती है, वो कार्टिलेज उम्र के साथ साथ थोड़ा घिस जाता है। सभी का घिसता है, किसी का कम किसी का ज्यादा, और भी बहुत सारे कारण रहते हैं जो उस कैप्सूल के ज्वाइंट के कार्टिलेज के डैमेज होने के कारण जो अपने को घुटने में दर्द होता है उसको अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं।
0: जी,
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको एजिंग आर्थराइटिस बोला जाता है।
0: जी,
1: और भी कई हैं कारण, जैसे कि अपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, और इसके अलावा रूमेटिक आर्थराइटिस है। ऐसे बहुत सारे कारण घुटने के दर्द के हैं, पर मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है जो एज के साथ साथ होता है।
0: जी जी जी, महिलाओं में अक्सर देखा गया ये समस्या ज्यादा रहती है, तो इसके पीछे की क्या वजह है?
1: जी जी, महिलाओं में ज्यादा होने का कारण उसमें क्या है कि जो भारतीय महिलाएं हैं वो ज्यादातर काम घर में या किचन में भी करती हैं तो वो बैठ के करती हैं।
0: जी,
1: और जैसे कि पालथी मार देती हैं, पूजा अगर करती हैं तो वो भी बैठ के होती है।
0: बिल्कुल,
1: और इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल होता है और ज्यादातर भारतीय महिलाओं की हाइट वो थोड़ी कम रहती है, वेट जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। तो हाइट और वेट के हिसाब से जो बॉडी मास इंडेक्स जिसको अपन BMI कहते हैं, तो उससे उनके घुटनों पे काफी ज्यादा आता है लोड, जिसके कारण से ये लेडीज में ज्यादा होता है।
0: जी,
1: दूसरा एक कारण है कि जो भारतीय महिलाएं वो अपने खान पान का उतना ध्यान नहीं रखती हैं। ज्यादातर जो अच्छा खाना है या जो पौष्टिक भोजन है वो अपने फैमिली के बच्चों को या अपने हस्बैंड को पुरुषों को दे देती है और अपने ऊपर उतना ध्यान
0: नहीं देती है।
1: तो उनको पूरे पोषक तत्व जो है विटामिन डी है, कैल्शियम है, वो चीजें नहीं मिल पाती। ये भी एक कारण है कि लेडीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दी आपने। अब डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको कि हमें गंभीर मानकर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
1: देखिए, घुटनों का दर्द ऐसी चीज है कि ज्यादातर लोग, खास तौर से लेडीज महिलाएं, उसको उतना ध्यान नहीं देती। वो ये मानती है कि अब हमारी एज हो गई है या पीरियड आना बंद हो गया, मेनोपॉज हो गया, उसको वो लाइफ अंग मान लेती है कि ये तो चूंकि एज हो गई तो ये हमको हो गई होगा। पर जैसे लक्षण जो आपने कहा कि कौन से ऐसे हैं जिसको अपन माने के अपने को जो प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसमें मेन ये है कि जब अपन अपने नॉर्मल काम रोज के जब अपने को करने में दिक्कत होने लगे और जब मेडिसिन खाने की आवश्यकता पड़े, अपने को रोज डेली जो है आपका काम जो है बगैर गोली खा के ना हो, और कई बार गोली खाने के बाद भी आपको लगे कि उतना आराम नहीं हो रहा।
0: जी जी जी,
1: और जो नॉर्मल काम है जैसे पालथी मारना है या इंडियन टॉयलेट पे बैठना है, स्क्वैट करना है, उकड़ू बैठना है, सीढ़ी चढ़ना उतरना है, तो ये जो रोजमर्रा के नॉर्मल काम है अगर इनमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाए तो इसका मीनिंग ये है कि अब आपको उसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता
0: है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और आपको किसी भी तरह की परेशानी ज्यादा बढ़े उससे बेहतर है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से संपर्क कर किससे की परामर्श आप अवश्य लें। डॉक्टर साहब, घुटनों के दर्द की जांच किस तरह की जाती है? क्या आज के आधुनिक युग में एक्सरे, MRI या अन्य जांच किस समय आवश्यक होती है जब हमें लगता है कि हमें इसे कराना ही चाहिए?
1: देखिए, जब आपको नी में पेन स्टार्ट हो, घुटने का दर्द शुरू हो, सबसे पहली जो बेसिक जांच होती है वो एक्सरे होती है।
0: जी,
1: घुटने के एक्सरे स्टैंडिंग अवस्था में लिए जाते हैं। नॉर्मली किसी चीज के लिए अपन जाते हैं एक्सरे के लिए तो वो अपन किसी वो जो टेबल होती है उस पर कहते हैं आप पैर कर लीजिए, बैठ जाइए। पर ये नी के लिए और स्पेशली ऑस्टियोआर्थराइटिस की जांच के लिए एक्सरे दोनों घुटनों के होते हैं और खड़े होके होते हैं, लोड बियरिंग एक्सरे अपन बोलते हैं।
0: जी जी,
1: स्टैंडिंग एक्सरे। उसमें एक एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू होता है, एक लेटरल व्यू होता है, मतलब एक सामने से लिया जाता है, एक साइड से लिया जाता है। मूल जो जांच है वो एक्सरे है।
0: जी,
1: इसके अलावा खून की भी कई किस्म की जांचें पेशेंट की होना चाहिए कि आखिर ये इनको क्यों हो रहा है और या इतनी स्पीड में क्यों हो रहा है, उतनी एज नहीं है कि जितना इनको हो रहा है। उसके लिए कई टाइप की खून की टेस्ट होते हैं, जैसे कि डायबिटीज की है, थायराइड की है, यूरिक एसिड की है, विटामिन डी का लेवल है, कैल्शियम का लेवल है, फास्फोरस का लेवल है, विटामिन B12 का लेवल जो बॉडी में है, तो ये सारी टाइप की खून की जो जांचें हैं वो भी घुटने के दर्द के निदान में, उसके डायग्नोसिस में अपने लिए आवश्यक है।
0: जी,
1: और इसके अलावा

0: घुटने का दर्द है, ये जो कार्टिलेज के घिसने के कारण हो रहा है, या जैसे और भी कई होते हैं रोग, गठिया अपन उसको जो बोलते हैं, रूमेटिक आर्थराइटिस
1: जी,
0: ऑटोइम्यून डिजीज होता है, उसके लिए एक आरए फैक्टर की भी जांच होती है
1: जी,
0: यह भी खून की जांच होती है, उसको अपन रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर बोलते हैं। तो ये जांच भी घुटने के दर्द के जो होते हैं पेशेंट, तो उसमें की जाती है।
1: डॉक्टर साहब, क्या हर घुटने के दर्द की सर्जरी की आवश्यकता होती है या बिना सर्जरी के भी इसका इलाज संभव है?
0: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल धारणा ये है कि साहब हम घुटने के दर्द के लिए डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कहा कि आपके घुटने खराब हो गए और आपका घुटना चेंज होगा, ऑपरेशन होगा। तो इसके बारे में मेरा कहना ये है कि मरीज जब आता है डॉक्टर के पास, वो काफी लेट स्थिति में आता है
1: जी,
0: तो उसको पिछले कई सालों से घुटने में पेन होता है पर वो उस तरफ ज्यादा जो है ध्यान नहीं देता
1: जी,
0: ना वो दवा खाता है, ना डॉक्टर के पास जाता है, ना वो अपना वेट पे ध्यान रखता है, एडवाइस नहीं मानता, प्रॉपर डाइट, कैल्शियम विटामिन डी जो आवश्यक है वो भी नहीं लेता। तो चूंकि वो डॉक्टर के पास में देर से आता है, तब शायद वो, चूंकि देरी से आने के कारण उसको कहा जाता है कि अब आपके घुटना इतना ज्यादा डैमेज हो गया है कि अब ये गोली दवा या किसी चीज से पूरा ठीक नहीं हो पाएगा
1: जी,
0: तो आपके घुटने चेंज होंगे। यदि व्यक्ति अपना ध्यान जो है स्टार्टिंग से ही रखे, अपने वेट पे कंट्रोल रखे, और अगर कुछ दूसरे रोग भी हैं जैसे कि डायबिटीज है या थायराइड है, तो वो उसका भी इलाज ले और मेनली कैल्शियम और विटामिन डी प्रॉपर ले, बैलेंस डाइट ले, तो शायद इसकी स्थिति नहीं आएगी
1: जी,
0: बिना ऑपरेशन के भी इलाज हो सकता है अगर वो सही टाइम पे डॉक्टर के पास आ जाए।
1: जी जी जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, घुटना प्रत्यारोपण नी रिप्लेसमेंट, इसकी आवश्यकता आपने बताया कि लेट आने की वजह से होती है, तो क्या नी रिप्लेसमेंट के बाद कोई भी व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है?
0: जी जी, नी रिप्लेसमेंट आजकल काफी आसान हो गया है
1: जी,
0: और अपने इंडिया में, अपने भारतवर्ष में भी काफी हो रहा है, छोटे छोटे शहरों में भी हो रहा है, क्योंकि जो इसमें इम्प्लांट यूज करते हैं वो अपने इंडियन जो अपनी बॉडी रहती है, भारतीय स्ट्रक्चर, तो उस बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आजकल आ रहे हैं इम्प्लांट, स्पेशली इंडिया के लिए काफी अच्छे आ रहे हैं, कॉस्ट भी कम हो गई है, तो इसलिए आसान है आजकल, और यानी रोबोटिक भी हो रहा है, और 4 से 6 हफ्ते के अंदर में आदमी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है
1: जी।
0: तो नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद में जो अपन ने नया घुटना में इम्प्लांट किया है, तो वो उसको काम के लायक करने के लिए 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक की फिजियोथेरेपी होती है कि जो अपन ने इम्प्लांट ज्वाइंट नया डाला है वो काम के लायक हो जाए, तो इसमें 4 वीक्स टू 6 वीक्स तक का टाइम लगता है
1: जी।
0: तो 6 हफ्ते तक का टाइम आप जो मान लीजिए, आफ्टर 6 वीक्स जो है पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता है, कोई उसमें वो नहीं है प्रॉब्लम
1: जी जी जी। और साथ साथ खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है।
0: खान पान का इस चीज में काफी ताल्लुक है, स्पेशली खान पान का ताल्लुक आपके वेट से है। ज्यादातर जो पेशेंट होते हैं घुटने के दर्द वाले, उनका वेट ज्यादा होता है, ओवर वेट रहते हैं, चाहे वो लेडीज हो या पुरुष हो, ज्यादातर का वेट ज्यादा रहता है
1: जी।
0: तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, तो उस कैलोरी के हिसाब से दिन में 3 टाइम कैलोरी को आप बांट के उतना ही फूड लीजिए, लेकिन जो बैलेंस डाइट अपने को आवश्यक है, पूरा प्रोटीन, स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 और फास्फोरस, तो अपन को कैलोरी कम हो लेकिन जो पोषक तत्व हैं जो आवश्यक वो अपने को पूरे पहुंच जाए
1: जी,
0: और वेट भी अपना कंट्रोल जाए
1: जी।
0: तो खान पान का इस रोग में, घुटने के दर्द का जो रोग है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें खान पान का काफी महत्व है
1: जी। डॉक्टर साहब, घुटनों की सुरक्षा के लिए बुजुर्गों को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: जी जी, देखिए मेनली ज्यादातर ओल्ड एज के पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम रहता है
1: जी,
0: और विटामिन डी भी कम रहता है, तो ओल्ड एज के लोग भी अपना डाइट बैलेंस लें, ताकत पूरी रहे, कैल्शियम और विटामिन लें, और सबसे मुख्य चीज तो ये है कि चोट ना लगे, चोट से बचें, तो एक अपना स्टिक लिए रहें, हाथ में स्टिक लिए रहें, जितना वॉक इनसे हो पा रहा है वो करें, और चोट इनको ना लगे ये ध्यान रखें। इसके अलावा कोई और भी जो अगर रोग है जैसे डायबिटीज है या अगर यूरिक एसिड इनका हाई है तो उसका भी इलाज लें
1: जी। बहुत अच्छी बात की आपने, और कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या स्वास्थ्य संबंधी सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें भविष्य में किसी भी तरह के घुटनों के दर्द की परेशानी का सामना न करना पड़े?
0: वेट पे कंट्रोल रखें, पौष्टिक खाना खाएं, खासतौर से दूध इत्यादि का करें सेवन, जिससे अपने को कैल्शियम और विटामिन डी मिले, और घुटने में जैसे ही आपको दर्द या कुछ भी चीज शुरू हो, फौरन अपने

0: डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें और उसकी एडवाइस माने।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी यह भेंट वार्ता। उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से हमारे श्रोता जरूर लाभान्वित होंगे। आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है क्रम हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें हम जेनेटिक टेस्टिंग और व्यक्तिगत चिकित्सा विषय पर बात करेंगे। श्रोताओं, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में डीएनए होता है, जिसमें हमारे शरीर के विकास कार्य और कई अनुवांशिक गुणों की जानकारी होती है। डीएनए में मौजूद जीनों की जांच को जेनेटिक टेस्टिंग कहा जाता है। इस परीक्षण से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई अनुवांशिक बीमारी होने की संभावना है या नहीं। श्रोताओं, इस टेक्नोलॉजी के उपयोग से व्यक्ति की अनुवांशिक बनावट, स्वास्थ्य स्थिति और जीवन शैली के अनुसार उनका उपचार किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की बनावट अलग होती है।

इसलिए एक ही दवा सभी लोगों पर समान प्रभाव नहीं डालती। व्यक्तिगत चिकित्सा में डॉक्टर रोगी की अनुवांशिक जानकारी के आधार पर सही दवा और उसकी उचित मात्रा का चयन करते हैं। यह टेक्नोलॉजी कैंसर, हृदय रोग और कुछ दुर्लभ अनुवांशिक बीमारियों के इलाज में विशेष रूप से उपयोगी साबित हो रही है। इससे बीमारी का जल्दी पता लगाया जा सकता है, जिससे सही उपचार चुनने में मदद मिलती है। दवाओं के साइड इफेक्ट कम हो सकते हैं और उपचार प्रभावी बनता है। जेनेटिक टेस्टिंग और व्यक्तिगत चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भविष्य में सटीक, सुरक्षित और प्रभावी उपचार का मार्ग प्रशस्त कर रही है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है सेहत सूत्र का। श्रोताओं, किसी भी तरह की बीमारी या संक्रमण से बचने के लिए हमारी नियमित दिनचर्या का होना बहुत जरूरी है। बारिश के इस मौसम में हम सेहत का ध्यान रखना और जरूरी हो जाता है। इस मौसम में कई बीमारियां दूषित पानी के कारण होती है, अतः पानी साफ और उबला हुआ पिए। मौसमी फल, सब्जियां, दालें और पर्याप्त पानी शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। हो सके तो इस मौसम में बाहर का खाना खाने से बचे। अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। हल्का व्यायाम करें। श्रोताओं, उम्मीद है आज का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ ही आपसे पुनः भेंट होगी। अपनी रेडियो दोस्त श्वेता सोनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: स्वास्थ्य दर्पण, इस कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र का योगदान था। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
6: और झूलते झूलते सुनते हैं
4: मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: इस समय आप है हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
4: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 होने जा रहे हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंदा श्रीवास के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ इस गणेश वंदना से।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं चंदा श्रीवास के गाए हुए बुंदेली लोकगीत। अब ये किसानी गीत सुनिए।

और इसी किसानी गीत के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इसमें आपने सुने चंदा श्रीवास के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 1:45 हुए हैं। ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में अब आप सुनने जा रहे हैं असलम सावरी की गाई हुई चंद गजलें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी भोपाल का योगदान है। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं जिगर मुरादाबादी के इस कलाम से।

0: असलम साबरी और साथियों की गाई हुई गज़लों का लुत्फ अभी आपने लिया सुगम संगीत के कार्यक्रम में। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की थी। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:57 होने जा रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6:00।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5:00
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
7: हाँ हाँ क्यों नहीं,
6: और झूलते झूलते सुनते हैं
4: मालवा की शान आकाशवाणी
5: इंदौर।

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: इस समय आप है हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
4: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

ये गीत हमने लिया है देश द्रोही फिल्म से, जुबीन और श्वेता पंडित ने गाया है, कमाल का ये गीत है और धुन है निखिल की।

अब आप सुनिए आर्टिकल 15 फिल्म का ये गीत, यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा ने इसे गाया है, पीयूष शंकर ने धुन तैयार की है और बोल हैं रश्मि विराग के।

0: आर्टिकल 15 फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म होता है। 2:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान

0: ग्लासगो के एक रेस्टोरेंट में भारत का गलत नक्शा देखने के बाद आपत्ति जताने के लिए मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान लवलीना की सराहना की और कहा कि ये एक सोच समझकर की गई प्रतिक्रिया थी, खासकर ऐसे समय में जब वो अपनी जीत का जश्न मनाने बाहर निकली थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके इस कदम को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। लवलीना बोरगोहेन ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की 75 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में रजत पदक जीता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आज जबलपुर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर प्रसिद्ध संस्कार कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा का जल और पौधा लेकर करीब 30 किलोमीटर की यात्रा कर कैलाश धाम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और मंगल यात्रा की शुभकामनाएं दी। ग्वारी घाट से शुरू हुई यात्रा में श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष के साथ कैलाश धाम पहुंचकर नर्मदा जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। उज्जैन में श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर आज भस्म आरती में भगवान महाकाल का राजा स्वरूप में दिव्य श्रृंगार किया गया। तड़के 2:30 बजे मंदिर के कपाट खुलने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान महाकाल का अभिषेक और पूजन किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने भस्म आरती के दर्शन किए। वहीं आज शाम 4 बजे बाबा महाकाल की श्रावण मास की दूसरी सवारी निकलेगी। भगवान चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में नगर भ्रमण करेंगे और शाम 5 बजे रामघाट पहुंचकर क्षिप्रा नदी के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शेर दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास का विस्तार हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए कहा कि सामुदायिक भागीदारी के साथ वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता इस विशिष्ट प्रजाति को आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। आलेख के अनुसार वर्ष 2015 में 523 रही एशियाई शेरों की संख्या 2025 में बढ़कर 891 हो गई है। वहीं शेरों का पर्यावास करीब 30,000 से बढ़कर 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। राजगढ़ जिले में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पारना के पास झिरी नाले में तेज बहाव के बीच एक वाहन बह गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वाहन में 11 लोग सवार थे, जिनमें से 3 के सुरक्षित निकलने और 8 के लापता होने की सूचना है। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर तलाश अभियान चला रही है। प्रशासन ने लोगों से जलमग्न रास्तों और नदी नालों को पार नहीं करने की अपील की है। प्रदेश में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, खंडवा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, पाडुना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, जबलपुर, गुना, शिवपुरी और शिवपुर में भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली द्वारा भारतीय हथकरघा एवं साड़ी की पारंपरिक विरासत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साड़ी ड्रैपिंग एवं हैंडलूम डेमोन्स्ट्रेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन आज शाम 4 बजे से मध्य प्रदेश भवन के ऑडिटोरियम में होगा। विक्टोरिया जिला अस्पताल जबलपुर में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष निःशुल्क जाँच और उपचार शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ मौसम 2026 में अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ने जागरूकता रथ चलाए जा रहे हैं। फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अगस्त 2026 कर दी गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने जा रहे हैं। दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और

0: कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
3: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
4: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।

0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 155,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत ये रहा। इस गीत को सुनवाने की फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने की है उनके नाम इस गीत के बाद।
4: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को

0: मत लगा, चल जाएगी।
1: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
2: दिल जले, दिल जले, और लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं।

ये गीत आप सुन रहे हैं पूर्णिमा और अजय देवगन की आवाज़ में। जावेद अख्तर ने इस गीत को शब्द दिए हैं धुन अनु मलिक की फिल्म का नाम दिल जले।

दिलजले फिल्म के इस गीत को सुनना चाहा था हमारे जिन दोस्तों ने, उनके नाम ये रहे सिंहपुर बड़ा से राजेश नीमा, संगीता भावना और प्राची नीमा, आदर्श नगर मलोट से ये चिट्ठी लिख भेजी है राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, शाइना और निवान शर्मा ने। गोला बाजार बक्सर से अगला खत आया है मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, आयुषी और सानवी का।

अब आप सुनने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में वो गीत जिसे हमने लिया है दोस्त फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई है, बोल हैं आनंद बख्शी के। सुनना चाहा है हमारे इन सभी दोस्त

उन्हें गांव भड़भूंजी जिला आगर मालवा से रघुनाथ मालवीय, सुषमा मंजू बबीता, आयुष मधुमिलन और ओम प्रकाश जी ने। बाकी के नाम इस गीत के बाद।

इस गीत को सुनना चाहा था हमारे जिन दोस्तों ने, उनके नाम ये रहे: गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बरिक, जैतेक बरिक और मीका बरिक। सपना संगीता रोड इंदौर से ये चिट्ठी लिख भेजी है लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हमने आपको किशोरदा का ये गीत सुनवाया और अब हम हमारे अगले दोस्तों की फरमाइश पूरी कर रहे हैं। आशा रेडियो श्रोता संघ उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, सरिता, प्रिंस और एकांश गवाणकर। बदलापुर बंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता और अर्जुन गवाणकर टुक टुक ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। आकाश नगर हाइट्स बहादुरा नागपुर से अगली चिट्ठी लिख भेजी है वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित और ध्वनि गवाणकर परी ने। अमरपुर पेंटर छत्तीसगढ़ से अगली चिट्ठी लिख भेजी है रेखा देवी, श्वेता और सुरुचि देवी श्रीवास्तव ने। और इसके बाद जो खत हमें लिख भेजा है हमारे उन दोस्तों के नाम ये रहे: अनिल कौचाले, सबीहा, सुषमा, आरती, अमृता, तृप्ति, श्वेता, राखी और पूजा। इन्होंने ये खत हमें लिख भेजा है गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से। इन दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं त्रिशूल फिल्म का ये गीत। साहिर की धुन खयाम के, माफ कीजिएगा, खयाम की धुन, साहिर के बोल, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और येसुदास की आवाज।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और इस गीत को जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके लिए अपनी ख्वाहिश लिख भेजी है हमारे इन सभी दोस्तों ने। ये हैं किशन घी वाला दमोह से, इन्होंने अपनी चिट्ठी लिख भेजी है। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाजापुर से अगला खत लिख भेजा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और इनका पूरा परिवार। दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छिनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने भी हमारे इस गीत को सुनना चाहा है। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर दिल ने फिर याद किया फिल्म का शीर्षक गीत, मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश का गाया हुआ। GL रावल ने इस गीत को शब्दबद्ध किया है और सोनिक ओमी की धुन है।

लता जी की आवाज़ में इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन सभी दोस्तों ने, धमणी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश, किरण और प्राज्वल डेरे, साथ में हैं अनुदत्त डेरे। पालदनाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मोहम्मद रफ़ी और बबलू मंसूरी ने भी लता जी के गाए हुए इसी गीत को सुनना चाहा था। और कुछ नाम और हैं हमारे दोस्तों के जिन्होंने इस गीत को सुनना चाहा है। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक और प्रतीक मल्होत्रा ने मोहाली से हमें ये चिट्ठी लिख भेजी थी। और अब आ रही है कार्यक्रम के आखिरी गीत की बारी। इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन सभी दोस्तों ने, शीतल रेडियो श्रोता संघ, ग्राम बहरामपुर टेमा, ज़िला खरगोन, मध्य प्रदेश से ये चिट्ठी लिख भेजी है डॉक्टर तिलोकचंद वर्मा ने, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, डॉक्टर अमित, सचिन, समरराज, आर्यन, बेबी आरोही, इशिका और अंजलि श्वेता वर्मा ने इसी गीत को सुनना चाहा है। पंकज बड़ौदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बड़ौदे और साथ में हैं चंद्रप्रभा बड़ौदे, इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है पुणे से। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर ये रहा कार्यक्रम का आखिरी गीत।

आप सुन रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी। राजेश रोशन ने इस गीत का संगीत तैयार किया है और गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी।

और इसी दो गाने के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश खत्म हुआ। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान ग्लासगो के एक रेस्टोरेंट में भारत का गलत नक्शा देखने के बाद आपत्ति जताने के लिए मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन की प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में आज जबलपुर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर प्रसिद्ध संस्कार कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा का जल और पौधा लेकर करीब 30 किलोमीटर की यात्रा पर कैलाश धाम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शेर दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास का विस्तार हो रहा है। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए कहा कि सामुदायिक भागीदारी के साथ वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता इस विशिष्ट प्रजाति को आने वाली पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज कहा कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उज्जैन में श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर आज भस्म आरती में भगवान महाकाल का राजा स्वरूप में दिव्य श्रृंगार किया गया। तड़के 2:30 बजे मंदिर के कपाट खुलने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान महाकाल का अभिषेक और पूजन किया गया। और प्रदेश में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेब पर हमारी ये सभा संपन्न हो उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण आप सुन सकते हैं शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आज आकाशवाणी भोपाल केंद्र का योगदान होगा। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकेगा 6:00। आजकल इसे आप सुन सकते हैं 6:40 पर। और प्रादेशिक समाचार दर्शन का प्रसारण किया जाएगा 6:45 पर। ग्राम सभा इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 7:21 पर। और रात 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे संसद समीक्षा। सुर्खियों में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 8:15 पर और पब्लिक स्पीक इसे भी हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। प्रसारण समय रहेगा 9:30। रात 10:00 से संसद में प्रश्नकाल में हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी दिल्ली से। ये थे वो कार्यक्रम जिन्हें आप हमारी सांध्यकालीन सभा में सुन सकते हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा संपन्न होती है।

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांधिकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं ईरा
1: और मैं अनुभूति स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: तो साथियों, सावन का महीना चल रहा है और आज तो सावन सोमवार भी है, तो हम लोग भी आपके लिए कार्यक्रम में बहुत कुछ खास और विशेष लेकर आए हैं सावन के महीने के बारे में और क्या कुछ खास होता है इस महीने में, है ना अनुभूति?
1: बिल्कुल, तो बने रहिएगा हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन इरा, कार्यक्रम शुरू हो चुका है तो हमारे साथियों को आज के जो प्रश्न हैं वो बता देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल अनुभूति, और साथियों कार्यक्रम का पहला प्रश्न है, भोजन की ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, यानी कि खाना खाने की जो हमारी एनर्जी होती है उसे हम कैसे मापते हैं।
1: और दूसरा प्रश्न है कि तापमान मापने की ऐसा यूनिट क्या होती है।
0: वैसे अनुभूति, अगस्त का ये महीना सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, ये तो कुदरत का वो खत है जो उसने धरती के नाम लिखा है ना।
1: बिल्कुल, अगस्त यानी सावन का महीना, जब आसमान से गिरती हर एक बूंद सीधे दिल पर दस्तक देती है। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू, पेड़ों पर बंधे वो झूले और हवाओं में खुली वो मखमली ठंडक, सावन सिर्फ एक मौसम नहीं, एक एहसास है, एक उत्सव है।
0: बिल्कुल, और सावन का महत्व हमारे जीवन में बेहद गहरा भी है दोस्तों। ये महीना हमें सिखाता है कि कैसे सूखी और बेजान जिंदगी में फिर से हरियाली लौट सकती है, और यही नई शुरुआत का प्रतीक भी है।
1: सचमुच, शास्त्रों में भी सावन को शुद्धि और समर्पण का महीना माना गया है। प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, चारों तरफ हरा रंग बिखर जाता है और खुशहाली और सकारात्मकता का रंग फैल जाता है। जब बारिश की बूंदें पत्तों पर थिरकती हैं तो मानो ऐसा लगता है कि पूरी कायनात किसी धुन पर नाच रही हो।
0: बिल्कुल, और इस धुन में जो सुकून है वो दुनिया के किसी संगीत में नहीं। तो चलिए इसी सुहाने मौसम के नाम सौंपते हैं आज का ये पहला खूबसूरत नगमा

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे

0: सावन की इस रिमझिम पुहार के बीच आज का दिन और भी ज्यादा पावन हो जाता है ना ईरा?
1: बिल्कुल अनुभूति, क्योंकि आज है सावन का दूसरा सोमवार, यानी कि भोलेनाथ की भक्ति में लीन होने का वो खास दिन जिसका इंतजार हर शिव भक्त को पूरे साल रहता है। आज सुबह से ही शिवालयों में हर हर महादेव और बम बम बोले की गूंज हुए।
0: बिल्कुल दोस्तों, जब हम शिव जी की बात करते हैं, महादेव की बात करते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले जो ख्याल आता है, जो भावनाएं आती हैं, वो मंदिरों की पावन भावनाएं हो सकती हैं और उस पवित्र गर्भगृह की भावनाएं हो सकती हैं और साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों की भी जो अलौकिक भावना है हम सभी के बीच, वो भी हो सकती है।
1: बिल्कुल सच कहा अनुभूति तुमने। और भारत के कोने कोने में बसे ये 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, ये तो साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र हैं। सोमनाथ से लेकर केदारनाथ तक और काशी विश्वनाथ से लेकर रामेश्वरम तक हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अमर कहानी है, अपनी एक अद्वितीय महिमा है।
0: बिल्कुल, वैसे ईरा, जब सावन सोमवार की बात होती है तो हम उज्जैन नगरी को कैसे भूल सकते हैं, बाबा महाकाल की नगरी को कैसे भूल सकते हैं?
1: बिल्कुल अनुभूति, वो नज़ारा तो अद्भुत ही होता है जब महाकाल की पालकी शिप्रा नदी के तट की ओर बढ़ती है और चारों तरफ गुलाल उड़ता है, फूल उड़ा रहे होते हैं भक्त, और साथ ही भक्त भी उस भक्ति में लीन हो जाते हैं और जो माहौल रहता है वो इतना भक्तिमय हो जाता है। जय श्री महाकाल के जयकारे से गूंज उठता है पूरा ही वातावरण। ऐसा लगता है मानो साक्षात भोलेनाथ धरती पर अपने भक्तों से मिलने आए हैं, महाकाल राजा अपने भक्तों से मिलने आए हैं।
0: बिल्कुल, सावन के सोमवार का व्रत और पूजन भी हमारे मन को शांत करने का ही एक जरिया है। और पहला सावन सोमवार, जैसा कि हम देख रहे हैं कि संकल्प लेने का था, वहीं आज यानी कि दूसरा सोमवार हमारी श्रद्धा को और गहरा करने का दिन है।
1: सही कहा अनुभूति तुमने। और आज के दिन महादेव पर जल की एक एक बूंद चढ़ाना मानो अपने भीतर के सारे तनाव, सारी चिंताओं को शांत करने जैसा है। और पौराणिक कथाओं में भी ऐसा कहा गया है और ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए इसी सावन के सोमवार की कठिन तपस्या की थी। ये दिन अटूट विश्वास का भी है।
0: बिल्कुल, और इस भव्यता के पीछे एक बेहद सौम्य, सुंदर और गहरा संदेश भी छिपा है, शिव और शक्ति का, यानी हमारे प्यारे शिव और पार्वती के पावन संबंध का। सावन का ये संपूर्ण जो त्योहार है, जो महीना है, इस दिव्य जोड़े के पुनर्मिलन का उत्सव है। शिव अगर वैराग्य हैं तो पार्वती गृहस्थ का आधार है, शिव अगर मौन शून्य हैं तो शक्ति उस शून्य की आवाज़ है, और दोनों मिलकर ही इस संसार को पूरा करते हैं।
1: और आज के दिन मंदिरों में शिव पार्वती का साथ पूजन करना हमारे रिश्तों में भी वही अटूट प्रेम और संतुलन लाता है। और आज के इस आधुनिक दौर में जब जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी हो गई है, सावन का सोमवार हमें ठहरना सिखाता है। ये याद दिलाता है कि थोड़ी देर रुकें, आंखें बंद करें और उस परम शक्ति का आभार मानें जिसने हमें ये खूबसूरत जीवन और ये सुहाना मौसम दिया है।
0: बिल्कुल, तो आइए आज के इस दूसरे सोमवार पर अपने दिल के मंदिर में भी श्रद्धा का दीपक जलाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, सावन का ये पावन महीना जो है ये खुशियों की सौगात, मिठाइयों की मिठास और ढोल नगाड़ों की थाप पर भी थिरकता है। भारत में त्योहारों के सबसे बड़े जो सीजन का आगाज है वो हो चुका है।
1: बिल्कुल अनुभूति, अगस्त का महीना भारतीय संस्कृति के लिए वो सुनहरा दरवाज़ा होता है जिसके खुलते ही पूरा देश त्योहारों के रंग में सराबोर हो जाता है। और वो कहते हैं ना कि हमारे देश में जितने दिन नहीं हैं उससे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, और इसी महीने से उन बड़े त्यौहारों की शुरुआत हो रही है जिनका हम पूरे साल से बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे इसी पावन महीने में यानी कि अगस्त के महीने में हरियाली तीज मनाई जाएगी, साथ ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा यानी कि दोगुनी खुशी, और इसके ठीक बाद भाई बहन के प्यार का पर्व यानी कि रक्षाबंधन।
1: यानी रक्षाबंधन पर तो आप सभी को सीधा लॉन्ग वीकेंड भी मिलने वाला है ना अनुभूति। और उसके ठीक बाद हमारे नटखट कान्हा का जन्मदिन यानी कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो मुझे तो बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है अनुभूति। ये सारे त्यौहार जो अगस्त और सितंबर के महीने में आने वाले हैं, उसी के बाद गणेश चतुर्थी होने वाली है।
0: बिल्कुल ईरा, और उसके बाद तो त्योहारों की झड़ी लगेगी, और मेरे ख्याल से ये जितने त्यौहार होते हैं इसका सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हम बच्चों को होता है, युवाओं को होता है,
1: और होना भी चाहिए ना। डेकोरेशन करना अलग अलग तरीके से और भगवान की भक्ति में लीन होना अपने तरीके से, युवाओं के तरीके से, उसकी भी बात अलग ही है ना।
0: बिल्कुल, और जो त्यौहार रहते हैं उन्हें जो मनाने का तरीका रहता है, जो उत्सव रहता है, वो ऐसा नहीं कि पूरे दिन चलता है, रात भर भी चलता है। जैसे हम दही हांडी की बात करें, जन्माष्टमी की बात करें,
1: तो 12 बजे आरती करना, उसकी अलग ही एक्साइटमेंट भी रहती है और नींद भी नहीं आती है ना।
0: हाँ बिल्कुल, और जो भोग लगता है, जो प्रसाद लगता है, उसकी भी हमें मतलब उसका भी हमें इंतजार रहता है कि कब हमें वो प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलेगा।
1: बिल्कुल, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। और जो डेकोरेशन रहता है ना, बच्चे सुबह से ही घर परिवार के जो लोग होते हैं वो लग जाते हैं कैसे यूनिक डेकोरेशन करें, तो उसमें ना ये भी होता है कि घर के जितने भी लोग हैं सब एक साथ आ जाते हैं, बातचीत होती है, मस्ती होती है, तो मुझे ऐसा लगता है अनुभूति कि हमारे जो त्यौहार होते हैं ना वो एक दूसरे को साथ लाने के लिए, समय बिताने के लिए भी होते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि त्यौहार अपनों से मिलने का उत्सव है, और जिसे भारत में बहुत खूबसूरती से मनाया जाता है। जैसा तुम बता रही थी कि त्यौहार अनगिनत हैं यहाँ पर हमारे देश में, और हर जगह हम देख सकते हैं कि अलग अलग त्यौहार मनाने की अलग अलग परंपराएं हैं। हर राज्य में हम देखें या छोटे छोटे गाँव में हम देखें, बहुत ही अलग और विभिन्न तरीके की जो परंपराएँ हैं उसे लोग अभी तक निभाते आ रहे हैं।
1: ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि हम तीज का ही फेस्टिवल त्यौहार की बात करें तो जयपुर राजस्थान में खासकर तीज को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और पूरा जुलूस निकलता है हवा महल के और जाता है वो जुलूस, तो वहाँ पे कई सारे टूरिस्ट जो हैं देश ही नहीं विदेश से भी वो तीज का त्यौहार देखने जयपुर जाते हैं। और अगर हम हमारे मध्य प्रदेश की ही बात कर ले तो सावन के महीने में, जैसा कि हमने हमारे श्रोताओं से अभी बात की, सावन सोमवार को निकलने वाली वो बाबा महाकाल की सवारी।
0: बिल्कुल, और मेरे ख्याल से उसके बाद जो त्यौहार आने वाले हैं, जैसे जन्माष्टमी है और गणेश उत्सव है, नवरात्रि है। जैसे हम गणेश उत्सव की बात करें तो मुंबई में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मेरा तो ऐसा मन है ईरा कि ऐसा कोई त्यौहार जो भारत में अलग तरीके से मनाया जाए उसे देखने हम भी इंदौर से निकलें और जाएँ, ज़रा घूम कर आएँ और त्यौहार की खुशी मना कर आएँ।
1: बिल्कुल, मुझे लगता है ना अनुभूति हमें ना गणेश चतुर्थी मनाने देखने के लिए मुंबई ज़रूर जाना चाहिए, है ना।
0: बिल्कुल जाना चाहिए। वैसे हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं जो मुंबई से अगर हैं या जो मुंबई में गणेश चतुर्थी मनाकर आए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आइए सुन लेते हैं अगला गीत।

0: समय में अगर हम तकनीक की बात करें तो शायद ही कोई ऐसी बातचीत होगी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का जिक्र ना हो।
1: बिल्कुल, कुछ वर्ष पहले तक एआई हमें भविष्य की कोई दूर की तकनीक लगती थी, लेकिन आज ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, करियर हो, कंटेंट क्रिएशन हो, रिसर्च हो या फिर रोजमर्रा के छोटे छोटे काम हो, एआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है।
0: और यही कारण है कि आज का हमारा विषय विशेष रूप से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज का युवा जिस शिक्षा और करियर की तैयारी कर रहा है उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले वर्षों में एआई की भूमिका बहुत ही अलग होने वाली है।
1: और इसी के साथ एक चिंता भी सामने आती है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में युवाओं के रोजगार के अवसर को कम कर सकता है।
0: ये सवाल केवल भारत का नहीं है, पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार ट्रेडिशनल जॉब्स और वर्क पैटर्न्स को बदलेंगे।
1: लेकिन क्या हमें केवल इस बात से डरना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से कुछ काम अपने हाथ से निकल सकता है या टेक्नोलॉजी खुद वो काम अपने हाथ में ले लेगी?
0: शायद नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इतिहास हमें बताता है कि जब भी कोई नई तकनीक आती है कुछ पुराने काम बदलते हैं, लेकिन साथ ही नए काम और नई संभावनाएं भी पैदा होती है।
1: इसलिए शायद युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती एआई को रोकना नहीं बल्कि एआई के साथ स्वयं को विकसित करना है।
0: बिल्कुल, और आज किसी युवा के लिए अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर निर्भर रहना पर्याप्त भी नहीं होगा, उसे लगातार नई स्किल्स सीखते रहना होगा, टेक्नोलॉजी को समझना होगा और बदलते वर्क एनवायरनमेंट के साथ समय के साथ साथ स्वयं को अडॉप्ट भी करवाना होगा।
1: बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और भी है, एआई के दौर में केवल टेक्निकल स्किल्स ही महत्वपूर्ण नहीं होगी, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि रचनात्मकता, लीडरशिप और एम्पैथी जैसे ह्यूमन स्किल्स भी उतने ही जरूरी और आवश्यक हैं।
0: क्योंकि मशीन हमें इंफॉर्मेशन दे सकती है, एनालिसिस में सहायता कर सकती है, लेकिन किसी परिस्थिति को मानवीय दृष्टिकोण से समझना, सही निर्णय लेना और उसके परिणामों की जिम्मेदारी स्वीकार करना, ये हमारी भूमिका है।
1: और शायद इसी वजह से इरा युवाओं को एआई को केवल कॉम्पिटिटर की तरह नहीं देखना चाहिए, यानी कि हमें प्रतियोगिता में नहीं उतरना चाहिए, हमें एआई को एक टूल की तरह देखना चाहिए जो हमारे हेल्प के लिए रखा गया है।
0: बिल्कुल, एक ऐसा टूल जो हमारे काम को आसान बना सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है और हमें नई चीज़ सीखने में मदद कर सकता है।
1: हालांकि इसके साथ सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी है दोस्तों।

0: एआई से मिली हर जानकारी सही हो ये आवश्यक नहीं, इसीलिए किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय अपना दिमाग ज़रूर लगाएं और वेरीफाई ज़रूर करें कि क्या वो जानकारी, वो समाचार सही है या गलत।
1: और एजुकेशन के क्षेत्र में तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। अगर विद्यार्थी एआई का इस्तेमाल केवल अपने असाइनमेंट्स या आंसर्स तैयार करवाने के लिए करेगा तो टेक्नोलॉजी उनका काम तो कर देगी लेकिन सीखने की प्रक्रिया कहीं पीछे छूट जाएगी।
0: यानी एआई का इस्तेमाल इस तरह होना चाहिए कि वो हमारी क्षमता को बढ़ाए, हमारी सोचने की क्षमता को रिप्लेस ना करे।
1: बिल्कुल सही कहा अनुभूति तुमने। आखिर टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, सीखने की जिज्ञासा, प्रश्न पूछने की आदत और स्वयं कुछ नया करने की इच्छा हमारी अपनी ही होनी चाहिए।
0: तो शायद आने वाले समय में सवाल ये नहीं होगा कि क्या एआई हमारी जगह लेगा,
1: बल्कि सवाल ये होगा क्या हम बदलती दुनिया के साथ स्वयं को बदलने के लिए तैयार हैं।
0: और आज के युवाओं के लिए इसका उत्तर जितना सकारात्मक होगा, यानी कि जितना पॉजिटिव होगा, भविष्य में उनके अवसर भी उतने ही व्यापक होंगे।
1: बिल्कुल, तकनीक बदल रही है, काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं और दुनिया बदल रही है,
0: लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा हमेशा हमारी सबसे बड़ी ताकत रह सकती है।
1: बिल्कुल, और इसी विचार के साथ अब पढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: और साथियों, अब बारी है आप सभी को कुछ रोजगार समाचार देने की।
1: तो साथियों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इंडियन एयर फोर्स में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए एडमिशन्स ओपन है। भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत अविवाहित भारतीय पुरुष अभ्यर्थियों से अग्निवीर वायुसेना के अंतर्गत आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी आयु और आपका जन्म 1 जनवरी 2005 और 1 जुलाई 2009 दोनों तिथियों अगर के बीच हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने की तिथि जो है वो 17 अगस्त 2026 तक है। भर्ती जनवरी 2027 के चयन के लिए की जा रही है। और अगर आप एडमिशन से रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी पाना चाहते हैं तो आप भारतीय वायुसेना के ऑनलाइन पोर्टल iafrecruitment.edcil.co.in पर जाकर बाकी की जानकारी ले सकते हैं।
0: बिल्कुल। और साथियों, साथ ही भारत के जो रेल मंत्रालय है वहाँ भी कुछ आवेदन आप कर सकते हैं, वहाँ से भी कुछ रोज़गार की जानकारी जुड़ी हुई है। केंद्रकृत रोज़गार सूचना जूनियर इंजीनियर डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक के विभिन्न पदों पर रेल मंत्रालय द्वारा जो आवेदन है वो आमंत्रित किए जा रहे हैं। जो भी पात्र उम्मीदवार हैं वो नीचे कई तरह के वेब पोर्टल में जानकारी दी रहती है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

0: तो साथियों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा।
1: और इसी के साथ अब वक्त है आपको आज के कार्यक्रम के प्रश्नों के उत्तर बताने का।
0: तो साथियों, पहला प्रश्न था, भोजन की ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, जिसका उत्तर है कैलोरीज।
1: और दूसरा प्रश्न था कि तापमान मापने की ऐसा यूनिट क्या होती है, जिसका उत्तर है केल्विन।
0: इसी के साथ दीजिए इजाजत इरा
1: और अनुभूति को।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने फिल्म संगीत।
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है। दिल से होता है शुरू, दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना हुआ बदनाम, फिर भी हर जुबां पे अड़ा है।
0: वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं जावेद बशीर की आवाज में। रजत अरोरा के बोल हैं, प्रीतम का संगीत।

श्रोताओं, ये जो गीत आप सुन रहे हैं माई नेम इज खान, इस फिल्म से ये गीत है। राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा की आवाजें हैं। निरंजन अयंगर ने इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है, और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं, लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
2: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई
3: जी।
2: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने दिख रहा हो, बहुत अच्छी कहानी थी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की, कोई नाराजगी है तो माफ करें।
3: तो राजेश जी आपको कहना चाहते हैं कोई नाराजगी नहीं है, देखिए हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया
2: जी। कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर
3: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है,
2: अजीत जी विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक, पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों
3: जी।
2: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
3: बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का, और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा,
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
2: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। AI के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
3: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गाँव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
2: इसका उत्तर है, मावलीनोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
3: तो श्रोताओ, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
3: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
2: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
3: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
2: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
3: वीर कुंवर सिंह।
2: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहाबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
4: हमका सिपाहियन के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
5: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
6: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड?
5: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
7: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सत्रह सौ 1777 ईस्वी में कुंवर सिंह का जन्म साहबजादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार

0: लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे-धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
1: सुना तुमने?
2: क्या?
1: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
2: हैं?
1: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
2: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
1: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
2: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
3: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
1: बड़ बहादुर वा हरकिशन वा, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा देलस। अरे का हो, अब हमार कुंवर सिंह का करें?
4: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गईल बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ
5: चाहिए कि जिसके बारे में
1: हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है, अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं, हमें क्या आदेश है?
6: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
2: भैया, सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है, अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
6: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
1: जी हुजूर,
6: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले।
1: जी हुजूर।
6: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
0: छब्बीस जुलाई 1857, आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
6: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काटकर फेंक दें। आप सब ने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं, इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए, सबसे पहले हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से। मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है, शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।

0: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
1: साथियों, आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं है। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से दब गए हैं। अब जंग शुरू होती है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, भारत माता की।
0: कहा जाता है कि कुंवर सिंह और हरकिशन सिंह के भाषण का सिपाहियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। 27 जुलाई को कुंवर सिंह के नेतृत्व में देशी सिपाहियों ने अंग्रेजी फौजों की आरा में घेराबंदी की। लड़ाई जमकर हुई। कई अंग्रेज सैनिक लड़ाई में मारे गए। कुंवर सिंह ने कैप्टन डनवर की फौज को पराजित किया। इतिहास में इसे कुंवर सिंह द्वारा आरा फतेह के नाम से जाना जाता है।
2: अंग्रेजी फौजों ने दोबारा तैयारी की और कुछ ही दिनों बाद मेजर आयर के कमांड में बीबीगंज के स्थान पर एक और युद्ध हुआ। कुंवर सिंह को अपने सिपाहियों के साथ जगदीशपुर लौटना पड़ा। 12 अगस्त को एक घमासान युद्ध हुआ। कुंवर सिंह की सेना पराजित हुई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुंवर सिंह और उनके सिपाहियों को जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
1: कुंवर सिंह जिंदाबाद, कुंवर सिंह जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
2: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
3: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करें।
4: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।

ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: अतरौलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया।
2: अरे देखो देखो, अरे घोड़े पर सवार होकर हमारे राजा कुंवर सिंह कैसे जा रहे हैं।
1: कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी, जिसे बाएं हाथ की तलवार से काट कर उन्होंने गंगा में बहा दिया।
3: लो मां गंगे, आज तुझको ही देता हूं ये।
1: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार। गोली आकर लगी बाह में, दायां हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जाह्नवी को मानो नजराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
0: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
4: ओ माय गॉड, देखाओ शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
5: Yes, sir.
0: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोकगीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह, और आइए अब सुनते हैं ओज और वीर रस से परिपूर्ण सुंदर कविता वीर तुम बढ़े चलो।
1: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों और युवाओं को साहस, संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हों।
0: जी,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में श्रोता भाई अब सुनते हैं मन्ना डे के गाए भजन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस पारंपरिक भजन के साथ। शैलेंद्र का लिखा हुआ है, शंकर जय किशन ने इसकी तर्ज बनाई है।

अभी आप सुन रहे थे शकील बदायूनी का लिखा हुआ और नौशाद का संगीतबद्ध किया हुआ भजन मन्नाडे के स्वर में। सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए श्रोताओं, अब एक राम भक्ति रचना सुनते हैं। शैलेंद्र की लिखी हुई यह रचना है, सचिन देव बर्मन ने इसे संगीतबद्ध किया है और अपनी आवाज़ से सजाया है मन्नाडे ने।

और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनते हैं कृष्ण भक्ति रचना, स्वर मनाडे का है, राम कृष्ण हरि, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के नाम को समाहित किए हुए यह रचना। लिखी है नीरज ने और संगीतबद्ध की है शंकर जयकिशन ने।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं धारणा सचदेव। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर विशेष रिपोर्ट। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में शासन की योजनाएं किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। पहले बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ये एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। इसके तहत 9 से 17 अगस्त 2026 तक देशवासी अपने घरों पर गर्व के साथ तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का उत्सव मना रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव हर घर तिरंगा अभियान के तहत भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश भर में स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और मातृशक्ति सहित सभी देशवासियों से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेने और देश की प्रगति में योगदान देने का आह्वान किया।
1: 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान का जो शुरुआत की, जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों के किए गए बलिदान, संघर्ष, साथ अहिंसक आंदोलनों के भरोसे से पूरे देश में जो ज्वार उमड़ा, यही कारण रहा कि 42 के 5 साल बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर गए और देश को स्वतंत्रता मिली। लंबे संघर्ष के बाद इस आजादी को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 15 अगस्त को 80 साल होंगे। हम सब परमात्मा से कामना करें, हमारे सभी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करें। सभी के योगदान के भरोसे से भारत को जो आजादी मिली, हम अपने सर्वहारा वर्ग के लिए पूरे देश के सभी नागरिकों के साथ देश की आजादी का आनंद भी मनाएं, अपने उत्तरदायित्व का पालन भी करें और दुनिया के सामने भारत की शक्ति और भारत की अंदर की ताकत जो वसुदेव कुटुम्बकम के आधार पर है, हम कामना करें चिर युवा भारत रहे और चिर अमर इसकी स्वतंत्रता रहे। सबके लिए मेरी अपनी ओर से बधाई, शुभकामनाएं।
0: तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है अशोकनगर जिले से, जहां महिला और बाल विकास विभाग द्वारा ग्रामीण स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को बाल चौपाल का नाम दिया गया है। पेश है अशोकनगर से हमारे संवाददाता नीरज शुक्ला की ये रिपोर्ट।
2: ग्रामीण स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को बाल चौपाल का नाम दिया गया है। इस बाल चौपाल के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चों की बौद्धिक और कलात्मक क्षमता को निखारा जा रहा है तथा माताओं व अभिभावकों को बच्चों की देखरेख के बारे में विस्तार से समझाया जा रहा है। बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में बुलाकर स्कूल में बैठने की आदत डाली जा रही है, जिससे बच्चे अपनी शिक्षा के प्रति आकर्षित रहें और प्रतिदिन स्कूल जाने की आदत डालें। वहीं ग्रामीण अंचल की माताओं को भी शिक्षा के महत्व, स्वच्छता, बच्चों के विकास के लिए दिए जाने वाले उचित पोषण की भी जानकारी दी जा रही है। अशोकनगर महिला बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी चंद्रसेना भिड़े ने बताया,
3: पूरे महीने में जो बच्चों को सिखाते हैं वो उनके माता पिता को

0: पता चले कि हमने बच्चों को क्या सिखाया है, ताकि माता पिता की सोच आंगनवाड़ी के लिए सकारात्मक बने। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल चौपाल कार्यक्रम प्रारंभ किया है। माह में दो मंगलवार को माता पिता को बुलाते हैं और उन माता पिता को हम दिखाते हैं कि आपके बच्चों ने पूरे महीने भर में क्या सीखा, वो क्या क्या बोल सकते हैं।
1: अशोकनगर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला की रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, हमारी दूसरी खबर है सीधी जिले से। देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में सीधी दूसरे पायदान पर है। जिले ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले वर्ष की तुलना में बीमा कवरेज क्षेत्र में 28.13% की वृद्धि दर्ज की है। वहीं फसल बीमा योजना में किसानों के पंजीयन में 31.97% की बढ़ोतरी भी की है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सीधी से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र।
3: कृषि के क्षेत्र में सीधी जिले की बात की जाए तो एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में सीधी दूसरे पायदान पर है। जिला प्रशासन द्वारा सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को मिशन के तौर पर क्रियान्वित किया गया है। किसान हितैषी कलेक्टर विकास मिश्र ने सीधी जिले में कृषि विकास के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के तहत वर्ष 2025-26 के आउटकम इंडिकेटर्स में सीधी जिले ने देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में से दूसरा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि कृषि विभाग के साथ साथ जिले के किसानों के लिए भी गौरव की बात है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, दलहन और तिलहन के उत्पादन का विस्तार, सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करना, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाना, भंडारण अधोसंरचना विकसित करना और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सीधी जिले ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले वर्ष की तुलना में बीमा कवरेज के क्षेत्र में 28.13% की वृद्धि दर्ज की है। वहीं फसल बीमा योजना के में किसानों के पंजीयन में 31.97% की बढ़ोतरी हुई है। खरीफ और रबी दोनों सीजन में स्वीकृत फसल बीमा दावों के भुगतान का आंकड़ा 100% दर्ज किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण के क्षेत्र में भी जिले के उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट में पिछले वर्ष की तुलना 6.78% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि प्राथमिकता के क्षेत्र में ऋण वितरण में 11.53% की वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र।
2: हमारी अगली खबर है आगरमालवा से, जहां शिवालयों में भगवान शिव की पूजन अर्चन रुद्राभिषेक के साथ ही कीर्तन भजन के आयोजन किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आगरमालवा से हमारे संवाददाता महेश शर्मा।
4: आदिदेव महादेव की पूजा आराधना और जप तप के विशेष श्रावण माह के दौरान आगरमालवा जिले के विभिन्न शिवालयों में पूरे माह भगवान भोलेनाथ का विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जा रही है। आगरमालवा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन व ऐतिहासिक शिवालय श्री वैजनाथ महादेव मंदिर पर इन दिनों देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता देखा जा रहा है। वहीं जिला मुख्यालय स्थित महाकाल, मंगलनाथ, अचलेश्वर महादेव, कमलकुंडी, शंकर टेकरी, मंगलेश्वर महादेव के साथ ही जिले के ग्राम गोंदल महू स्थित 1111 शिवलिंग वाले शिवालय शिवतोड़ा महादेव, पांडवकालीन पंचदेवलिया महादेव मंदिर में शिव आराधना की जा रही है। वहीं श्रावण माह के अंतिम सोमवार के दिन जिला मुख्यालय पर बाबा श्री बैजनाथ महादेव की भव्य शावी सवारी मंदिर प्रांगण से निकाली जाएगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम चलते हैं शिवपुरी जिले की तरफ, जहां स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1 से 15 अगस्त 2026 तक विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। पेश है हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता की ये रिपोर्ट।
5: शिवपुरी जिले में स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1 अगस्त से 15 अगस्त तक विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। पखवाड़े की थीम स्वनिधि से समृद्धि है, आत्मनिर्भर शहरी मध्य प्रदेश की ओर रखी गई है। इसी क्रम में पिछले दिनों शिवपुरी के कम्युनिटी हॉल के ऊपर स्थित शहरी आजीविका मिशन कार्यालय में जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। इस दौरान नए आवेदन लिए गए और लंबित तथा पहले अस्वीकृत प्रकरणों का निराकरण किया गया। पखवाड़े के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम, विशेष शिविर, बैंक समन्वय बैठकें, हितग्राही संपर्क अभियान और डिजिटल संचार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। शहरी आजीविका मिशन के प्रबंधक रमेश सिंह ने बताया कि पखवाड़े के दौरान पात्र पथ विक्रेताओं को योजना के तहत बिना गारंटी के ऋण की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत शिवपुरी जिले में अभी तक 6500 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। पखवाड़े के दौरान अधिक पात्र वेंडर्स को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। स्वनिधि योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों ने बताया

0: कि इस योजना से उनके कारोबार में वृद्धि हुई है और उनकी आय भी बढ़ी है। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता।
1: हमारी अगली खबर है विदिशा से। जिले में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से 16 अगस्त को बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में कृषि वैज्ञानिक द्वारा किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों, आधुनिक खेती, फसल प्रबंधन, नवीन कृषि अनुसंधान और उत्पादकता बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विदिशा से हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा।
2: प्रदेश के कृषि प्रधान विदिशा जिले में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने हेतु 16 अगस्त को बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शामिल होने की संभावना है। साथ ही कार्यक्रम में जिले भर के 2 से 5 हजार किसानों के सहभागिता करने का अनुमान लगाया है। महोत्सव में कृषि वैज्ञानिकों को उन्नत तकनीकों, आधुनिक खेती, फसल प्रबंधन, नवीन कृषि अनुसंधान तथा उत्पादकता बढ़ाने के उपायों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कृषि एवं संबद्ध विभागों द्वारा प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जिनमें किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों, नवाचारों और नवीन तकनीकों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान किसानों को शासकीय योजनाओं, अनुदान, कृषि यंत्रीकरण, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती तथा किसान हितैषी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। महोत्सव के दौरान किसानों को विशेषज्ञों से संवाद करने और अपनी समस्याओं के समाधान का अवसर भी मिलेगा। इस महोत्सव के माध्यम से किसानों को खेती में नवाचारों के साथ उनकी आय में वृद्धि तथा शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको हम दे दें। आज रात्रि 8:30 से आप सुनेंगे उज्जैन से बाबा महाकाल की दूसरी श्रावण मास की सवारी की विशेष रेडियो रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी इंदौर मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR एप्लीकेशन

यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 7 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्त और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो नागरिकों को विकसित भारत के निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह

0: कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। और खेलों में FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। यह प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.94 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आइए श्रोताओं, अब आपको हम जानकारी दे दें हमारी आज शाम और कल के सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 7:20 पर श्रोताओं आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। आज के कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथ ही आप सुनेंगे सावन के तीज त्योहार, इन पर आधारित कविता पाठ, लोकगीतों का आप आनंद इस कार्यक्रम में लेंगे और साथ ही आप जानेंगे मंडी के भाव और अन्य रोचक जानकारियां। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे और रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। श्रोताओं रात्रि 8:30 पर आप आकाशवाणी इंदौर को ट्यून करना ना भूलें, क्योंकि इस वक्त हम आपकी सेवा में लेकर हाजिर होंगे उज्जैन से, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से। सावन माह में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी की रिपोर्ट। रात्रि 9:15 पर सुनिएगा सदाबहार गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत और 9:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से पब्लिक स्पीक। रात्रि 10 बजे हम संसद में प्रश्न कॉल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचाएंगे और फिल्मी गीतों का आनंद आप लेंगे रात्रि 10:20 से। शास्त्रीय संगीत में विनायक तोरवी का गाया राग छायानट आप सुनेंगे रात्रि 10:30 से। हमारी कल सुबह की सभा की शुरुआत होगी भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के साथ। समय रहेगा प्रातः 6:05 पर और चिंतन होगा 6:30 से। खेती की बातें ये कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे प्रातः 6:35 पर। कल के कार्यक्रम में पशुओं में प्रसव के बाद मां की मृत्यु हो जाने पर क्या करें, इस विषय पर सुनिएगा स्मिता दुबे से जानकारी। रोजाना की तरह श्री रामचरित मानस गान का प्रसंग आप सुनेंगे प्रातः 6:40 से। सदाबहार फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल आप सुनेंगे प्रातः 7:20 पर और कल हम लेकर हाजिर होंगे विज्ञान पत्रिका। समय रहेगा प्रातः 8:30 से। विषय रहेगा लाइफ साइंस से संबंधित विशेष जानकारी आप तक पहुंचाएंगे डॉक्टर सुरेश चंद्र, प्रोफेसर लाइफ साइंस विभाग। लोक संगीत में उषा रायकवार और साथियों गाए लोकगीत आप सुनेंगे प्रातः 9 बजे से और सुगम संगीत में पूर्वी नीमगांवकर का सुगम गायन आपको हम सुनाएंगे प्रातः 9:15। प्रातः 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा बलवंत राय भाटी का गाया राग कलवर्धिनी। श्रोताओं सजीव फोन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, जिसका आप सभी को इंतजार रहता है, कल आप सुनेंगे प्रातः 10:05 से 11 बजे तक और 11 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे दिन में 12 बजे से, और दिन में 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे हमारी आज शाम और कल की सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
4: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
3: अरे वही अपना 60 रुपया।
4: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
3: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
4: और दूसरा?
3: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
4: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
3: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस के नवनियुक्त और पदोन्नत अधिकारियों कर्मचारियों का किया सम्मान। पेट्रोलियम मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 20% से अधिक बढ़ाने का फिलहाल कोई फैसला नहीं। राजगढ़ में कार के बहने से 9 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए सहायता की घोषणा की। और प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी, 5 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के रविन्द्र भवन में मध्य प्रदेश पुलिस में नवीन भर्ती और पदोन्नति के उपलक्ष्य में आयोजित आभार एवं सम्मान समारोह में सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों और पदोन्नत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को प्रमाण पत्र और रैंक प्रदान कर शुभकामनाएं प्रदान की।
1: सबकी तरफ से आप सबके लिए ये पदोन्नति का रास्ता खुला है। 58 वर्गों में रिकॉर्ड 27,534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी क्या पदोन्नत हुए। मुझे गर्व है हमारी पुलिस के सभी अधिकारियों ने जब जो मौका मिला, जो काम दिया, बहुत अच्छे से करके दिखाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक तरफ डाकुओं का खात्मा किया और नक्सलवादियों का हम समझते थे असंभव है, उस असंभव को संभव करके दिखाया देश के अंदर किसी राज्य ने, तो वो मध्य प्रदेश है जिसने सबसे पहले उस असंभव को संभव करके दिखाया। इसलिए आप सभी मित्रों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, सभी पदोन्नत साथियों को शुभकामना देता हूँ।
0: कार्यक्रम से पहले पुलिस जवानों ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गोपी ने कहा कि एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने के संबंध में भविष्य में कोई भी निर्णय विस्तृत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों और ऑटोमोबाइल्स निर्माताओं और तेल विपणन कंपनियों ओएमसी सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ईबीपी कार्यक्रम को नीति आयोग, ऑटोमोबाइल निर्माताओं, ओएमसी और तकनीकी संस्थाओं को शामिल करते हुए एक चरणबद्ध वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया गया है। लोकसभा ने अभिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज लोकसभा की कार्यवाही दूसरी बार स्थगित होने के बाद जब

0: दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय भागीदारी करने, तिरंगा फहराने, तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने और वंदे मातरम का गायन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हर भारतीय के गौरव, एकता, बलिदान और साझा आकांक्षाओं का प्रतीक है। इस वर्ष वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभियान का महत्व और भी बढ़ गया है। वहीं नीमच और देवास में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत देशभक्ति और एकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। नीमच जिले में 17 अगस्त तक विद्यालयों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इसी क्रम में आज स्कूलों में तिरंगा प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों से तिरंगे के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और नागरिक कर्तव्यों से जुड़े सवाल पूछे गए। वहीं देवास जिले में 12 अगस्त को सुबह 9:30 बजे श्रीमंत तुकोजीराव पवार स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि संस्कार कावड़ यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के साथ श्रद्धा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने आज जबलपुर में संस्कार कावड़ यात्रा में सम्मिलित होकर कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और दादा गुरु के साथ कावड़ उठाकर यात्रा में सहभागिता की। उन्होंने कहा कि सावन भगवान शिव की आराधना और भक्ति का पर्व है। मां नर्मदा का जल लेकर निकले कावड़ियों का उत्साह अतुलनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान शिव की भक्ति से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो, यही उनकी कामना है। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश शिवमय नजर आया। भोपाल समेत प्रदेश के मुख्य शिवालयों में बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। उज्जैन में भगवान महाकाल का भस्म आरती में दिव्य श्रृंगार किया गया। शाम 4 बजे से बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकाली गई, जो नगर भ्रमण के बाद रामघाट पहुंचेगी। रायसेन के भोजेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का 6 क्विंटल फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। दमोह के बांधकपुर में सुबह 10 बजे तक 20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। वहीं ओमकारेश्वर में तड़के 4 बजे से ही दर्शन के लिए कतारें लग गईं। जबलपुर में संस्कार कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। सतना, खंडवा, शहडोल, आगरमालवा जिलों में भी श्रद्धालुओं ने आज मंदिरों में पूजा अर्चना की। अब समाचारों में वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा newsoneair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजगढ़ जिले में आज सुबह तेज बारिश के दौरान बड़ा हादसा हुआ। सारंगपुर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन पुल के गुजरते समय एक कार तेज बहाव से बह गई। कार में सवार 11 लोगों में से 9 की डूबने से मृत्यु हो गई, जबकि 2 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। हादसा झिरी नाले के निर्माणाधीन पुल पर हुआ। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला और क्रेन की मदद से कार को भी निकाला। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों के भारत प्रवेश को सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट को अधिसूचित किया है। इनमें 9 लैंड पोर्ट और 2 हवाई अड्डे सम्मिलित हैं। इसके साथ ही ई वीजा धारकों के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है। प्रदेश में मानसून ने जोर पकड़ लिया है और कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में 8 इंच तक बारिश का अनुमान है। भोपाल में रात भर बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ, जबकि VIP रोड पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। सीहोर में नदी नाले उफान पर है। बारिश को देखते हुए भोपाल, डिंडौरी और राजगढ़ समेत कुछ जिलों में स्कूलों में छुट्टी की गई है। संघ लोक सेवा आयोग ने भारत सरकार में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग ने संबंध में विज्ञापन संख्या 10/2026 अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार UPSC के ऑनलाइन

भर्ती आवेदन पोर्टल के माध्यम से 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन के अधीन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 सितंबर है। उम्मीदवार से विज्ञापन में दिए गए विस्तृत निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के मद्देनजर सभी विभाग पूरी तरह अलर्ट रहें और मैदानी स्तर पर सतत निगरानी रखें। बैतूल में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत सेक्टर स्तर पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के साथ साथ संबंधित विषय से जुड़ी अन्य शिकायतों का भी प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में दिए। और शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज टीएल बैठक में विभागीय कार्यों सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की और जन समस्याओं के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
6: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
7: हर लेन देन अब है आसान।
8: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बहन और के स्मिता की राम राम। भाई बहन और जो हमारो देश है उका में बेटी के देवी को रूप माने जावे, उनकी पूजा करी जावे, स्त्री जो रहे वह भी एक शक्ति का रूप में रहे। यो सब मानना का बाद भी हमने ये देखियो है कि भाई स्त्री का बिना संसार चलेज नहीं है, उके चलनो संभव है नहीं है। उका बादे भी आए दंड नई सारी खबर ना अपने सुनने के मिले है, आसपास देखने में आवे कि भ्रूण हत्या हुई रही है, बेटी ना के पढ़ाई लिखाई नहीं है, है नी गर्भावस्था में जो उनके जांच कराई ले और गर्भ में ही उनकी हत्या करी दे है। तो ये सब जो कारण ना है, इन सारा कारण ना में हमारे जागरूकता की कमी सबसे पहला आवे है। और ऐसा कारण ना जो हुए हमारे जब जागरूक नहीं हुए जो इंसान तो ये कारण बने हैं। तो 22 जनवरी 2015 के हमारी सरकार ने एक योजना चल रही थी जिका में तो बेटी पढ़ाओ अन बेटी बचाओ योजना, क्योंकि हमारे यहाँ ये मान्य जावे कि भाई बेटी हुए है तो कहीं उके तो बस खर्चो लगेगो, कई बात देगी तो है ही नहीं, है नहीं इका सारू बेटा ना के ज़्यादा पसंद करे। तो इन सब ना से कि भाई उके भड़ानो लिखानो करे कई काम को, हमारा कहीं काम आएगो।

तो उका सारू जो है, या हमारी देश की जो संख्या है, जनसंख्या है, वह बढ़ती जा रही है, पर उका में हमने देखी हो कि लड़का ना का अनुपात में हमारी जो बेटी ना है उनको अनुपात कम हुई तो जा रही है। और अगर हम चाहवा तो भाई ये जो योजना है इका अंतर्गत हमारी सरकार ने योज सोची है कि भाई इनको उद्देश्य निर्धारित करी दियो कि बालिकाना की शिक्षा जो है उनके सुनिश्चित करेगा, ये योजना का तहत सुनिश्चित करे, उनके फ्री में शिक्षा देवे, है नहीं, उनका शोषण से बचाने का सारू नरा सारा ऐसा कानून बनी गया है जिका से बेटी ना को कोई शोषण नहीं करी सके, उनके सही गलत के बारे में बताणो यो भी इन्हीं योजना का अंतर्गत है। इका माध्यम से जो भी है सामाजिक और वित्तीय रूप से भी स्वतंत्र होना का सारू भी सरकार नरी सारी मदद करे है। जैसे बेटी ना पढ़ी लिखी जाए तो उनके आगे चली के और उनके ऋण देनो आसानी से ऋण मिली जाए जिका से वे वित्तीय रूप से भी मजबूत बने हैं। भाई उन जो ऐसा हमारा जो ऐसा मनकना है जो खराब है उनका प्रति भी जागरूक करे कि भाई कोई कहीं गलत है कहीं सही है नहीं। और ये जो है बैराना का सारू कल्याणकारी सेवा वितरित भी करे साथ ही उका में सुधार भी करे है। तो भाई बहनों यह योजना जो है मुख्य रूप से लड़का न अण लड़की ना का लिंग अनुपात में ध्यान केंद्रित इका में करियो है, ध्यान रखियो है कि किना हिसाब से हम कैसे करी के हमारी बेन बाण बेटी ना को हम अनुपात बढ़ी सका हाँ, कैसे हम भ्रूण परीक्षण के रोकी सका हाँ, कैसे हम गर्भा में जो अवस्था में जो हत्या ना होए बेटी ना की उनके रोकी सका हाँ, और कैसे हम बेटी ना का अस्तित्व के बचाई सका हैं और उनकी सुरक्षा के सुनिश्चित करी सका। यो योजना जो हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना यह है, यह हमारी योजना इन सारा काम ना के करी रही है। हमारा यहाँ का जो मनकना है उनके जागरूक भी करी रही है कि भई हमारी बेटी ना भी बेटा ना से कम नहीं है, कदी भणी लिखी जाए तो वे भी हमारा एक बेटा ना का समकक्ष कंधे से कंधा मिलाई के और काम करे है और उनको हमारा माता पिता को भी ख्याल वैसे ज रखी सके है। भाई बहन और बात तो नरी सारी करने की रेवे और करांगा भी सही, पर कदी मनोरंजन करता चला तो आनंद ही हो कहीं हुई जाए। तो चलो सुना ये लोकगीत सीमा मिश्रा को गायो और आनंद लेवा।

0: विभिन्न और हमने सुनियो सीमा मिश्रा को गायो यो लोकगीत। इक साथ है जहाँ हमारा पास तमारा सा रू घनी जरूरी जानकारी ना भी आती रहे है। वैसे ज इना मौसम के देखते हुए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र संस्थान इंदौर से भी हमारा जो सोया कृषक ना रेवे उनका सारू भी साप्ताहिक सलाह आई रही है, क्योंकि हमारा जो मालवा प्रांत है इका में हमारा जो मालवा निमाण में जो सोयाबीन की फसल है उका में नरी सारी ऐसी बात ना देखने में आई रही है। जैसे कि सोयाबीन की जो फसल है उका में पत्ती खाने वाली इल्ली ना, विशेषकर जो तंबाकू की इल्ली रेवे भी हरी सेमी लूपर इल्ली अण चक्रभंग भ्रंग और सफ़ेद इल्ली सफ़ेद मक्खी इनको प्रकोप देखो जा रही है। और इका साथे एंथ्राक्रोस राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट अण पीला मोजक का वायरस को प्रकोप भी देखो जा रही है। तो इनका सारू भी हमारे इनका नियंत्रण का सारू कहीं ना कहीं उपाय करना की सख्त जरूरत है। थोड़ा गणों तो हमारे भाई इनमें हमारे अब वो दियो भी गए हुए कि भाई कभी इन ऐसी इल्ली ना हुई जाए और इनका इनके हमारे हटाणु हैं तो जैसे सेमी लूपर इल्ली है उनको भी नियंत्रण करना है तो अपन क्लोर एंट्रा नीली प्रोल जो है 18.5 SC 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का हिसाब से कुछ छिड़काव कर सका। हाँ, चने की इल्ली जो हो वह इल्ली कदी दिखी रही है तो इंडोक्स कार्ब 15.80% EC 333 मिलीलीटर है प्रति हेक्टेयर का हिसाब से हमारे छिड़काव कर देना चाहिए है नहीं। और कदी इन तीनों इल्ली ना को अपने नियंत्रण एक साथ करना है तो स्पाइनेटोरम 11.7 SC 450 मिलीलीटर पानी 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की मात्रा से हमने एक हमारा खेतना में छिड़काव कर देनी चाहिए उका से ये इल्ली ना तीनों को हम एक साथ नियंत्रण कर सका। हाँ, तो भाई बहनों और ऐसी या जो इल्ली ना है इनका प्रकोप से बचना का सारू हमारे बहुत ध्यान ख्याल रखना है, हमारे निगरानी करनी है कि हमारा खेत में कौन सी इल्ली ना हुई रही है और उको हमारे कदी नहीं समझ पड़े तो हम जाइए के सोयाबीन अनुसंधान केंद्र में भी पतो कर सका। पास में इंदौर में कृषि महाविद्यालय में भी जाइए के हम हमारा आसपास जहाँ पे भी होए वहाँ कृषि महाविद्यालय है कृषि वैज्ञानिक ना मिली जाए इन सब से सलाह करी के और हमारे हमारा खेत ना में इन सब से इनके हमारी फसल के बचाणों हैं जिससे कि हम आर्थिक हानि से हमारा किसान भाई बहन और जो है भी बची सके है। तो भाई बहन और कदी कदी हमारे ऐसो भी दिखे कि भाई ऐसो प्रकोप भी हुई जाए कदी जैसे पीलो मोजक हुई रो है उको लक्षण दिखे और कदी ये सो लगे तो इका सारू तो सबसे पीला मोजक रोग का सारू तो हमारे खेतना में से फसल ऐसी फसल जीका में यो लगी क्यों है उनके उखाड़ी के और बाहर लीजिए के नष्ट करनो सबसे अच्छो रेवे है। तो भाई बहन और ऐसी बहुत सारी बात ना रेवे जो कदी हम सब बखत बखत पे हमारा खेतना में ख्याल रखी ला तो हम नरी सारी हानि से बची सका। हाँ, तो या तो हुई गई हमारे जो जानकारी जो कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर से हमारे पास साप्ताहिक जानकारी का तहत हमारा किसान भाई बहनों का सारू आई थी और भी बखत बखत पे जो भी फसल का बारे में जानकारी आएगी हम तुम्हारे इन कार्यक्रम का जरिए देता रहवांगा। अब अपन आगे बढ़ा एक हमारा पास कविता पाठ है आज जो कि भाई हमारा मौसम सावन को चली रही है तीज त्यौहार चली रहा है तो चलो अपन सुना चंद्रमणि दफ्तरी को गायो यो कविता पाठ।
1: राम राम। हाँ, इंदौर से चंद्रमणि दफ्तरी एक स्वरचित गीत श्रावण का तीज त्यौहार शीर्षक छे तीज त्यौहार श्रावण का। आयो श्रावण पानी का सेरा

लग्यो श्रावण पानी का सेरा, लग्यो श्रावण पानी का सेरा, तीज तिवार सब आया रे, चलो संग संग मनावा। चांद सूरज न तुलसी वृंदावन।

आओ जिरोती बनामा लग्यो सरावण पानी को सेरो लग्यो सरावण पानी का सेरा तीज तिवार सब आया रे चलो संग संग मनावा आमोस हुई आग पांचवा दिन आमोस हुई आग पांच

मामा ईचम पड़ से ईर पस कोई तवार, ईचम पड़ से ईर पस कोई तवार, भाई ईर पस देना जाजे रे जय न बैण खलैया जय, कि भाई ईर पस देना जाजे रे जय न बैण खलैया जय। खोपरा की वाटकी न गुड़ को डल्लो, खोपरा की वाट

आई राखी का दिन अच्छा चौघड़िया मो, राखी का दिन अच्छा चौघड़िया मो, भाई खटी को लगाव रे आओ राखी बांधा। जमना हाथ में नारियल दई देव, जमना

नावा जिनका भाई परदेस बसेल छे, जिनका भाई परदेस बसेल छे, जिनकी बेन न घणी दूर छे, उदास कोई मत हुजो रे, और राखी मनामा अपनी कवित्री बेन की राखी खो,

भेंट मदी जो खूब आशीर्वाद, भेंट मदी जो खूब आशीर्वाद,

आओ संग संग मनावा। ये श्रावण का महीना को सपुरा त्योहार खास खास जी था हुईगा। आज का समय में जी बच्चा बाहर निकलेगा, जब अपना घर नसी दूर हुईगा, जब अपनी जड़ नसी दूर हुईगा, तो उनका नाक कसा बनो, जी रोती कसा बनो, ये नहीं आओ तो

0: तो ये गीत का माध्यम से पढ़ी पढ़ी ना न बिल्कुल अच्छी तरह से बने सकज, नाक भी बने सकज, जिरोती बने सकज। और कहीं तो मैंने ऐसा भी देखियो कि कुछ बैन असी पूछन ना कि कहाँ का हाथ में नारियल रखनो न कसो राखी का मतलब बांधना को तरीको। तो एक काम सब पूरा बताई दियो आप खा अच्छी तरह से पढ़ो और गीत का ध्यान से सुनो और आप सब तीज त्योहार मनाओ श्रावण का। धन्यवाद।
1: विभिन्न और हमने चंद्रमणि दफ्तरी को गायो इत्रो अच्छो सावन का तीज त्योहार का साथ है जो कविता पाठ सुनियो है इका में तो आनंद आई गयो। और हमारी नरी सारी जानकारी हमारा बच्चा ना के आजकल का जो हमारी बैंड ना है उनके भाई ना के जो जानकारी नी है हूँ जानू की सारी सगली की सगली जानकारी ना उनके मिली गई होगी और उनके घणो आनंद भी आयो होगो। अब इका साथे ज अपना कार्यक्रम के अपन आगे बढ़ावा और अपन जो है अपना इना कार्यक्रम में जब ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम चले तो तमारे इंतजार रहे कि आज अपन कई स्वादिष्ट बनावांगा और कैसे कई घरेलू अपन इलाज करांगा। तो पहला अपन देखा कि अपना जो घरेलू नुस्खा ना रहे उका अंतर्गत आज अपन जाना कि मेथी दानो जो रहे उको कितना सारा फायदा हमारे रहे है। सबसे पहला तो यो हमारे ब्लड शुगर जो हमारी रक्त है खून रेवे उका में कदी शक्कर के हुई जाए ज़्यादा तो उकसे कोलेस्ट्रॉल जो रेवे उके नियंत्रित करे है। साथेज पाचन जो है हमारा उके सुधारने में बहुत मदद करे। जोड़ ना को दर्द जो कि आज आम बात हुई गई है उका में राहत देने का सारू भी इको बहुत फायदेमंद उपयोग रेवे है। साथेज इके अत्यधिक कदी सेवन करी ला तो ये हमारे ख्याल रखना है कि इससे पेट खराब हो सके। पर हमारा जो बाल ना है आजकल बहुत ज़्यादा हमारी बेटी ना का बेरा ना का जो बाल झड़े हैं उनसे रोकना का सारू भी मेथी दानों बहुत फायदो करे है। वे बेणोर ये छोटी छोटी सी चीज ना ऐसी रहे बस इनके इत्रो हमारे ध्यान ख्याल रखना है कि जद इनके खानो है तो भाई खाली पेट खानो है की के खानो है कैसे खानो है क्या कहीं को पानी पीनो है या फिर हमारे इके पाउडर खानो है जो भी करना है उना हिसाब से हमारे इके लेनो चाहिए। और कभी हम अच्छा से सही सही वक्त पे और सही मात्रा में लेवांगा तो जरूर से हम इको फायदा हम हमारे मिलेगा। अब इका साथेज एक तुम्हारे इंतजार ये भी रहे कि हमारो आज घरेलू व्यंजन कई बने हैं। तो घरेलू व्यंजन जो है हमारा यहाँ पे अभी फिलहाल में कहीं है बहुत अच्छे से बारिश जो हुई रही है सावन को महीनों है बारिश भी अच्छे से हुई रही है तो ऐसो जब पानी पड़तो रहे तो हम नमकीन तो खावा जा भाई भजिया भी खावा कचौरी भी खावा ना सारा ऐसा है कि घर में चिलड़ा भी बनावा पर भुट्टा का जो लड्डू है भुट्टा सेकी ना खावा साथे जब कदी लड्डू मिल जाए तो फिर तो सोना पर सुहागो ही जाए। तो चलो आज अपन सीखा भुट्टा का लड्डू कैसे बनाना। जल्दी से मारे पतो है तुमने पेन कागज उठा ही लियो एगो तो बहनों और जल्दी से लिखी लो। 400 ग्राम कदी भुट्टा का दाना लेना है। शक्कर हमारे बुरा की जो शक्कर आवे वह 350 ग्राम लेनी है। मावो 100 ग्राम घोटी लीजो दूध को है नी। और एक कप खोपरा को बुरो लेनो है। 50 ग्राम हमारे हरी इलायची 5 लेनी है। खोपरा को बुरो जो है 50 ग्राम लेनो है। दूध एक कप लेनो है। साथ ही किशमिश बादाम काजू केसर लच्छा 8-10 और देशी घी 200 ग्राम। भाई बादाम काजू केसर लच्छा तो तुम्हारे जितना लेना है अपन ली सका हाँ पर स्वाद अनुसार। सबसे पहला हमारे दूध में केसर के गले लेनी है घोटी लेवा। उका बाद काजू बादाम के बारीक कतरी लेवा। साथ इलायची के पीसी ने एक साइड रखी देवा। फिर भुट्टा का दाना जो रहे उनके मिक्सर में नाखी ने पीसी लेनो है। कढ़ाई में घी डालनो और घी नाखी ने उके पीसिया भुट्टा के धीमी आँच पे बादामी होने तक उके सेकनो है। फिर इका बाद घी छूटने मंडी जावे गो उका में हमारे केसर को जो हमने घोलना करी के रखियो है केसर कुटी ने घोटी ने उके हमारे नाखी देनो है। फिर इके निकाली ने और एक साइड रखी लेनो है। फिर हमारे कढ़ाई में मावो नाखनो है। भूंगी भुनी हुई हमारी उके अच्छा से भुनना का बाद है उकमें भुना हुआ भुट्टा का साथ है भुनी हुआ मावो शक्कर खोपरो इलायची पाउडर अना काजू बादाम की जो कतरन है उन सब के नाखी ने अच्छा से मिलानो है और फिर बढ़िया से लड्डू बांधनो है। और कभी ये लड्डू बंधी जाए तो हमारे भी बताइजो कैसे लगे और हमारे भी हुई सके तो भेजी दीजो। तो हम भी आनंद लेवांगा, हूँ भी बनाऊंगा घर जाई के, आज तो मुँह में पानी आई रो है। तो भाई बहन और लड्डू भी अपन ने बनाई लिया, मेथी दाना का फायदा भी अपन ने देखी लिया। अब इका साथ है तुम्हारे एक और इंतजार होएगो कि हमारा पास कृषि मंडी, कृषि उपज मंडी से भाव भी आई गया होएगा। हाँ तो यो सही है, कृषि उपज मंडी समिति संयोगितागंज प्रांगण इंदौर से हमारा पास आज का अनाज का भाव आई गया है। तो ई भी जानी लो जिससे पर तुम्हारे समझ पड़े कि भाई कल कहीं करना है, हमारे बेचनो है कि नहीं बेचनो है हमारा अनाज। सरसों की आवक रही एक क्विंटल और भाव रही हो 6,500 रुपया प्रति क्विंटल। सोयाबीन की आवक रही 376 क्विंटल और भाव रही हो 5,000 रुपया से 6,865 रुपया प्रति क्विंटल। तिल्ली की आवक रही 2 क्विंटल और भाव रही हो 8,610 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं की आवक रही 905 क्विंटल, भाव रही हो 2,121 रुपया से 2,908 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का की आवक रही 1 क्विंटल और भाव रही हो 2,401 रुपया प्रति क्विंटल। राजमा की आवक रही 19 क्विंटल और भाव रही हो 6,680 रुपया से 9,005 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर चना की आवक रही 1,467 क्विंटल और भाव रही हो 5,600 रुपया से 9,230 रुपया प्रति क्विंटल। चना की आवक रही 74 क्विंटल और भाव रही हो 3,000 रुपया से 6,525 रुपया प्रति क्विंटल। मटर की आवक रही 191 क्विंटल और भाव रही हो 1,500 रुपया से 3,785 रुपये प्रति क्विंटल। मूंग की आवक रही 18 क्विंटल और भाव रही हो 2,500 रुपये से 6,785 रुपये प्रति क्विंटल। ये तो था हमारा कृषि उपज मंडी समिति संयोगितागंज प्रांगण इंदौर से आया हुआ भाव। अब अपना कार्यक्रम में अभी मनोरंजन और भी बाकी है और हमारे सुनो है एक हमारा गानो जो कि भाई हमारा 15 अगस्त आई रियो है, हमारा स्वतंत्रता दिवस आई रियो है, तो राम अवतार अखंड अर्ण मंडली को गायो। चलो सुना यो लोकगीत।

भाई बहनों, हमने राम अवतार अखंड अण मंडली को गायो हुई लोग गीत सुनियो। इका साथे ज घड़ी मारे इशारो करी दिए, तम से लुआ अनुमति, दुआ मारी वाणी के विराम। राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। वीडियो व्यू 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में संसद समीक्षा का प्रसारण हम दिल्ली केंद्र से करेंगे।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध व्यक्त करते हुए सदन से वॉकआउट किया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी सदस्यों के बीच हंगामे के बीच इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेन देन के सिलसिले में कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड मान्य होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा में बीजत के मानस रंजन मंगराज, भाजपा के अरुण सिंह और शंभू शरण पटेल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थम्बीदुरई और डॉ एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेदेपा के भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉ कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजत के सुभाषीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में यूपीआई लेन देन करने वाले पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपीआई पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉ अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबू भाई जयसंग भाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉ धर्मशीला गुप्ता, डॉ दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉ कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉ के लक्ष्मण और बाबू भाई जयसंग भाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में 3 अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार है तो सदन की कार्यवाही चलनी देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन थे जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी 2 मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी। एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
2: This is आकाशवाणी रिव्यू।
3: अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
4: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आज संसद के समक्ष प्रस्तुत मुख्य विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
5: नमस्कार। संसद में आज जिन विधेयकों पर चर्चा हुई, जिन्हें पारित कर दिया गया और जिन्हें आज इंट्रोड्यूस किया गया, हम इस पर चर्चा आज करेंगे। और इन विधेयकों में प्रमुख हैं न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 और बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन मौजूद हैं। अदिति, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी के स्टूडियोज में।
6: धन्यवाद।
5: सबसे पहले हम चर्चा करेंगे न्यायाधिकरण सुधार विधेयक यानी ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 पर, जिसे आज लोकसभा ने पारित कर दिया। सबसे पहले आप ये समझाएं कि दरअसल इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी, क्या मौजूदा न्यायाधिकरण व्यवस्था में ऐसी कोई समस्याएं हैं जिन्हें सरकार दूर करना चाहती है?
6: इस विधेयक की सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक पुराना लॉ है जो 2021 में पास किया गया था, रिलेटेड लॉ है, ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म एक्ट, जिसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और उस चैलेंज के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी। कोर्ट ने यह कहा था कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल इस लॉ के माध्यम से ज्यादा नजर आ रहा है, शॉर्ट टेन्योर्स का मामला है जो चेयरपर्सन है ट्राइब्यूनल्स के, तो अगर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रहता है तो काम करने का जो इंडिपेंडेंस है ट्राइब्यूनल्स का वो कम होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से एक ऑर्डर पास किया था। उन्होंने कहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये ट्राइब्यूनल्स क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये इच्छा जाहिर की थी कि इस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट को हटाकर इसको डिसमिस कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और यही हिदायत दी गई थी उस जजमेंट में कि एक नया लॉ लेकर आया जाए, ऐसा लॉ जो इनएफिशिएंसी ट्राइब्यूनल्स की, वजह बहुत सारी हैं उसकी, वजह ये भी है कि वैकेंसीज बहुत रहती हैं, उनको भरने में बहुत वक्त लगता है, दूसरा चेयरपर्सन के टेन्योर्स को लेकर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, अलग अलग ट्राइब्यूनल में अलग अलग समय सीमाएं हैं, तीसरा ये है कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ज्यादा है। उन सब चीजों के मद्देनजर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए अब ये नया बिल लिया है जो पुराने लॉ को रिपील करता है और एक पूरा नया मसौदा तैयार करता है।
5: यही वजह है कि सरकार ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग यानी NTCP बनाने का प्रस्ताव किया है।
6: सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि आपने कहा, एक नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया जाएगा। वो जो कमीशन है वो तय करेगी जो यूनिफॉर्मिटी अपॉइंटमेंट्स में होती है, जो चेयरपर्सन्स हैं, 16 ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे देश में, उसके चेयरपर्सन्स और उसके मेंबर्स की समय अवधि की कितनी सीमा होनी चाहिए, अलग अलग जगहों में अलग अलग है। अब इस मसौदे में ये प्रपोज किया गया है कि चेयरपर्सन का जो टर्म है वो 5 साल का होना चाहिए और या फिर वो 70 साल की उम्र तक होने चाहिए, और जो बाकी लोग हैं वो 67 ईयर्स तक होने चाहिए जो मेंबर्स हैं। ये जो नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन का गठन किया गया है, अब ये कमीशन चेयरपर्सन्स को सिलेक्ट करेगा, एक सर्च और सिलेक्शन कमिटी बनेगी जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे, और कमीशन को ये भी हक होगा कि वो एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करें, एम्पैनल करें इस सर्च और सिलेक्शन कमिटी में। उससे क्या होगा कि एक वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन और एक वाइड रेंजिंग प्रोसेस के बाद अच्छे और जो बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को चेयरपर्सन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा।
5: और साथ में ये भी चर्चा अक्सर होती रहती है, बल्कि शिकायत होती रहती है कि मामले जो हैं बहुत लंबे समय तक ट्राइब्यूनल्स में भी लंबित रहते हैं। क्या इस विधेयक से न्यायाधिकरणों में मामलों के निपटारे में गति आएगी?
6: इस विधेयक से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने जा रही है कि एक कमीशन पूरा का पूरा बन जाएगा, तो जो सरकार को वक्त लगता है वैकेंसीज भरने में, चेयरपर्सन अपॉइंट करने में, मेंबर्स बनाने में, वो पूरा का पूरा काम एक डेडिकेटेड कमीशन आगे से करेगी। उससे क्या होगा कि वैकेंसीज भरने में आपको बहुत विलंब नहीं होगा, क्योंकि एक डेडिकेटेड आपने अपैरेटस बना दिया जिसके माध्यम से ये सब चलेगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो ये होगी कि डेफिनेटिव टेन्योर्स होंगे, जैसे सब जगह तय कर दिया गया है कि हर जो ट्राइब्यूनल है उसमें एक स्टैंडर्डाइज टर्म्स ऑफ सर्विस होंगे चेयरपर्सन के भी और मेंबर्स के भी। उससे चेयरपर्सन और मेंबर्स को स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर से साइकोलॉजिकली स्ट्रेंथ मिलती है, चेयरपर्सन को, किसी भी कमीशन को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को। इसके पीछे मंशा ये है। और तीसरी बात जो है कि अकाउंटेबिलिटी का एक स्टैंड अलोन मैकेनिज्म क्रिएट हो गया है, क्योंकि नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन ही जितनी भी इंक्वायरीज अभी तक कंप्लेंट्स भी आपको पता है ट्रिब्यूनल्स के खिलाफ बहुत आती हैं, मेंबर्स के खिलाफ आती हैं, फिर वो लिटिगेशन में चला जाता है जिसकी वजह से केसेस लंबित हो जाते हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आ जाता है। तो इन सब चीजों के निपटारे के लिए भी नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन को अधिकृत कर दिया गया है। इससे ये उम्मीद है सरकार को कि ना सिर्फ केसेस बहुत जल्दी निपटारे हो जाएंगे, बल्कि क्योंकि एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया गया है ट्राइब्यूनल्स की पूरी फंक्शनिंग, स्ट्रीमलाइनिंग, चेयरपर्सन सिलेक्शन से लेकर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म तक, तो चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन होती चली जाएंगी।
5: बिल्कुल, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2026 यानी न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 आज लोकसभा से पारित हुआ। और जैसे कि हमने चर्चा की, इस विधेयक से तेज न्याय, स्वतंत्रता और जवाबदेही, इन तीनों के बीच संतुलन स्थापित होगा और जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल पाएगा। इसके साथ ही अदिति, खान एवं खनिज यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 ये आज लोकसभा में पेश किया गया। भारत के खनिज संसाधन रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस विधेयक के जरिए सरकार खनन क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव लाना चाहती है।
6: ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इस बिल की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम सब जानते हैं कि माइंस और मिनरल डेवलपमेंट का बहुत सारा जो हक है या राइट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी हैं। जो माइन रिच, मिनरल रिच स्टेट्स हैं उनको अभी तक ये अधिकार रहता है कि वो किसी भी तरीके का टैक्स इम्पोज कर सकें मिनरल डेवलपमेंट पर या यू नो माइनिंग राइट्स पर। उसकी वजह से ऐसा महसूस हुआ है, मतलब लंबे समय से ये एक्सपीरियंस केंद्र सरकार का रहा है कि टैक्स बर्डन जो है इस इंडस्ट्री पर वो बढ़ गया है। टैक्स बर्डन के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि एक डिसइंसेंटिवाइजेशन हो रही है सेक्टर की, लोग इसमें आने से घबरा रहे हैं, पैसा लगाने से घबरा रहे हैं। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए अब केंद्र सरकार ने ये प्रपोज किया है इस बिल में कि केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी, इसका अधिकार लेगी और जो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है टैक्स रेजिम्स में, मिनरल डेवलपमेंट में, वो खत्म हो जाएगी। मतलब कहने का है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। आपने अभी कहा कि क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है, जैसे हमने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने अगर बढ़ावा देना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है। हम कितना इम्पोर्ट डिपेंडेंट रह सकते हैं, हमें अपने देश में ही अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। उसके लिए सरकार को ये लगा है, इसी वजह से विधेयक आया है कि थोड़ा सा अधिकार जो इस वक्त टैक्स इम्पोज करने का स्टेट्स के क्षेत्र में वो खुद वो ले लें।
5: तो जैसा अदिति आपने बताया कि आज भारत कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए दूसरे देशों से उसे आयात करने पर निर्भर है, तो क्या आपको लगता है कि इस विधेयक के बाद भारत को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा ये कदम साबित होगा?
6: देखिए, ये ऐसा लगता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम साबित होने जा रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए जो चार बड़े मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जिनका जिक्र आजकल स्ट्रेटेजिकली भी होता रहता है, लिथियम हो गया, कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, निकल है, यूरेनियम है, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है, हमने ग्रीन एनर्जी के इतने बड़े बड़े गोल्स सेट किए हुए हैं, यू नो हम कार्बन एमिशन फ्री होना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमारा जो मिनरल डेवलपमेंट का सेक्टर है उसको एक तरीके से एनर्जाइज किया जाए। इस महत्वपूर्ण विधेयक का एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर मुझे लगता है वो ये है कि एक माइनिंग लीज के तहत आप बहुत सारे मिनरल्स अब कवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि माइनिंग लीज होल्डर्स जो हैं वो एक ही लीज में अलग अलग एडिशनल मिनरल्स को माइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सुविधा अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में नहीं है। हर एक नए मिनरल के लिए आपको एक नया प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये जो ईज ऑफ बिजनेस या ईज ऑफ इंडस्ट्रियल एंगेजमेंट दी है, इससे बढ़ावा मिलेगा मिनरल डेवलपमेंट को।
5: और अभी ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एक तरीके से आप कहें कि 6 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी नहीं है, क्या इस विधेयक के बाद इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी आएगी और निजी क्षेत्र का निवेश भी आएगा?
6: हाँ बिल्कुल, इस विधेयक के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ही ये बोल दिया गया है कि इसका जो पर्पस है वो है माइनिंग सेक्टर को ज्यादा एफिशिएंट बनाना, ज्यादा निवेश अट्रैक्ट करना और ज्यादा इक्विप्ड बनाना हमारी कंट्री की बढ़ती हुई क्रिटिकल मिनरल्स की नीड्स के साथ अलाइन करने के लिए। तो जैसा कि आपने कहा कि एक देखिए सरकार का ओवरऑल अप्रोच भी अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह ईज ऑफ बिजनेस के लिए बहुत से ऐसे विधेयक लाए गए हैं जिसमें नीडलेस कानून जो हैं उनको या तो हटा दिया गया है या बहुत हद तक डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है या डीरेगुलेट कर दिया गया। ये जो बिल है ये उसी श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण आगे जाने वाला बिल है और इसमें क्रिटिकल मिनरल माइनिंग के लिए इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, जैसे कि हमने जो चार मिनरल्स का जिक्र किया और गोल्ड और सिल्वर उसमें जोड़ दिया जाए, तो गवर्नमेंट ने ये प्रपोज किया है कि जो लीज होल्डर्स हैं उनको कोई भी एडिशनल अमाउंट नहीं देना पड़ेगा अपनी एग्जिस्टिंग लीज में इन मिनरल्स को माइन करने के लिए। कौन से मिनरल्स? लिथियम ग्रेफाइट, निकल कोबाल्ट, गोल्ड और सिल्वर, इनके लिए ये स्पेशल इंसेंटिव दिया गया। ये क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं। तो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने ही देश में क्रिटिकल मिनरल माइनिंग को इंसेंटिवाइज करने जा रहे हैं।
5: आपको क्या लगता है सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच कैसे संतुलन स्थापित करेगी?
6: इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए और रूल्स और रेगुलेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वही एग्जिस्टिंग माध्यम से ही सारे के सारे प्रोजेक्ट्स क्लियर होते हैं। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक बहुत रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में है, तो उम्मीद यही रहती है हर नए विधेयक से कि जहां ये डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा वहीं हमारी प्रकृति को बहुत हार्म नहीं करेगा।
5: साथ ही एक और बिल है, बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026, हिंदी में कहें तो बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026, ये आज संसद से पारित हो गया, आज राज्यसभा से पारित हुआ, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी। क्या है ये कानून, क्योंकि ये 135 साल पुराना है, 1891 का कानून है, इसे बदलने की जरूरत अब क्यों महसूस की गई, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
6: इंडिया पूरे विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शंस अगर पूरे दुनिया में हो रहे हैं तो वो इंडिया में हो रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है बैंकिंग बुक्स को लेकर उसमें प्रावधान ये है कि लीगल फ्रेमवर्क में सपोज कोई बैंक का मैटर कोर्ट में चला जाए तो इस वक्त के प्रावधानों के हिसाब से सिर्फ मैनुअल डॉक्यूमेंट्स जो बैंकिंग सिस्टम में है वही लीगल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर एडमिसिबल हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। ये जो बिल है इसको बदलने जा रहा है। हम आपने कहा कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया, जब माननीय राष्ट्रपति इसको असेंट दे देंगे तो ये लॉ बन जाएगा। उससे क्या होगा कि वर्चुअल और डिजिटल रिकॉर्ड्स जो हैं, जो डिजी बैंकिंग का हिस्सा है, उनको भी अब लीगल मान्यता मिल जाएगी। इसका ये लिमिटेड पर्पस है।
5: वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड के मामले भी बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या नया कानून ऐसे मामलों की जांच और अभियोजन को और तेज और प्रभावी बनाने में मदद करेगा?
6: जी बिल्कुल, क्योंकि साइबर फ्रॉड्स आप देख रहे हैं बैंकिंग सिस्टम से सारा कुछ रिलेटेड है और डिजिटल बैंकिंग से ज्यादातर रिलेटेड है, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी डिजिटल साक्ष्य हैं, जितने भी बैंकिंग सिस्टम में वर्चुअल रिकॉर्ड्स हैं, वो सब लीगल फ्रेमवर्क के तहत आ जाएं, ताकि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं अभी तो उनको प्रैक्टिकली फ्री रन मिला हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि मैनुअली डॉक्यूमेंट आएगा कोर्ट में, केस लंबित रहेगा, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर ही नहीं है, लीगल स्ट्रक्चर ही नहीं है, बैंकिंग सिस्टम के साथ अलाइन नहीं है। तो वो सब जो गैप्स हैं सरकार ने आज इस बिल के माध्यम से भर दिए हैं और साइबर फ्रॉडस्टर के लिए ये एक नेचुरली एक चैलेंज के रूप में काम करेगा।
5: अगर आम बैंक ग्राहक की दृष्टि से देखें तो क्या इस नए कानून का एक बड़ा व्यवहारिक फायदा उनको मिलने जा रहा है? अगर हाँ तो वो कौन सा फायदा है?
6: सबसे इम्पॉर्टेंट फायदा तो ये है कि आपको अपने इंटरनेट या अपने लैपटॉप पे बैठे बैठे अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो सर्टिफिकेशन आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के माध्यम से कर सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाले जो सर्टिफिकेट्स आप सेल्फ अटेस्ट करते हैं वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में मान्य होंगे। अभी आप जानते हैं कि कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी नोटरी के पास जाइए, कभी उसको वेरीफाई कराइए, ऑथेंटिकेट कराइए, ये सारा का सारा जो बिजनेस है इसको खत्म करके सब कुछ आप अपने हाथ से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।
5: इसमें कहीं कोई एक किसी आम ग्राहक के लिए कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि उसे डरने की जरूरत है या संभल कर चलने की जरूरत है ताकि कोई फ्रॉड ना हो पाए वित्तीय?
6: नहीं, मुझे लगता है ये तो साइबर फ्रॉड का जो पूरा एक पैटर्न चल रहा है इस वक्त उसको एक तरीके से एड्रेस करेगा, ना कि अदरवाइज, क्योंकि अभी आपको पता है कि लीगल फ्रेमवर्क में डिजिटल और वर्चुअल रिकॉर्ड्स मान्य ही नहीं है, तो अभी तो सारा का सारा साइबर बुलिंग, या आपने सुना है कितनी बार अभी जो डिजिटल अरेस्ट का सारा माध्यम चला है, उससे डील करने की पावर मिलेगी, अपना साइबर पुलिस को भी मिलेगी और आम जनता को भी मिलेगी।
5: बिल्कुल, तो हम अपने श्रोताओं को ये बता सकते हैं कि आज संसद ने बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026 जो पारित किया, जो अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ जल्द ही कानून बन जाएगा। अदिति, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे आज संसद के समक्ष प्रस्तुत मुख्य विधेयकों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी राजनीतिक विश्लेषक अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
0: मीडिया वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं उज्जैन में बाबा श्री महाकाल की श्रावण मास की दूसरी सवारी पर ये रिपोर्ट। प्रस्तुतकर्ता राजेश पाठक, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी इंदौर।

श्रोताओं, श्रावण मास के दूसरे सोमवार को मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रावण के दूसरे सोमवार को उज्जैन में पहुंचे लाखों भक्त शाम को बाबा श्री महाकाल की सवारी के दर्शन के लिए खुद को उत्साहित और धन्य महसूस करते नजर आए। सावन के दूसरे सोमवार का मौका था और उज्जैन में आस्था, परंपरा और राजसी वैभव का अद्भुत संगम यहां पर सभी को देखने को मिला। भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए राजा के रूप में नगर भ्रमण पर निकले। दोपहर के पश्चात हल्की हल्की बारिश ने बाबा महाकाल के चरणों को छुआ और बाबा श्री महाकाल का अभिषेक किया। शाम 4 बजे के आसपास महाकाल मंदिर परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में भक्त धीरे धीरे एकत्रित होना शुरू हुए और बाबा महाकाल की पालकी के मंदिर से बाहर आने का उत्सुकतापूर्वक इंतजार करने लगे। श्रावण के दूसरे सोमवार को बाबा श्री महाकालेश्वर चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर रूप में विराजे और हाथी पर मन महेश रूप में भक्तों को दर्शन दिए। बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। लोग घंटों किनारों पर खड़े होकर अपने आराध्य के नगर भ्रमण का इंतजार करते नजर आए। इस तरह की मान्यता है कि सावन में भगवान महाकाल जब अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं तो उनके दर्शन कर व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और शायद यही आस्था भक्तों के उन भावों में भी साफ तौर पर श्रावण के दूसरे सोमवार को नजर आई। आइए इस सवारी का विस्तृत ब्यौरा जानते हैं हमारे उज्जैन प्रतिनिधि सुदर्शन अयाचित से।

जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के आंगन से मैं सुदर्शन अयाची। श्रावण सोमवार की सवारी का आपको सीधा हाल आकाशवाणी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। बाबा महाकाल की पालकी 4 बजे मंदिर प्रांगण से, सभा मंडप से नगर भ्रमण के लिए अग्रसर हो रही है। मेरे पीछे आप ढोल नगाड़े और जय घोष की आवाज सुन रहे हैं और बाबा की सवारी जैसे ही मुख्य द्वार पर आती है वहां पर पुलिस बैंड के द्वारा उन्हें सलामी दी जाती है, पुलिस गार्ड द्वारा सलामी दी जाती है। आगे आगे कड़ाबीनों की आवाज, उद्घोष करता हुआ दल और साथ ही कदमताल करते हुए पुलिसकर्मी, घुड़सवार और बाबा की जयकार लगाते हुए भक्त मंडली, भजन मंडलियां और फिर सने सने पालकी गुजरी चौराहे पर जहां भक्त लोग बाबा का इंतजार कर रहे हैं और पालकी माँ शिप्रा के तट पर पहुंच रही है जहां आज बाबा के सम्मान में हजारों भक्त और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नवाचार के स्वरूप जनजातीय दल द्वारा, जो भगोरिया का दल है, उसके द्वारा नृत्य प्रस्तुति बाबा के सम्मान में की जा रही है और भक्तों का जन सैलाब, जहाँ एक और बाबा मन महेश के रूप में दर्शन दे रहे हैं वहीं दूसरी ओर बाबा चंद्र मौलेश्वर के रूप में भी दर्शन दे रहे हैं। आज भगवान गज पर भी विराजित हैं और अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वहाँ आरती पूजन के साथ ही 15 अगस्त होने वाला है आगामी दिनों में, तो यहाँ तिरंगे का एक सुंदर सा स्वरूप लिया हुआ, हाथों में तिरंगा लेकर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान का यहाँ पर जो है आगाज किया जा रहा है। अधिकारियों के हाथों में तिरंगे हैं और तिरंगा लेकर के बोट में सवार हमारे जो कि नाव चालक हैं वो हाथों में झंडा लेकर के बाबा का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ से पालकी हरिहर मिलन के लिए अग्रसर होगी। पालकी शने शने रामानुज कोट की ओर बढ़ते हुए और पुनः एक बार बाबा को सलामी दी गई और सलामी के पश्चात

0: श्रोताओं, श्रावण के दूसरे सोमवार को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में जो विहंगम दृश्य देखने को मिला, उसने भक्ति की एक नई परिभाषा गढ़ दी। मंदिर के भीतर मौजूद भक्तों ने न सिर्फ बाबा श्री महाकाल के दर्शन किए, बल्कि विधि विधान से उनका पूजन होते हुए भी देखा। वहीं मंदिर के बाहर के नजारे की अगर हम बात करें, तो वहां हल्की हल्की बारिश होने के बावजूद भक्त अपने प्रिय भगवान के इंतजार में भीगते हुए नजर आए। यहाँ सिर्फ भक्तों के शरीर पानी से भीगे हुए नहीं, बल्कि आस्था और प्रेम से उनकी आंखें भी भीगी हुई थी। बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए भक्त घंटों खड़े रहे और साथ ही साथ पालकी के आगमन के उत्साह में जय श्री महाकाल के नारों से संपूर्ण उज्जैन नगरी गुंजायमान होती रही। जैसे जैसे पालकी आगे की ओर बढ़ रही थी, कुछ भक्त पालकी के पीछे पीछे बाबा महाकाल के उस भव्य चल समारोह में शामिल भी हो रहे थे। जहां जहां से पालकी गुजर रही थी, पुलिस बैंड, विभिन्न प्रकार के दल, विभिन्न प्रकार के बैंड और धुने उस मार्ग को भक्तिमय करती जा रही थी। आइए एक बार पुनः आपको सुनवाते हैं ये ब्यौरा हमारे उज्जैन प्रतिनिधि सुदर्शन आयाचित से।
1: सने सने पालकी आगे की ओर बढ़ते हुए बाबा महाकाल की कृपा और उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए भक्त लोग खड़े हुए हैं और बैंड द्वारा, पुलिस बैंड द्वारा ओम नमः शिवाय की धुन बजाई जा रही है। बाबा की पालकी गोपाल मंदिर पर पहुंचकर यहां गोपाल भगवान और भगवान महाकाल का मिलन होता है, फिर पालकी पुनः मंदिर के लिए अग्रसर होती है और अब पालकी मंदिर के मुख्य चौराहे पर और मुख्य चौराहे से मंदिर की ओर अग्रसर होते हुए आप मेरे साथ सुन रहे हैं जयकारे जय घोष, बोले महाकाल महाराज की, दाता अवंतिका नाथ की। बाबा महाकाल की जय घोष के साथ पालकी का पुनः आगमन मंदिर में हो चुका है।

0: श्रोताओं, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रावण के दूसरे सोमवार को भक्तों का जो जन सैलाब पहुंचा था, उनकी केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि बस अपने इष्ट, अपने आराध्य बाबा श्री महाकाल का दर्शन और उज्जैन के विभिन्न मार्गों, विभिन्न चौराहों, यहाँ तक कि छोटी छोटी गलियों में भी भक्तों का ये हुजूम उत्साह के साथ बाबा महाकाल की पालकी का दर्शन और अवलोकन करता नजर आया। चलते चलते पालकी पहुंची उज्जैन के पवित्रतम स्थल श्री रामघाट। रामघाट पर बाबा श्री महाकाल की पालकी के पहुंचते ही विभिन्न दलों द्वारा उन्हें सलामी दी गई। पंडितों ने वहां पर मंगलार्चन किया, मां शिप्रा के जल से बाबा श्री महाकाल का पूजन और अभिषेक किया गया और इस दृश्य को भी दोनों घाट पर बैठे लाखों भक्तों ने अपने आंखों में कैद किया। आइए इस दृश्य का भी पूर्ण विवरण और विस्तृत जानकारी हम जानते हैं हमारे प्रतिनिधि सुदर्शन आयाचित से।
1: आगमन के साथ ही भक्तों के मनों की इच्छा पूरी करने वाले महाकाल पुनः अपने मंदिर में पहुंच गए हैं और आज की पालकी बहुत ही सुंदर और अविस्मरणीय रही। जहां एक और जनजातीय दलों ने अपनी प्रस्तुति दी, वहीं उज्जैनी नगर के उदयमान नृत्य कलाकारों ने, सौ नृत्य कलाकारों ने मंदिर प्रबंध समिति के मार्गदर्शन में, अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में बाबा महाकाल की सवारी निकलने के पूर्व प्रांगण में घुंघरुओं की झनकार के साथ बाबा का नृत्याभिषेक किया। तो ये थी बाबा महाकाल की सवारी की सजीव जानकारी। पुनः आप सभी के बीच हम सभी अगली सवारी के लिए मुखातिब होंगे। मेरे साथ बोले जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल।

बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रावण के दूसरे सोमवार को न सिर्फ भक्तों ने राजाधिराज महाकाल के दर्शन किए बल्कि धर्म की ध्वजा को फहराते हुए लाखों भक्त जय श्री महाकाल का जयकारा लगाते हुए अपने आप को धन्य महसूस करते आए। श्रोताओं, ये थी उज्जैन में श्रावण के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल की सवारी पर एक रिपोर्ट। प्रस्तुति राजेश पाठक, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी इंदौर।

0: अभी आप सुन रहे थे।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन

0: प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do.
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंककार बहिस्साक्ष विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
5: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार

0: सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
3: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खेयांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
4: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
5: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और harghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है।

0: मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता वैसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नीति निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing ecosystem, attract investment and create jobs. Finance Minister Nirmala Sitharaman assures UPI transactions to remain free. Legislation granting legal recognition to digital banking records as evidence also gets nod from Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju urges opposition to allow Lok Sabha to function for Home Minister Amit Shah's statement on student protest-related issues. Protests intensify in Jharkhand over recruitment exam irregularities after clashes between students and police during assembly march in Ranchi. 80th Independence Day celebrations to showcase Yuva Shakti and its contribution to Viksit Bharat by 2047. National song Vande Mataram to be sung from the ramparts of Red Fort for the first time. Heavy rainfall forecast for Himachal Pradesh and East Rajasthan tomorrow. And FIH Hockey World Cup 2026 begins later this week with new format as quarter

कई श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं बूंद जो बन गए मोती। इस फिल्म से मुकेश की आवाज में ये गीत, भरत व्यास के बोल सतीश भाटिया का संगीत।

और आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एहसास, इस फिल्म से यह गजल मेहदी हसन की आवाज में। मंसूर अनवर ने इसे लिखा है, गुलाम कादिर खान का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और हर इंसान की चाहत रहती है कि हंसी खुशी ये सफर यूं ही चलता रहे, लेकिन प्रकृति का ये विधान है कि एक ना एक दिन ये सफर भी पूरा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब ये सफर खत्म होगा तब क्या हमारे पीछे ऐसा कुछ रह सकता है जो किसी और हम सफर के जीवन के बुझते हुए चराग को रोशन कर दे। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं अंग दान की। एक ऐसा दान जो इंसान को उसकी मृत्यु के बाद भी अमर बना सकता है। भारत में हर साल लाखों लोग दोस्तों सिर्फ इसलिए समय से पहले दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोई अंग जैसे किडनी, लिवर या हृदय नहीं मिल पाया। अस्पतालों के गलियारों में अपनों की जिंदगी की याचना करते परिवारों की आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद में पथरा जाती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक जिंदगी खत्म हो रही हो

0: सकती है और दूसरी तरफ उस पर निर्भर कई और जिंदगियां भी किसी एक अंग के न मिल पाने की वजह से कठिनाई झेलती हैं। अंगदान इसी समस्या के निवारण का एक रास्ता है, लेकिन इसे लेकर मौजूद हैं बहुत सी भ्रांतियां भी, जिनकी वजह से बहुत से इच्छुक लोग भी परोपकार के इस महान कार्य को या तो कर नहीं पाते या हिचकिचाते हैं। और ऐसी ही तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज पब्लिक स्पीक में हमने विषय तय किया है, अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ है राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से पधारे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आम तौर पर जैसा कि लोगों के जहन में रहता है कि अंगदान जो है वो है तो एक बहुत ही अच्छा एक नेक कार्य है, लेकिन यदि हमारे माता पिता में से या संबंधी में से कोई एक ऐसी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर गए हैं तो जहन में ये आता है कि अब यदि हम वो अंगदान के लिए तैयार हो भी जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि शायद कितने समय में हम संपर्क करें और क्या हमें उनका जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो इस अवस्था में हमें मिल पाएगा कि उसे देखकर दिल को किसी तरह की ठोस ठेस ना पहुंचे और क्षत विक्षत वो स्थिति में न हो, जैसे कि आम तौर पर लोग सोचते हैं और इस वजह से फिर वो हिचकिचा जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कितना समय जो है वो आदर्श माना गया है अंगदान के लिए मृत्यु के बाद।
2: मृत्यु के बाद अंगदान के लिए आमतौर पर एक आईसीयू में जब मरीज दाखिल होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ये जांच द्वारा कि उसके मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है तो ब्रेन डेड हो उसको घोषित किया जाता है। और इसमें एक बार नहीं दो बार परीक्षण किए जाते हैं और चार डॉक्टरों की टीम इसको सर्टिफाई करती है। तो उसके बाद ये ब्रेन स्टेम डेड डिक्लेयर करने के बाद में तो उसका उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, सपोर्ट सिस्टम को हटाते नहीं है। अगर परिवार अंगदान की हामी भरता है तो उसके सारे ऑर्गेन्स जो डोनेट हो सकते हैं और वो दूसरों की जिंदगियां बचा सकते हैं, उसके साथ साथ उसके टिश्यूज भी डोनेट हो सकते हैं। तो टिश्यूज जो होते हैं वो इवन नेचुरल डेथ जो होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है या घर में मृत्यु हो जाती है या आईसीयू में नहीं होती किसी वार्ड में मृत्यु हो जाती है, तो उनमें टिश्यूज जैसे कॉर्निया, स्किन है, बोन्स है, वो भी डोनेट हो सकते हैं। और लेकिन अंगदान आमतौर पर जब आईसीयू में मरीज की मृत्यु होती है तो उसमें 8 लोगों तक की जिंदगी बच सकती है, जिसमें 2 किडनीज है, लिवर है, हार्ट है, 2 लंग्स हैं, फेफड़े जो बोलते हैं, और इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज भी दान हो सकते हैं। तो इसमें सभी को आगे आना चाहिए, ये एक नेक मुहिम है और सभी को इससे जुड़ना चाहिए।
0: शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक श्रोता हिसार हरियाणा से, राजेंद्र।
3: नमस्कार जी मनीष जी और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका?
3: मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाथ या पैर कोई डैमेज हो जाए तो दोबारा से लगवाना चाहे तो क्या लग सकता है, और दूसरा है ये आंख दान की हुई किन लोगों को नहीं लग सकती, ये जानना था। नमस्कार जी।
0: जी तो आपने 2 तरह के प्रश्न किए, एक तो खास तौर पर नेत्र से संबंधित है तो उसका जवाब आपको देंगे भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जो विशेषज्ञ हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा, और दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार। तो मैं पहले आपसे ये निवेदन करता हूं डॉक्टर अनिल कि इनकी जो ये शंका है उसका निवारण आप करें।
2: बिल्कुल, हाथ का भी दान होता है और हाथ भी प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, और हमारा देश पूरे दुनिया में हार्ट हैंड ट्रांसप्लांट के मामले में जो हाथ का ट्रांसप्लांट है, जैसे किसी के हाथ कट गए हैं किसी दुर्घटना में, कहीं मशीन में कट गए या, तो उस तरह के सिचुएशन में भी हाथ का दान करके भी हम उनका हैंड ट्रांसप्लांट करके और वो भी 6 घंटे के अंदर ही हमें मृत्यु के उनका हाथ का दान कर देना होता है। तो वो आराम से उनको लगा करके, और 80 से ज्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे देश में हैंड ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, और ये दुनिया में आंकड़ा नंबर 1 पर है भारत का जो हैंड ट्रांसप्लांट का आंकड़ा है।
1: जहां तक नेत्र का सवाल है, आपका सवाल यह था कि किन लोगों को नेत्रदान करने के बाद भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि नेत्रदान का मतलब यह होता है कि जो कॉर्निया से रिलेटेड, जो आगे जो पुतली होती है, जो ट्रांसपेरेंट, जो पारदर्शक पुतली होती है, उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसमें जब सफेदी आ जाए तो फिर लोगों को उसके कारण अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो जो सफेद पुतली है उसे हटाकर जो ट्रांसपेरेंट डोनर कॉर्निया है उसे लगाया जाता है। जो मरीज जिनकी नस सूख गई हो या पर्दा खराब हो गया हो या फिर एक होते हैं दिमागी रूप से उनको दिखाई कम देता है जैसे कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस से कहते हैं, वैसे मरीजों को हम पुतली लगा के भी उनकी नजर को हम वापस नहीं ला सकते।
0: तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और हमारे श्रोता हैं हिमाचल प्रदेश शिमला से, और हमारे श्रोता हैं राकेश। राकेश जी क्या प्रश्न है आपका, कहिए।
4: जी जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश जी। और मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे दिव्यांग व्यक्ति हैं या दृष्टि बाधित लोग हैं, क्या वो अंगदान के पात्र हो सकते हैं या उनको दे सकते या न दे सकते, ये मेरा प्रश्न है।
0: अंगदान के पात्र हो सकते हैं क्या दिव्यांग व्यक्ति, ये इनका प्रश्न है।
2: मृत्यु उपरांत तो दिव्यांग व्यक्ति हो या दृष्टिहीन व्यक्ति हो, अगर उनके जो भी अंग जो अंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और हेल्दी पाए जाते हैं तो उनको दान किया जा सकता है। जब जीवित व्यक्ति जैसे कि कुछ अंग दान कर सकते हैं, किडनी या लिवर का हिस्सा, तो उसमें उनका मेडिकली फिट होना जरूरी होता है, तो और वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं जो जहां पे ट्रांसप्लांट होता है कि अगर वो मेडिकली उनको फिट समझते हैं तो ही उनका दान किया जाता है। आमतौर पे दिव्यांग व्यक्तियों के अंग, क्योंकि उनके अपने आप ही एक दिक्कत है तो उनको शायद फिटनेस नहीं मिलेगी अंग दान करने के लिए, लेकिन एज सच मृत्यु उपरांत अंग दान में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है।
0: जी तो राकेश जी का जो सवाल था दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में, आशा है हमारे अन्य श्रोताओं को भी ये जानकारी मिली गई है कि वे भी कर सकते हैं, किंतु ये एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि वो स्वयं एक कठिनाई से गुजर चुके हैं। तो इस प्रकार जो स्पष्टीकरण दिया है डॉक्टर अनिल ने वो आप तक पहुंचा है। और डॉक्टर साहब एक और बड़ा ही खास एक ये स्थिति होती है कि अंगदान जो है, जहां तक बड़े शहरों की बात है, देश की राजधानियां हैं या जो महानगर हैं, वहां पर शायद ये बहुत सरलता से हो सकता है, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जो दूर दराज के गांवों में कस्बों में रहते हैं, और यदि उनकी ऐसी इच्छा हो तो वो कहां भला फिर वो इसके लिए संपर्क करें, इस विषय में आप हमें बताइए।
2: इसमें अंगदान के लिए एक तो हम कहते हैं कि आप रजिस्टर करवा लें, तो वो प्रक्रिया डिजिटली अवेलेबल है। नोटो की वेबसाइट पे जाके आप अंगदान एक मिनट में अपने आधार से अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करके एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है कि पेरेंट्स के डिटेल हैं, कौन से अंग और उत्तक आप दान करना चाहेंगे मृत्यु उपरांत, तो वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया मात्र एक मिनट की है। उसको आप वेबसाइट से जाके noto.mohfw.gov.in पर आप वो फॉर्म भर सकते हैं और आधार से सत्यापित ये फॉर्म होता है। दूसरा, आप हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर मैं बता देता हूं 1-800-114770 1-800-114770। तो ये 24 घंटे चलने वाला नंबर है, कहीं से भी आप कोई अंगदान के लिए रजिस्टर करना चाहे या अंगदान करवाना चाहे तो ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, उसके द्वारा हमारी टीम जो इसको मैनेज करती है वो वहीं के नजदीक के ही अस्पताल से टीम भेज कर की मृत्यु उपरांत भी अगर आप जानकारी देते हैं।

0: तो कॉर्निया डोनेशन है होता है तो वो नजदीक के आई बैंक से टीम जाकर के कॉर्निया का दान करवा पाएगी। लेकिन आपको जानकारी सही समय पर देनी है, समय से देनी है। 6 घंटे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो आपको टाइम से फोन कर देना है तो आपका ये सब हो जाएगा, चाहे आप कहीं भी दूर दराज भी एरिया में भी हो। तो
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा से, और आप हैं अविनाश। अविनाश, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जी, मेरा सवाल यह है कि देखिए, मतलब कि जो लोग अंग दान करना चाहते हैं और उनके परिवार भी पहले राजी हो जाते हैं और अपना फॉर्म पे मतलब कि सारा कुछ फिलअप कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो उस पेशेंट की मृत्यु के बाद अगर उनके परिवार फिर से नकार जाएगा, नहीं इनका अंगदान नहीं करवाएंगे, तो फिर उस वक्त हम क्या कुछ कर सकते हैं?
3: देखिए, ऐसा है कि कोई भी अंगदान अगर होना है तो जिस इंसान की मृत्यु हो गई है तो उनके जो परिवारजन हैं, जैसे उनके बच्चे या उनके लड़के लड़कियां या उनके पोते पोतियां भी, वो उनका कंसेंट जरूरी होता है। अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो उनका अंगदान नहीं हो सकता है।
1: जी, तो अविनाश, उम्मीद है आपको अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया है। और नेत्रदान के ही विषय में डॉक्टर राजेश, एक और सवाल अक्सर ये आता है कि कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं, लाइक किसी बीमारी, उम्र या अन्य कारण जिससे ग्रसित व्यक्ति, क्या ऐसा कुछ है कि वो नेत्रदान नहीं कर सकते? लेकिन आपसे हम इस प्रश्न का उत्तर लेंगे अपने श्रोता के इस प्रश्न के बाद। हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से, और आप हैं विजय कुमार साहनी। जी विजय जी, कहिए। जी प्रश्न पूछिए।
4: हाँ,
1: विजय जी।
4: हाँ मनीष जी।
1: जी
4: मनीष जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार।
0: नमस्कार।
4: मैं विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील से, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मेरा मेरा सवाल यह है कि मैं अंगदान करना चाहता हूँ, इसका प्रोसीजर जरा बताइए हमें।
1: अंगदान आप करना चाहते हैं और उसका प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया क्या है, ये जानना चाहते हैं।
0: हाँ, तो जैसे अभी हमने बताया पहले भी कि आप ये डिजिटल माध्यम से अंगदान के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं एडवांस में ही, क्योंकि आप अभी पूरे होशोहवास में हैं, आप अपने लिए सोच सकते हैं। तो नोटो की वेबसाइट है, मैं वेबसाइट फिर बता देता हूँ, NOTTO.MOHFW.GOV.IN, या नोटो भी लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्टर फॉर प्लेज को क्लिक करेंगे तो आपका वो अपना आधार नंबर डालेंगे, तो आधार नंबर के बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल में, तो आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड है और आधार नंबर आपको पता होना चाहिए। तो आपका घर का कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी इसको जानकारी रखता है वो कर पाएगा 1 मिनट का आपके। उसके बाद आपको अपने एक फॉर्म भरना है, उसमें अपने माता पिता का नाम और कौन से अंग वगैरह आप दान करेंगे और इमरजेंसी के कॉन्टेक्ट डिटेल्स देने होते हैं। आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपका ई डोनर कार्ड तुरंत आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं, और 24 घंटे की आपको कोई हेल्प चाहिए वो हेल्पलाइन नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस हेल्पलाइन पे आप कॉल करके अंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो कॉलर पे वहां पे बैठा है वो आपका अंगदान तुरंत आपका रजिस्टर करवा देगा। तो इसमें लेकिन आप ये आप मान के चलिए कि अंग रजिस्टर करने के बाद भी अंगदान के लिए परिवार को बताना बहुत जरूरी है, परिवार में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही उनकी सहमति के बिना आपका अंगदान, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया, आपका अंगदान मृत्यु उपरांत नहीं हो पाएगा। तो परिवार को बताना, उनसे डिस्कस करना कि ये मेरी इच्छा है और ये उसमें सहयोग करें आपकी मृत्यु के उपरांत, तो वो फिर जब भी कॉल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चलता है, आप उस पे कॉल करके

0: डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमारे एक श्रोता जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, श्रीकांत चाकड़े जी। श्रीकांत जी, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
1: हेलो
0: जी। जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: श्रीकांत जी, चाकड़े बोल रहा हूँ मैं पुणे महाराष्ट्र से। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा नेत्र का ऑपरेशन हुआ है रेटिना का, तो उसमें मेरी जो ज्योति चली गई है आंखों की, तो इसी केस में कोई यदि डोनर मिलता है तो उससे कोई फायदा हो सकता है जो आई डोनेट करने वाला जो है।
0: जी आपके प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर राजेश। जी जी
2: जी, ऐसा है श्रीकांत जी कि आपका आपकी जो नजर गई है वो पर्दे की खराबी के कारण गई है, और वो नजर पुतली के खराबी के कारण नहीं गई है। और जो नेत्रदान होता है उसमें हम पुतली बदलते हैं, और यदि पुतली तभी बदलते हैं जब पीछे का पर्दा अगर हेल्दी है या फिर नस सूखी ना हो। तो क्योंकि आपका पर्दा पर्दे में खराबी है और आपकी नजर पर्दे की खराबी के कारण गई है, तो नेत्रदान करने से उसका फायदा नहीं होगा, जब बल्कि आपको किसी पर्दे के स्पेशलिस्ट के पास दिखाना चाहिए, और वो एक बार फिर से पर्दे का ऑपरेशन करके उसका इलाज करके आपकी नजर को वापस ला सकते हैं।
0: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस बराबर खुली हुई हैं। हमारे नंबर हैं 0112331048 और 2371717 तथा 2371710। लेकिन इन नंबरों से पहले भूलिए नहीं 011 अवश्य लगाइए। और व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बता देते हैं अपना 9289094044। और हमारे एक और श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे मथुरा उत्तर प्रदेश से, चौधरी महेंद्र सिंह जी। चौधरी साहब बताइए, क्या है आपका सवाल।
3: स्टूडियो में आमंत्रित आदरणीय विशेषज्ञ महोदय नमस्कार।
2: नमस्कार
3: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से नेत्रदान करना चाहे और परिवार भी सहमत हो तो ये इन्फॉर्मेशन दानकर्ता को कहाँ देनी होगी, वो टीम घर आएगी या फिर कोई न कोई उनको खबर देनी होगी। दूसरी बात ये है सर कि मृत्यु के बाद कई घंटे तक वो रोशनी बरकरार बनी रहती है।
2: जी हाँ, एक्चुअली मृत्यु के बाद जल्दी से जल्दी नेत्रदान कर देना चाहिए। जहां तक समय का सवाल है, पहले 6 घंटे बड़े कीमती होते हैं, उन 6 घंटों में यदि नेत्रदान कर दिया जाए तो उसका उपयोग बहुत सही तरीके से हो सकता है। और उसके बाद भी अगर मौसम अगर ठंडा हो, अगर सर्दियों का मौसम हो, तो उसमें हम 8-10 घंटे तक भी, या फिर बॉडी को अगर बर्फ पर लिटाया हुआ हो, ठंडे वातावरण में रखा गया हो, तो हम आगे भी 8-10 घंटे और 12 घंटे तक भी हम नेत्र को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और जहां तक इनका पहला सवाल था वो
4: कैसे खबर करें,
2: हाँ पहला सवाल ये था कि आप खबर किस कैसे करेंगे कि यदि मृत्यु हो गई हो तो नियरेस्ट जो भी कलेक्शन सेंटर हो, आप जिस शहर में हैं उस शहर का जो कलेक्शन सेंटर है, जो भी कोई आई बैंक है वहां पर, तो आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर साहब ने जैसा नोटो का नंबर बताया था वहां कर सकते हैं, और एक नेशनल आई बैंक का नंबर है 9999168374। तो दिल्ली NCR में यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो ये नेशनल आई बैंक के इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे खुला रहता है, और उससे आप जानकारी दे सकते हैं और नेत्रदान कर सकते हैं।
0: श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आज का विषय है अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और हमारे साथ एक और श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी कहिए, क्या है आपका सवाल।
5: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार
5: सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे ये अंगदान का जो एक प्रोसीजर के बारे में पूछना था, जैसे कोई एक आदमी कोई मतलब मरने से पहले जो मतलब अंगदान का जो संकल्प पत्र कुछ लिख के देता है कि मेरे मरणोपरांत मुझे

0: ये अंगदान करना है। तो इसके बाद जो रिलेटिव का जो रोल होता है, अगर वो इसमें क्या मतलब नियम है कि रिलेटिव अगर इस टाइम भी न अगर चाहेंगे कि नहीं देना है, बॉडी नहीं देनी है अंगदान के लिए, तो ये पूछना था कि रिलेटिव का इसमें क्या रोल होता है। थैंक यू।
1: देखिए, रिलेटिव का रोल हमने पहले भी बताया, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप संकल्प पत्र भरने के बाद भी जो डिजिटल प्लेज आप ले लेते हैं, आप उसमें भी दो नंबर हम लोग पूछते हैं रिश्तेदारों के, उनके नंबर भी भरवाते हैं कि आपके क्लोज रिलेटिव, तो आप उनको बताएं जरूर कि आपने ये संकल्प पत्र लिया है और आप चाहते हैं कि आप मृत्यु के बाद आपके अंगदान हो। तो वो रिलेटिव को अगर आप सबको बता के रखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनके कोई अगर डाउट है तो उसको पहले से ही उनको दूर करेंगे, तो ऐसा आमतौर पे नहीं होता कि रिलेटिव ऑब्जेक्शन करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज्यादातर में अगर आपने इच्छा जाहिर की है तो हम लोग सभी एक फर्ज समझते हैं कि हमारी एक फर्ज है कि हम आपकी उस इच्छा को पूर्ण करवाएं। ये भी परिवार के लोगों का भी यही भावना रहती है। तो आप बताएं जरूर, ऐसा ना हो कि किसी को पता ही ना हो कि आपने प्लेज ली थी। और आपका, जैसे मैंने पहले भी राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर बताया, मैं फिर बता देता हूं, 1800-11-4770, 24 घंटे नंबर खुला है। आप उस पर कॉल करके कोई भी जानकारी मृत्यु की भी दे सकते हैं और वो टीम आपको फैसिलिटेट करेंगी। जी
2: जी, हमारे एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मोहम्मद कासिम, या जिस तरह से शायद ही लिखा है, मोहम्मद कासिम जी, कहिए क्या प्रश्न है आपका।
3: जी नमस्कार।
2: जी जी नमस्कार।
3: मेरा सवाल, दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि एक बार हमें अगर धन की मदद से अंग लगे हों तो क्या हम वो अंग डोनेट कर सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो अबाउट क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, क्या इसमें आई डोनेशन की जा सकती है?
2: जी,
4: जहां तक आपने कहा क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, तो उसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि आंख के अंदर की स्ट्रक्चर इंटैक्ट है या नहीं है और सही है या नहीं है। तो यदि किसी को ऐसा है तो उसके नेत्रदान करने से शायद बहुत ज्यादा फायदा ना हो सके, क्योंकि कई बार क्रिप्टोफ्थाल्मोस में पुतली भी खराब रहती है और उस पुतली का डोनेट करने का फायदा नहीं होता है।
2: जी शुक्रिया डॉक्टर राजेश। और हमारे एक और श्रोता मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद अहमद खान जी।
5: नमस्ते सर।
2: नमस्कार। नमस्कार।
5: सभी देशवासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सर।
4: आपको भी।
2: आपको भी
5: जी। मतलब दो छोटे छोटे सवाल, एक तो बॉडी में सर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या लिवर, तो शायद अपन लोग जीते जी कुछ पार्ट उसका डोनेट कर देते हैं, तो कितना परसेंट डोनेट कर सकते हैं अपन, प्लीज बता दीजिए।
2: जी हमारा जो देखिए आज का विषय है उससे ताल्लुक तो आपका दूसरा सवाल रखता है, लेकिन फिर भी दोनों ही सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं। और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपकी इस शंका का समाधान करें। डॉक्टर अनिल
1: जी। जी वैसे देखा जाए तो जो सॉलिड ऑर्गन है उसमें लिवर को ही सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। वैसे जो स्किन है, टिश्यू जो पूरे बॉडी को कवर करता है, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब टिश्यू के रूप में आता है। और लिवर का कितना हिस्सा दान किया जाता है ये डिपेंड करता है कि जो लेने वाला, जिसको लगना है, अगर वो कोई बड़ी शरीर वाला व्यक्ति है जिसको हाई बड़े वॉल्यूम की जरूरत है, तो लिवर का आमतौर पे एक पार्ट दिया जाता है। एक दो लोब होते हैं लिवर में, राइट लोब और लेफ्ट लोब, तो एक लोब आमतौर पे दिया जाता है, या तो राइट साइड का या लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट राइट का बड़ा होता है और लेफ्ट का छोटा होता है। तो लेफ्ट होता है आमतौर पे 30-40% और राइट होता है 50-70% तक। तो अगर जिसको बड़े वॉल्यूम की जरूरत है मरीज को, तो उसको राइट लोब लगा दिया जाता है, और जिसको छोटे वॉल्यूम से भी काम चल जाएगा, लीन एंड थिन, कम वेट का रेसिपिएंट है, पेशेंट लेने वाला है, तो उसको लेफ्ट लोब लगा दिया जाता है। तो आमतौर पे एक लोब लगता है, या तो राइट या लेफ्ट लोब।
2: जी, और हमारे जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9289094044, और आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपसे मैं एक सवाल कर रहा था जो हमारे श्रोता जब हमसे बात करने लगे तो शायद बीच में छूट गया, कि कई बार ये शंका जाहिर करते हैं कि लोग अगर इच्छुक होने पर भी क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं अगर उन्होंने कैटरेक्ट की सर्जरी जो है वो करा ली है या ज्यादा नंबर का चश्मा पहनते हैं, तो उनकी इच्छा है तो क्या वो इस पुण्य कार्य में सहभागी हो सकते हैं?
4: जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद पुतली बिल्कुल ठीक है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, और चाहे चश्मा लगाते हों, कितना भी बड़ा नंबर हो उससे मतलब नहीं है। पुतली स्वस्थ होनी चाहिए, कॉर्निया हेल्दी होनी चाहिए, और ये सारे लोग जिन्होंने जो भी ये इस तरह का ऑपरेशन कराया हुआ है यदि उनकी पुतली ठीक है तो वो कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं।
2: जी, तो मैं समझता हूं कि हमारे जो श्रोता हैं आज हमसे जुड़े और उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान वो हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत अहम सवाल दिल में ये आता है कि इतना जो पुण्य कार्य करते हैं लोग जो अंगदान का, क्या उनके प्रोत्साहन के लिए भी डॉक्टर अनिल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है?
1: भारत सरकार के जो कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय अंग कार्यक्रम, अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग उनके एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती है। और आजकल और उनको एक ये प्रावधान है कि उनकी बॉडी को बहुत रेस्पेक्टफुली हम लोग हैंडओवर करें, और उसमें उनके हैंडओवर करने के लिए हम लोग उसको एक शॉल या एक बुके ऑफ फ्लावर या एक सर्टिफिकेट भी दे आता है उनको अंगदान के इस नेक मुहिम के लिए आगे आने।
2: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और दोस्तों, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। हम अपने श्रोताओं के आभारी हैं जिन्होंने फोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए मुझे
1: धन्यवाद
2: शर्मा को। नमस्कार।
4: नमस्कार।

0: आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
2: क्वेश्चन नंबर 226 दाखिल के लक्ष्मण गौरव।
3: प्रश्न संख्या 226, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख, इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 2400 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है? और ग, इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
2: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
4: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ अवर बिलोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इंडियाज पावर सेक्टर हैज अंडरगॉन हिस्टोरिक transformation with a strong focus on ensuring affordable, reliable and sustained electricity for every year. And due to Modi ji government's policies, states like Telangana has witnessed rapid growth in industries, data centers, urban infrastructure leading to increasing electricity demands, which has significant potential for solar energy, including decentralized and agricultural solarization. So through you, I request the Honorable Minister to

0: explain how the proposed reforms will encourage greater adoption of distributed renewable energy, battery energy storage, and smart distribution system in states like Telangana, while ensuring the financial sustainability of DISCOMs. Thank you, sir.
1: Shri Manohar Lal, Vidyut Mantri.
2: Sabhapati Mahoday, National Electricity Policy 2026, इसको तैयार करने में डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की फाइनेंशियल फैसिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी सेल्फ सेल करने का प्रावधान रखा गया है। लोकेटेड स्टोरेज अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हो अथवा पंप स्टोरेज के हो, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है, अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके इसका भी इसे प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने, ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस प्रोत्साहन को इसको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है, अभी फाइनलाइज करने के राह पर है और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया, डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है, डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है चाहे डाटा सेंटर हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है, इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ, यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड की शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा सके। मान्यवर, डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी कंसर्न है, सभी डिस्कॉम ये लगभग घाटे में जा रहे हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है।

0: इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्काउंट घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए, इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर सटेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी इसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर इसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लान परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो। ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के संरक्षण को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई हुई है। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम जिसके ऊपर डाला जाएगा, और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, न पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। धन्यवाद। ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है, और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको अलाउ किया है तो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है, कोई आएगा तो अच्छा है, पेड के लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक पूछा है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री सत्रम सिंह सांडू जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र साहब। इनको मैं आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया, पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा, और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
3: सभापति महोदय। ये विषय चूंकि पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है, वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती हैं प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रखकर के ध्यान में रखकर के बनाती हैं। पंजाब के लिए फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्काउंट की जैसा मैंने पहले कहा ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब के डिस्काउंट की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता आरईसी से पीएफसी से थी, लेकिन आरईसी पीएफसी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। जहाँ जहाँ तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं। जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम या पंजाब की सरकार आगे नहीं बढ़ती है। आगे न बढ़ने के कारण से, सेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्वक सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा क्लोज करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्विटी पाई गई, उस एम्बिग्विटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्पल का 16 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए।
1: श्रीमान विजय चंद्रकालिया जी, श्रीमान विजय चंद्रकालिया जी,
4: धन्यवाद चेयरमैन जी। पूरी माता ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। First in my bloodline, I'm witnessing this green hydrogen plant in our own district. So the project envisages an investment of approximately 1.85 lakh crore, including 20 gigawatt of renewable energy capacity, and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. So my question here is, I want to ask the Honorable Minister, if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the Central Transmission Utility and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the hub's planned capacity or future expansion.
3: Honorable Minister, Sabhapati Mahoday, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछना है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो ने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूँ बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम ROW का जो सेक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की है। और नई गाइडलाइन, मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइन जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहां की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो पुरुषों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसके ऊपर दे
1: देंगे। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा, तो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
5: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है, या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को, जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है, सादर प्रणाम।
1: आदरणीय मिनिस्टर,
3: आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 GW एवर हाईएस्ट, इसको हमने आपूर्ति की है। और आज भी हमारी तैयारी है कि 284 GW की हमारे पास कैपेसिटी

0: है, अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष में 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहना कहें लेकिन पावर सफिशियंट हम अपने देश के अंदर है। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर काज ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो कम जवाब देंगे।
1: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।
2: अभी आप सुन रहे थे संसद के प्रश्नकाल में की गई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। हिना फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत रचना रविंद्र जैन की है।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आप आए बहारा। इस फिल्म का गीत आवाज मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की, आनंद बख्शी के गीत रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं विनायक तोड़वी का गाया राग छायानट।

शास्त्रीय संगीत में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे विनायक तोड़वी का गाया राग छाया नट। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do,
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
4: एंड टू मेक कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट इन रिलेटेड इनैक्टमेंट्स।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज रेड बाय आर एस रघु। The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment, and promote manufacturing activities. She said, the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
1: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
5: The Parliament also passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026, with Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Lok Sabha Speaker Om Birla today made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the House and participate in the discussion on key bills. Mr. Birla stated this during the Business Advisory Committee BAC meeting held at Parliament House. He said, the people's issues cannot be left waiting in the corridors and they must be reflected, debated and resolved on the floor of this House. Speaking to reporters at the Parliament premises after the BAC meeting, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready for a detailed discussion in Parliament regarding the recent student protests and related issues. Mr. Rijiju appealed to the opposition to allow the House to function so that Union Home Minister Amit Shah can make a statement about the students' protest and address all concerns raised by the opposition members. In Jharkhand, protests have intensified over alleged irregularities in recruitment examinations after clashes between students and police during assembly march in Ranchi. Thousands of aspirants led by the JPSC-JSSC reforms march marched towards the Vidhan Sabha and attempted to cross several barricades, following which police used water cannons and tear gas. The protesters are demanding an independent CBI probe into the JSSC-CGL examination and comprehensive reforms in the JPSC-JSSC examination system. The 80th Independence Day celebrations this year will highlight Yuva Shakti and the contribution of young India towards building a Viksit Bharat by 2047, along with the commemoration of 150 years of the national song Vande Mataram. Briefing media in New Delhi today, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh said the celebrations will be led by Prime Minister Narendra Modi from the historic Red Fort. The Prime Minister will unfurl the national flag and address the nation. For the first time, the national song will be sung from the ramparts of the Red Fort during the Independence Day ceremony. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country, inspiring citizens from all walks of life to come together in a collective celebration of India's national pride and the spirit of unity. The movement, which will continue till 17th of this month, coincides with the 150th anniversary of national song Vande Mataram this year, making the occasion even more heart-stirring for every patriot. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. 47 people were killed and dozens of buildings collapsed in cities across western Colombia today after a powerful 7.4 magnitude earthquake struck. And that is the end of this news bulletin.
6: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर हम अपनी प्रातःकालीन सभा में आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।